आप सुन रहे हैं भोर सुहानी कार्यक्रम आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके साथ है आप ही की दोस्त रूपा धवन।

जी हाँ, प्रीत की हथखड़ी ऐसी ही होती है। और दोस्तों, अगर हम रविवार के लिए ये कहें कि हफ्ते भर हमने दौड़ाया है वक्त को, आज रविवार है, चलिए वक्त को थोड़ा सा ठहराते हैं, पास बैठकर हालचाल पूछते हैं, क्योंकि खुशियाँ किसी सामान में नहीं, अपनों के साथ बिताए लम्हों में होती हैं।

एक अजीब सी दास्तान बुन रहा हूँ मैं तुम्हारे जाने के बाद स्वयं में हर पल तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। भोर सुहाने से वक्त है आपसे विदा लेने का। रूपा आपके साथ फिर से मिलेगी एक बार किसी मोड़ पर फिर से, लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आइए अब आपको आज के कुछ खास कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आएंगी शीतल। 6:44 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, जिसमें आप सुन पाएंगे अयोध्या कांड का भाग 66। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर कार्यक्रम होगा गोल्ड सुप्रभात। 7:30 पर आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। 8:00 से समाचार प्रभात होगा। 8:45 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल्ली, जिसमें एक बार फिर से आपके साथ होंगी शीतल। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 9:10 पर कार्यक्रम होगा म्यूजिकल दिल्ली, जिसमें आपके साथ होंगी कुसुमलता। 9:10 पर 9:00 माफ कीजिएगा 9:00 आप

सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 10 बजकर 40 मिनट पर कार्यक्रम होगा मेरा वजूद। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अगर हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा। क्या हम वैसे ही हैं जैसा हम इस दुनिया को बनाना चाहते हैं? यदि नहीं तो बदलाव बाहर नहीं, हमें स्वयं में अपने भीतर करना होगा। तो आइए पहल करें नए सकारात्मक बदलाव की स्वयं से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं शीतल हूं आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नमन, जिस प्रणाम, जिस नमस्कार को हम उस परम शक्ति को भेज रहे होते हैं, क्या कभी वो नमन स्वीकार हुआ भी है या नहीं? यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमें ये महसूस करना होगा कि जिसे हम नमन कर रहे हैं, जिसे हम प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो हमारे आसपास ही है या फिर हर क्षण, हर एक पल हमारे हृदय में बसा हुआ है। जीवन में यदि हम ढूंढने चलें तो असली सुख, असली शांति हमारे भीतर ही है, लेकिन हम अक्सर न जाने कहां कहां इस सुख को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम उस सृष्टि के रचयिता को किसी आकार में, किसी रूप में, किसी नाम में बांधते हैं तो हम उसे बहुत सीमित कर देते हैं। क्यों ना हम उसे हर एक घड़ी, हर एक कण में पाएं। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो जीवन में जो ये खुशी है, जो ये आनंद है, ये स्थायी बन जाता है। और इसे स्थायी बनाने के लिए आवश्यकता है बाहर से अपना ध्यान हटाकर अपने अंदर की तरफ मोड़ना, ताकि हम उस परम शक्ति को, उसकी दया को हर क्षण महसूस कर सकें।

जीवन निरंतर चलते जाने का नाम है। हम थम भी जाएं तो भी ये जीवन थमता नहीं है। अगर हम इस जीवन के हर क्षण को दुख में, शंका में, परेशानी में बिताते हैं तो ये सारा समय हमारे लिए एक खराब याद बन जाता है और आने वाले समय को भी एक तरीके से खराब भूत की यादों के लिए हम तय कर लेते हैं कि जब हम इसे याद करेंगे तो वो समय भी बर्बाद हो जाएगा। बेहतरीन तरीका है कि हम अपने जीवन को पूरे उत्साह और खुशी के साथ जिएं, क्योंकि समय का निकलना तो तय है, समय तो आगे बढ़ता रहेगा, क्यों ना समय के साथ जिया जाए और ये जीवन मुस्कुराने के लिए, इन सारी कठिन परिस्थितियों से परे खुश रहने के लिए मिला है। हाँ, जीवन बहुत सी परेशानियों से भरा हुआ है, पर यदि हम इस जीवन को उसे ही समर्पित करते हैं जिसने हमें ये दिया है, उन्हीं से अपने परेशानियों, अपने कारणों का अंत करने की प्रार्थना करें तो संभव है कि हम इस जीवन को बड़ी ही सरलता से और आनंद के साथ जी सकते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

6:27 और 42 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल। कहा गया है कि जीवन में यदि हमें निरंतर मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन से अहंकार को हटा दें। जब भी हम अहंकार की बात करते हैं तो लगता है कि ये अहंकार सिर्फ नकारात्मक तरीके से ही आता है। ये हमेशा बुरे गुणों पर ही आता है या शक्ति पर ही आता है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि अहंकार अगर शक्ति का हो तो उसे खत्म किया जा सकता है, उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। लेकिन अहंकार यदि भक्ति का हो तो इससे ज्यादा दुखदायी और कष्टकारक और कुछ नहीं हो सकता। तो जीवन में हमेशा इस भाव से रहें कि जो हमें मिला उस बनाने वाले ने दिया, वो किसी भी रूप में है, हम उसे उस रूप में भी मान सकते हैं, हम उसे निर्विकार भी निराकार भी मान सकते हैं, हम उसे निर्गुण भी मान सकते हैं। पर ये कहें कि जो दिया आपने दिया, जो कुछ भी ले रहे हैं वो आप ही ले रहे हैं और अधिकार के साथ, क्योंकि आप ही का था और आप ही ले रहे हैं। अंततः हमारा गुण, हमारा दोष, हमारी अच्छी चीजें, हमारी बुरी चीजें सब आपको समर्पित हैं, क्योंकि दाता तो आप ही हैं सिर्फ।

अक्सर वाद संवाद में कहा जाता है कि अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन करनी चाहिए, सुबह से हमारे दिन की शुरुआत होती है। लेकिन अगर हम इस बात को थोड़ा करीब से देखें, समझने की कोशिश करें, तो हम समझेंगे कि शुरुआत तो हो चुकी। जब हमने जन्म लिया तभी से शुरुआत हो चुकी। अब कोई नया दिन आए या फिर हम पुराने दिन में ही अपने जीवन को जीते रहें, उससे सचमुच में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस हमारा ध्यान क्या कहाँ है, इस बात से ज़रूर फर्क पड़ता है। क्योंकि जीवन की शुरुआत हो चली है, अब हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो शारीरिक आवश्यकताएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है हम मन में, हृदय में ईश्वर के स्मरण को करते रहें, उनका नाम ध्यान में रखें। यदि हम उनका नाम भी नहीं ध्यान रखना चाहते तो ये ध्यान रखें कि ये सृष्टि, ये दया, ये कृपा सब उन्हीं के कारण हैं। हम जो हम हैं वो उन्हीं के कारण हैं। हम लग जाते हैं अक्सर न जाने किस किस को जानने में, पहाड़ों को, पत्थरों को, नदियों को, सागरों को, महासागरों को, पर खुद को न जान पाने के कारण हम बिल्कुल खोखले होते हैं। तो मुड़कर के अंदर हमें खुद को जानना है। यदि हम खुद को जान जाते हैं तो फिर जीवन में कुछ और नहीं रह जाता।

आए थे सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधे जंजीर। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को राजा की तरह जिए या फिर एक भिखारी की तरह। सबको ये जीवन मिला है और इस जीवन को जीने का तरीका संसाधन नहीं, किसके पास कितने संसाधन है ये नहीं, इस जीवन को जीने का तरीका हमें राजा या फिर रंक बनाता है। हमें अपने जीवन को जीने के लिए सबसे जो खूबसूरत चीज है वो करना नहीं भूलना चाहिए, और वो है प्रभु चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना, हर एक घटना को उनकी मर्जी के अनुसार समझकर स्वीकार करना, अपना कर्म करते रहना और किसी भी तरीके की आशा या उम्मीद को ना रखना। हमारे दुखों का असली कारण यही है। तो मेरा जीवन आपकी शरण है, आप जैसा रखेंगे मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं तो मुस्कुराऊंगा।

6:44 और 25 सेकंड हुए हैं और ये वक्त है रामचरितमानस से पाठ का। आइए सुनते हैं रामचरितमानस में आज अयोध्या कांड के कुछ अंश।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषादराज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषादराज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषादराज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। कुछ ही देर में आप सुनेगा संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर होगा आपका और हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में।

0: ये तो श्रीनाम क्रीडा श्रृंखलाया प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा अद्य तिरुवनंतपुरम नगरस्य ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे भविष्यति। क्रीडा अपराह्ने द्विवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार जारी रखने पर भी बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: A persistent threat to peace.
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
2: Should be exposed and should be countered.
1: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। भारत ने

0: जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बताओ टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में वो था एक फूल, उस पर नित न्योछावर था मूल। वह मुरझा गया तो मुरझा गया, मधुबन की छाती को देखो, कितनी इसकी कलियां सूखी, कितने इसके वल्लभ भूले। जो सूख गई फिर कहाँ खिली, पर बताओ सूखी कलियों पर कब मधुबन शोक मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, और जो बीत गई उसको जाने दीजिए नए तरीके से। इस नए दिन की शुरुआत खुशियों के साथ, नए लम्हों को प्यार और मोहब्बत से भर के बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। 7:11 और 58 सेकंड हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरू हो चुका है गोल्ड सुप्रभात, जिसमें आज आपका साथ देने के लिए मैं शीतल हूं आपके साथ, और आप सभी का इस खूबसूरत से सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। कल शाम से, बल्कि दोपहर से जो रिमझिम फुहारें थी, उन्होंने आज की इस सुबह को बेहद खूबसूरत बना दिया है। तो क्यों ना चार दिन के जिंदगी को मुस्कुरा के जिया जाए। आज के इस खूबसूरत से दिन को क्यों ना हम कुछ थिरक कर शुरू करें।
1: पास आ

0: वो
1: वो क्या
0: वो बात ये है हो गया है मुझको वो समझ लो ना कि वो
1: का मतलब आ

जिंदगी के बहुत से खूबसूरत रूप होते हैं जिनमें एक है मुस्कुराकर शर्माना। और ऐसी अवस्था में हम बहुत सी बातें समझ भी जाते हैं और कह भी पाते हैं, और ख़ास तौर से जब हम किसी अपने के साथ होते हैं तो बहुत सी बातें हमारी आंखें, हमारा शरीर कर रहा होता है। और अगर हमारा साथी, हमारा परिवारजन उसको समझ रहा है तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। और आज की अगर मौसम की बात करें तो कहेंगे कि भाई आज का जो मौसम वो सच में बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की आशा जताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हवा में खुली है थोड़ी सी नमी। जी हाँ, कुछ कहते हैं बादल, कुछ कहते हैं जी है धूप की कमी। तापमान की तरह बदलता है ये मजाज। मौसम विभाग ने भी दे दिया है नया आगाज कि कभी छांव का साया, कभी धूप की चमक। हवाओं में बिखरी है एक अजब सी महक। मौसम का क्या, ये तो यूं ही रंग बदलेगा, पर आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराता ये यूं ही सवेरा रहेगा, जिसमें आज सवेरे यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा गोल्ड सुप्रभात आपका साथ दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मौसम बिल्कुल सही है अपने दिल की बात कहने का, तो कह दीजिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
9: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
10: सात बजकर 23 मिनट और 15 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड सुप्रभात में आज आपके साथ हूं मैं शीतल। हमारे जीवन में यूं तो अनेक तरह के काम होते हैं और हमारी बहुत सी प्राथमिकताएं होती हैं और हम सब ये जानते भी हैं। यहाँ रेडियो पर बैठकर इस तरफ माइक के मैं आपको ये बता रही हूँ तो ये बिल्कुल कतई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मुझे ही मालूम हो। ये हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हमारी सेहत, हमारा शरीर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत से तरीके हैं। हम अपने दिन में ज़रूर व्यायाम, वॉक या फिर अपने शरीर को समय देने का थोड़ा सा एक स्लॉट बनाकर रखें और ऐसे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो बेहतरीन तरीका है कि हम अपने जीवन में योग अपनाएं। योग की अगर हम बात करें तो आज अगर हम जीवन के शहरीकरण होने की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम व्यस्त हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको लेकर के हम अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है ना योग का, ना एक्सरसाइज का, ना वॉक का, तो हम एक काम कर सकते हैं। आपके और हमारे बहुत से समय पर हम लोग अपने दोस्तों से या काम की वजह से हम फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो क्यों ना हम उस वक्त को ही अपना वॉकिंग टाइम बना लें। हाँ,

हमें योग करना चाहिए। जब हम बात करके निपटें तो हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम भ्रामरी कर सकते हैं, हम अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी फ़ोन पर बात करने वाले वक्त को अगर हम अपना वॉकिंग टाइम बना लें तो फिर कैसा रहेगा।

हमारी जिंदगी में बहुत सी सी चीजें हैं जिन्हें हम करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वो मन में रह जाती हैं, हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। तो क्यों ना आज ऐसी चीजों को इनलिस्ट किया जाए, आज नोट डाउन किया जाए कि हम कौन कौन सी सी चीजें थी जिन्हें करना चाहते थे। किसी किताब को पढ़ना हो सकता है, किसी जगह पर घूमने जाना हो सकता है, या फिर किसी अपने से माफी मांगना हो सकता है, या फिर किसी को अपने दिल की बात बताना हो सकता है। तो आज का ये दिन आप बेहतरीन बनाने के लिए इनमें से किसी एक चीज को रख सकते हैं। और फिलहाल घड़ी की सुइयां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं कि अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चला है। ठीक 7:30 बजे आप सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे, और गोल्ड सुप्रभात से मैं शीतल यहीं पर आपसे चाहती हूँ इजाजत। अपना रखिए खूब ख्याल। नमस्कार।

0: रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर स्वार्थ से हुई हो तो उनका टिकना मुश्किल होता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आप सवेरे कार्यक्रम को। और एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के वो समाचार और सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: मुकेश, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एंड टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग संडे स्पेशल डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम सीरीज ऑफ आवर्स आज सवेरे, एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे इज 27th ऑफ सेप्टेम्बर। आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग योर वीकेंड, योर फ्री डे, वेयर यू आर गोइंग to live more, to smile more, and to enjoy each and every moment of this particular day and many more to come. So let's begin our program with the news headlines, shall we?
0: जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसे प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा।
1: India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in the areas of food and energy security. Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. On the Gulf conflict, Dr. Jaishankar said the hostilities are exacerbating an already difficult situation. Turning to maritime security, he said attacks on commercial ships and seafarers in the Gulf and from the Red Sea to the Black Sea are unacceptable. Dr. Jaishankar said that India will exercise its right to defend itself against terrorism. He called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order.
0: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए आज नकदी के लिए करेंसी भंडार पूरी तरह कार्यरत रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक ने हड़ताल के दौरान एटीएम से मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।
1: Russia Foreign Minister Sergey Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said Russia in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America, and also Moscow supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. Mr. Lavrov said UN Security Council reform cannot involve any additional seats being allocated to Western countries, especially to Germany and Japan, who are now on the path to militarism and revanchism. This high-level endorsement underscores Russia's official policy on global governance reform, aligning with broader BRICS declarations to advocate for the Global South. The UNSC has 15 members total, which includes 5 permanent members with veto powers, China, France, Russia, UK and US, and 10 non-permanent members elected for 2-year terms.
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाएंगे। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पहला T20 मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा।
1: And after cricket, let's talk about badminton. In badminton, ace shuttler PV Sindhu has advanced to the women's singles quarterfinals at the Asian Games after defeating Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium in Ichinomiya. India are currently placed 10th in the medal standings and its overall tally has reached 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze.
0: और आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त हुआ है मेट्रो न्यूज का, तो तन्वी सबसे पहले चेन्नई के समाचार बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: Sure. The Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar NCC Directorate is all set to host the All India Vayu Sainik Camp 2026 at Air Force Station Tambaram, Chennai from 30th of September to 13th of October 2026. The Apex NCC Air Wing Camp will see 646 cadets from 17 directorates, each contingent of 38 comprising 22 senior division and 16 senior wing cadets. In a landmark step for women empowerment, women's senior wing strength has been raised for the first time to 16 cadets per directorate, giving young women a wider national platform for their aviation aspirations. The participating cadets are elected through grueling directorate level competition. Here, touch the sky with glory meets unity and discipline to truly give wings to your dreams. And we have some more news from Chennai itself. The government has announced that 24,264 sanitation workers who had been getting free breakfast since last year will get cash allowance instead of breakfast. The workers will now get 50 rupees each for every working day. The notification allocated 44.28 crore rupees to be dispersed as cash allowance to 24,264 workers. The beneficiaries would include Greater Chennai City Corporation's regular staff as well as workers employed through Urbaser and Ramki Enviro Engineers. The amount will be credited every month along with their salary.
0: और मुंबई के समाचारों का रुख करते हैं, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना सूखा प्रभावित किसानों के पुत्र और पुत्रियों के विवाह में सहायता प्रदान करेगी। श्री शिंदे ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सूखे से हुए फसल के नुकसान और कर्ज के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को प्रत्यक्ष राहत प्रदान करना है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों के लिए विभिन्न रियायती योजनाओं के लाभ के लिए 1 अक्टूबर से एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए 1 अक्टूबर को मुंबई विश्वविद्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े ने कल अपने आवास पर शाडू मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के बाद बची मिट्टी और पानी का उपयोग करके तुलसी और सूरजमुखी के पौधे लगाए हैं। और महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कहा है कि राज्य सरकार दादा साहब फाल्के चित्रनगरी यानी फिल्म सिटी को 50वें वर्ष में वैश्विक स्तर के मीडिया और मनोरंजन केंद्र में बदलने की योजना बना रही है।
1: Moving towards Bengaluru now, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar said a decision on the proposed hike in

0: Krishna Bhairegowda has directed officials to overhaul the works build process across Bengaluru's 5 city corporations to ensure faster, time-bound and transparent contractor payments. Under the new system, bill processing will be streamlined through IFMS with fixed timelines, deemed approvals and recorded reasons for rejection. Payments will be made directly to contractors' registered bank accounts through paperless and OTP-based transactions.
1: और अब रुख करते हैं कोलकाता का। पितृपक्ष आज से 10 अक्टूबर तक चलेंगे। इस पखवाड़े के दौरान तर्पण की पवित्र रस्म के माध्यम से पूर्वजों को याद किया जाएगा। श्रद्धालु गंगा सहित विभिन्न नदियों और जलाशयों में तर्पण करेंगे। 10 अक्टूबर को महालय के अवसर पर पितृपक्ष का समापन होगा और नवरात्र की शुरुआत होगी। इसके साथ ही बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।
0: Moving towards Hyderabad, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy unveiled a statue of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh at the Wipro Circle in Hyderabad's financial district yesterday. Addressing the gathering, Reddy hailed the veteran statesman as an exceptional administrator who governed through actions rather than words. Recalling Dr. Singh's tenure, the Chief Minister emphasized that he assumed leadership during a period of deep political and economic crisis.
1: और अब रुख करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल बुराड़ी में अत्याधुनिक स्वचालित जांच केंद्र का उद्घाटन किया है। ये केंद्र वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बना के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा पर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। ये समितियां संबंधित पर्वों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर अनावश्यक आवश्यक नागरिक सुविधाएं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। दिल्ली के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए कल दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया और दिल्ली नगर निगम का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। निगम ने इस अभियान में 15 भवन गिराए हैं और 6 संपत्तियों को कल सील भी किया गया। आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और तन्वी खुराना के साथ। और अब आज सवेरे में वक्त है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले दिल्ली का मौसम अपने श्रोताओं को बताएं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सवेरे वर्षा हुई है और आज भी दिनभर वर्षा की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई की बात करें तो आज मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, वर्षा भी हो सकती है और अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: सो ऑल द सिटीज आई गेस आर गोइंग टू एक्सपीरियंस लाइट रेन फ्रॉम नाउ ऑन। Chennai and Bengaluru will have a generally cloudy sky with light rain, and the temperatures for Chennai are expected to range between minimum of 28 degrees and maximum of 38 degrees Celsius. And if we talk about Bengaluru, the minimum temperature is expected to be 20 degrees, while the maximum may reach 30 degrees Celsius. Hyderabad is likely to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. Temperatures are expected to range from 25 degrees to 34 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं को नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 27 सितंबर है, तो आज क्या है?
0: Absolutely, today is World Tourism Day, and we all know that Kashi shines on the global tourism map, with security and connectivity making it a preferred destination for tourists from India and also across the world. Compared to 2014, the number of tourists in just 7 months of 2026 have crossed 4 crore. This is a big number, so we have a report on this.
2: The The crescent-shaped ghats of the Ganga, the ringing temple bells, the distinct identity of its narrow lanes and centuries-old traditions make Kashi different from other cities of the world. This is why

0: So, with this, let me tell you that today is the birth anniversary of Ravi Chopra, an Indian filmmaker best known for directing the television show Mahabharat that came in 1988 to 1990. And when we talk about Mahabharat, we cannot forget this voice, this narration and this style. Let's hear this dialogue by Harish Bhimani.
1: मैं समय हूँ, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की, फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है।
2: भारत की है कहानी।
0: रवि चोपड़ा डायरेक्टेड द हाईली सक्सेसफुल टेलीविजन सीरीज

0: और आज हम ऐसी महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनका मानना था कि जब तक समाज का सुधार या विकास नहीं होगा तब तक राजनीतिक विकास का कोई मूल्य नहीं है। जी हां, आज पुण्यतिथि है आधुनिक भारतीय समाज के निर्माता राजा राम मोहन रॉय की, और सही मायनों में वो इसके हकदार भी हैं क्योंकि उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा के खिलाफ रहे और सही मायने में आधुनिक भारत की नींव रखी। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच और अंधभक्त विश्वासों को दूर करने का अथक प्रयास किया। वे महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर भी थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे लेकिन चाहते थे कि देश के नागरिक उसकी कीमत पहचाने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता के कुशल संयोग से दोनों क्षेत्रों को गति प्रदान की।
1: And today is the death anniversary of Cliff Burton, an American musician who served as the bassist for the thrash metal band Metallica from 1982 until his death in 1986. He's renowned for his musicianship and influence. After the release of Metallica's first two albums, Kill Them All and Ride the Lightning, Burton and Metallica achieved a worldwide breakthrough with Master of Puppets and often cited as both the band's best work and one of the best metal albums of all time. Due to an accident, Burton was killed when the band's tour bus was involved, and he received a posthumous writing credit on And Justice for All for the song To Live Is to Die. The music that you are listening to in the background is the same song Metallica did to pay their tribute to Cliff Burton. Let's hear it.

और आपको पता है कि हमारे देश में पहली ऑनर्स ग्रेजुएट यानी स्नातक महिला कौन थी? जी हां, कामिनी राय, आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने संस्कृत में ऑनर्स किया। बहु प्रतिभाशाली कामिनी थी और गणित में बेहद रुचि थी। छोटी उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था उन्होंने और महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका जन्म 1864 में बंगाल में हुआ था। कामिनी राय की 1924 में लिखी गई एक लघु कविता ठाकुमार चिट्ठी यानी दादी को पत्र में वे एक पोती की दृष्टि से अपनी दादी से संवाद करती हैं। और अब हम याद कर रहे हैं ठुमरी क्वीन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शोभा गुट्टू को। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर था। वे एक ऐसी शास्त्रीय शिल्पी थीं जिन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। उन्होंने ठुमरी के अतिरिक्त कजरी, होरी और दादरा आदि उप शास्त्रीय शैलियों के अस्तित्व को भी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो क्यों ना उनकी एक ठुमरी सुनी जाए।

उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और तन्वी, आज हम याद कर रहे हैं ऐसे गायक को जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनके गाय गीत आज भी हमारी जुबान पर हैं। अपने गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले बहुमुखी प्रतिभागी धनी महेंद्र कपूर हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्ण काल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। और जब भी देशभक्ति के गीतों का जिक्र होता था तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम महेंद्र कपूर का ही आता है। तो उनका एक गाना जो है क्यों ना वो सुना जाए, जिसमें उन्होंने कहा, भारत का रहने वाला हूं।

0: And it's also the birthday of Indira Verma, British actress and narrator. Her film debut and first major role was in 1996. I'm sure you must have seen her in many television roles in series like The Other Bennett Sister, Rome, Game of Thrones, Creature, Commandos and many more. Let's hear a dialogue of hers from the series Game of Thrones.
1: Nim, Obara,
2: will it be war?
1: Prince Doran will weep for your father, but nothing else. We must avenge Oberyn ourselves. We don't need an army to start a war. Queen Cersei loves her children. And we have one of them. He's come for Marcella. If he gets to her before we do, we lose our only chance for revenge. You must choose. Doran's way and peace, or my way and war.
3: और अब हम याद कर रहे हैं ऐसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक को जिनकी हर फिल्म देखकर आज भी लगता है कि उसमें खोसे गए हैं। एक अलग जादू, अलग एहसास था उनकी फिल्मों में। जी हाँ, आज जयंती है यशराज चोपड़ा की। यश चोपड़ा ने 1959 में पहली बार अपने भाई के बैनर तले ही बनी फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया था और इसके बाद उन्होंने भाई के ही बैनर तले धर्मपुत्र को भी निर्देशित किया। दोनों ही फिल्में औसत कामयाब रही थी और इसमें यश चोपड़ा की मेहनत सबको नजर आई। तो उनकी एक फिल्म कभी कभी का गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं पहले।

0: तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए, तो अनुमति दें मुकेश कुमार और तनीव खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ वंडरफुल डे, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
4: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो, तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
3: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉ जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
5: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने

0: वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी

0: मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
1: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रथिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच 4 धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. External Affairs Minister S. Jayashankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. Russia strongly backs India's claim for permanent seat in UN Security Council. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. All public sector banks and regional rural banks to remain open today for convenience of customers. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Uttarakhand. Chardham Yatra suspended in view of adverse weather conditions. And in men's cricket, first one-day international of three-match series between India and West Indies to be played in Thiruvananthapuram this afternoon. And now the news in detail. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jayashankar said India is prepared to do everything possible to help improve the situation, particularly in areas of food and energy security.
4: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
3: Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said, the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has strongly backed India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council. In his address at the UN General Assembly in New York last night, Mr. Lavrov said, Russia, in favor of broadening the representation of Asia, Africa and Latin America and Moscow, supports India's and Brazil's candidatures for a permanent seat. He advocated for more seat allocation to the Global South and voiced strong support for India and Brazil. Mr. Lavrov said UN Security Council reforms cannot involve any additional seats being allocated to Western countries, especially to Germany and Japan, who are now on the path to militarism and revanchism. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program, Mann Ki Baat, on Akashvani at 11 a.m. today. This will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. All public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience of customers. This step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from tomorrow. Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chest to remain fully operational today. Meanwhile, several public sector banks have decided to waive ATM transaction charges above the free monthly limit during the three-day bank strike. Union Home Minister Amit Shah will participate in a series of key development programs in Ahmedabad today. He will dedicate the newly constructed WAG-12 locomotive maintenance shed to the nation at the Sabarmati Loco Shed. On this occasion, Mr. Shah will also flag off the high horsepower WAG-12 electric locomotive. Later in the day, Mr. Shah will reach the Sabarmati Railway Station to dedicate various station redevelopment projects to the public. During the event, the Home Minister will also flag off the nation's first liquefied natural gas or LNG-powered DEMU train. This is Akashvani giving you the news.
5: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel Akashvani News.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर चारधाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी फरीकी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दरमियान तहम्मुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तिजारत और तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाए। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक दीगर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुश्तपनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निजाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वजीर खारजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली एयानत को बेनकाब करके उसका मौसर मुकाबला किया जाना चाहिए।
1: has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में मजीद नशिस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राजील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत और हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन है। अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, टीटी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले रहेंगे। यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नजर उठाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक शाखों, दफातर, एटीएम वाली शाखों

0: और करेंसी चेस्ट्स को आज पूरे तौर पर कामकाज करने के लिए मंजूरी दी है। इस दौरान सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोज तक जारी रहने वाली बैंक हड़ताल के दौरान महाना मुफ्त लेनदेन की हद से ज्यादा एटीएम लेनदेन करने पर चार्जेस को माफ करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद में कई अहम तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो साबरमती लोको शेड में नए तामीर करदा WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर जनाब शाह ज्यादा हॉर्स पावर वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाद में दिन में जनाब शाह साबरमती रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वो स्टेशन की तामीर नौ से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ करेंगे। इस तकरीब के दौरान वजीर दाखिला मुल्क की रकीक कुदरती गैस LNG से चलने वाली पहली डेमो ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये भारतीय रेलवे के लिए माहौल दोस्त इकदाम के सिलसिले में एक अहम संग मील है। जनाब शाह शैला में आचार्य पद्मसागर सूरी सौराजी महाराज की 92वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। मौसमियात के महकमे ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश और इक्का दुक्का मकामात पर इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मुसलसल बारिश के तनाजुर में आज चारधाम यात्रा मुअत्तल रहेगी। पेश एक रिपोर्ट।
1: महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के सभी अजला में आंधी तूफान, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के बाला इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मौसम की वार्निंग के पेशनजर पूरी रियासत में आफात से निपटने का निजाम हाई अलर्ट पर है। हुक्काम हसास इलाकों, दरियाओं और नदी नालों के साथ साथ पानी जमा होने वाले मकामात की भी निगरानी कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: उधर उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर है। रियासत में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासिर तमाम जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और मुतासिर अफराद को फौरी राहत और मदद फराहम करें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जुमेरात से शुरू हुई शदीद बारिश रियासत के कई खित्तों में मुसलसल जारी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत कई जिलों में बारिश के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के 63 जिलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। राहत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मामूल से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। शदीद बारिश की वजह से दर्जाए हरारत में भी काफी कमी आई है और फसलों, खास तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को खासा नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: ओडिशा में गुज़िश्ता कुछ दिन से शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तुगयानी और नशेबी इलाकों में पानी भरने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि सुबर्णरेखा दरिया की सतह में तेजी से इजाफा शिमाली ओडिशा में तश्वीश का बाइस है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हीराकुंड बांध के 22 फाटक खोल दिए गए हैं। इनके जरिए इजाफी पानी छोड़ा जा रहा है। महानदी और उसके मुआविन दरियाओं के किनारे वाके नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा के बाज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और हुक्काम से सैलाब की सूरत हाल पर गहराई से नजर रखने की हिदायत दी है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकबीयत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत।

0: राष्ट्र के तौर पर मुल्क की जीडीपी में 5% का हिस्सा है। घरेलू सियाहती दौरे 2025 में 428 करोड़ से ज्यादा रहे, जबकि गैर मुल्की सियाहती दौरों की तादाद 2.5 करोड़ रही। मरकजी हुकूमत के जरिए तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मुल्क के सियाहत के इको निज़ाम और मरबूत सियाहती तरक्की की पायदार से मुतालिक अहम इकदाम पेश करेंगे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आज़म के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतें एमएसएमईज मुल्क के बड़े एमएसएमई इको निज़ाम में से एक हैं। रियासत में एक ऐसा वाहिद पोर्टल मौजूद है जिसके जरिए कारोबारी इदारे मुख्तलिफ महकमों से जरूरी मंजूरी का अमल एक ही जगह से मुकम्मल कर सकते हैं। रियासत में एमएसएमईज की तरक्की के लिए एक अलग वजारत महकमा भी मौजूद है जिसका मकसद छोटे और दरमियाने कारोबार को बाख्तियार बनाना है। एमएसएमई का सेक्टर मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी में तकरीबन 31% का ताउन करता है और यह ज़राअत के बाद रोजगार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। कोयम्बटूर में 80,000 से ज्यादा सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड एमएसएमईज और उद्योग आधार यूनिट्स मौजूद हैं। तमिलनाडु में मजमूई तौर पर 7,59,847 रजिस्टर्ड बहुत छोटी सनअतें, 1,01,861 छोटी सनअतें हैं। जो एक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा बैन अलाक्वामी 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभम गिल इस ओडीआई सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान हैं, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की मर्दों और खवातीन पर मुश्तमिल तीरंदाजी की टीम अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
0: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारत खलीजी कौंसिल तजारती इजलास से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इजलास में तजारत और तवानाई में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर जोर, वजरा की मीटिंग में सरमायाकारी सिक्योरिटी और अवामी राबतों को मजबूत करने पर तबादला ख्याल। रोजनामा प्रताप ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी बनाई है, नितिन नवीन दो रोजा दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे और आला सतही तंजीमी जायजा मीटिंग करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफे पर ईरानी सदर के अक़वामे मुत्तहिदा इजलास में शिरकत की खबर को शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई तिजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नजर आज चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

कहते हैं जिंदगी एक खूबसूरत नेमत है जो हमें एक तोहफे के रूप में मिली है। अब हम चाहें तो इस तोहफे को स्वीकार करके इसमें चार चांद लगा सकते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सी कमियां निकाल के हम इस जिंदगी को यहीं पर खराब कर सकते हैं। मर्जी हमारी है, वक्त हमारा है, जिंदगी हमारी है। तो आइए बाहें फैला कर इस जिंदगी का करते हैं स्वागत। यहाँ हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर तैयार हैं म्यूजिकल दिल्लगी के साथ करने आपका तहे दिल से इस्तकबाल। मैं शीतल हूँ आपके साथ। 8:46 हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये लम्हात जो हमें कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिंदगी के हर एक पल को हम खुशियों से भर सकते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
7: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
6: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
7: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
6: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
8: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
9: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
10: आठ बजकर 54 मिनट और 10 सेकंड हुए हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, उसके लिए बहुत से लोगों के पास नोटिस आए हुए हैं। तो आज बहुत सारे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कैंपों का आयोजन किया गया है। अगर आपके हाथ कोई ऐसा नोटिस है तो आज अपने 3 ID प्रूफ लेकर के आप वहां जा सकते हैं और अपने नोटिस को क्लियर करा सकते हैं।

जिंदगी में साथ देते रहिए, साथ लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का खास ख्याल रखिए और एफएम गोल्ड यूं ही सुनते रहिए, क्योंकि वक्त हो चला है यहाँ पर समाचारों का। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी का दूसरा पड़ाव। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है।

रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं, बैंक तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्ट को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। विभाग ने बताया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में बिजली गिरने की आशंका है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी जो सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स्ड जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भारत को पदक की उम्मीद है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिस्कल दिल्ली के सफर पर अब मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, आज 27 सितंबर की सुहानी सुबह है, रविवार यानी छुट्टी का दिन है। हाँ, मौसम खुशनुमा है, जिंदगी एक नए रंग में अंगड़ाई ले रही है, शायद गुनगुना रही है फिल्म तेरी कसम का ये गीत।

जी हाँ, ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, पेड़ पौधे खेत खलिहान भी गाते हैं। जी हाँ, पेड़ पौधे खेत खलिहान तब गाते हैं जब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम बात कर रहे हैं मिट्टी की जांच की और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार की एक ऐसी प्रमुख योजना है जिसके तहत किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की सेहत और पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी दी जाती है। इस कार्ड में मिट्टी के 12 गुणों की जांच की रिपोर्ट होती है। जांच के आधार पर किसानों को ये सलाह दी जाती है कि उनकी मिट्टी के लिए कौन सी खाद और कितनी मात्रा में सही है। ये कार्ड हर 3 साल में किसानों को दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में आए बदलावों को समझ सकें और अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाकर अच्छी अच्छी फसल ले सके। फिलहाल जब अच्छी फसल की बात आती है तो एक गीत याद आता है फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती सोना उगले। आइए सुनते हैं।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो,
1: इस
0: बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
11: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
10: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
11: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
10: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
11: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
12: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
13: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
14: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिकल दिल्ली और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, आज है विश्व पर्यटन दिवस। ये दिन पर्यटन को बढ़ावा देता है और साथ ही अलग अलग जगहों की संस्कृतियों, परंपराओं और विरासत से परिचित कराने के साथ साथ रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने में भूमिका निभाता है। जब लोग दूसरे क्षेत्रों में देशों की यात्रा करते हैं तो उन्हें वहाँ की भाषा, खान पान, परंपराओं, कला और इतिहास को करीब से जानने का अवसर मिलता है, इसलिए ज़रूर पर्यटन करें। और इसके अलावा आज है वर्ल्ड डीफ डे। ये हर साल सितंबर के महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, जो कि आज है। इसकी शुरुआत साल 1958 में विश्व बधिर संघ द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों और उनसे जुड़े मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाना है। तो आइए हम भी बधिर लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और जागरूक हों और हर संभव उनका सहयोग करें। आज एक और खास दिवस है, आज है वर्ल्ड रिवर्स डे। ये सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है, जो कि आज है। हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नदियां हैं वो हमारे जीवन का आधार है, वे जल प्रदान करती हैं और जैव विविधता को बनाए रखती हैं। हमारी धरती की जीवन रेखा है नदियां, जो पीने का पानी, कृषि और ऊर्जा प्रदान करती हैं। आज प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो नदियां हैं ये खतरे में हैं, तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जल स्रोतों को साफ और

सुरक्षित रखना है। और एक और खास दिवस है, आज विट्ठल भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है। विट्ठल भाई पटेल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। उनका जन्म 27 सितंबर यानी आज ही के दिन साल 1873 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी की और भारत लौटकर देश को आज़ादी दिलाने के कार्य में जुट गए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भारत में प्रबल जन आंदोलन चलाया। बाद में वे स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए और केंद्रीय असेंबली के पहले गैर सरकारी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने निष्पक्ष और मजबूत नेतृत्व से विधानसभा की कार्यवाही को लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप आगे बढ़ाया। विट्ठल भाई पटेल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी शासन के भीतर रहते हुए भी भारतीय नेतृत्व की गरिमा को स्थापित किया। उनका जीवन भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा का प्रतीक माना जाता है। नमन करते हैं उनके देशभक्ति को।

0: इसी गीत के साथ ही मैं इस कल दिल लगी यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि MS सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निखिल उइके और रामनगर बैतूल से गगन कुमार। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न

0: पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझ दे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ
0: शौर्य स्मारक भोपाल समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे बुधवार अवकाश।

इतिहास के सबसे उजले प्रसंग प्रतिरोध की आग से लिखे गए हैं, जहां किसी हृदय से उपजे साहस ने सदियों से बंद दरवाजों की सांकलें खोल दी। बात 19वीं सदी के भारत की है, जहां स्त्री के लिए समाज ने उम्र से पहले रिश्ते तय कर दिए थे, सपनों से पहले सीमाएं खींच दी थीं और उसकी आवाज जैसे हाशिए पर रख दी गई थी। ऐसे दुरूह समय में एक स्त्री आगे बढ़ी और पूरे साहस के साथ अपने हिस्से का आसमान मांगा। उनका नाम था डॉक्टर रुखमाबाई राउत। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं, औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था और महिलाओं के लिए संकीर्ण विचारधारा को एक साथ चुनौती दी। वो भारत की प्रैक्टिस करने वाली शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थीं तथा दूरदर्शी नारीवादी चिंतक थीं। यही कारण है कि उनके संघर्ष ने 19वीं सदी के अंत तक आते आते पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर सन 1864 को बॉम्बे के एक सुतार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनार्दन पांडुरंग था तथा उनकी माताजी का नाम जयंती बाई था। जब रुखमाबाई मात्र 2.5 साल की थीं, तभी उनके पिता का असमय निधन हो गया। लेकिन उनकी माताजी ने उस दौर की सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए सन 1870 में डॉक्टर सखाराम अर्जुन से पुनर्विवाह किया। डॉक्टर सखाराम अर्जुन बॉम्बे के जाने माने वनस्पति शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे तथा महिला शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। ऐसे प्रगतिशील पारिवारिक वातावरण में रुखमाबाई की परवरिश हुई, जिसका बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। वो नई और क्रांतिकारी सोच के साथ बड़ी होने लगीं। घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। मराठी और अंग्रेजी भाषा में वो पारंगत हुईं। इसके साथ ही उन्हें गणित तथा अन्य बुनियादी विषयों का ज्ञान भी दिया गया। उनके घर पर नियमित रूप से विद्वानों, कानूनविदों और समाज सुधारकों का आना जाना बना रहता था, जिसके कारण उनके भीतर बहुत कम उम्र में ही तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र चेतना का विकास हुआ।

जब रुखमाबाई मात्र 11 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से कर दिया गया और तय हुआ कि उनके पति रुखमाबाई के घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी करेंगे ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उनके पति गलत संगत में पड़ गए तथा अकर्मण्य जीवन बिताने लगे। जब रुखमाबाई वयस्क हुई तो इन्हीं कारणों से उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में उनके पति दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा रुखमाबाई के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा तत्कालीन न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। न्यायाधीश रॉबर्ट हिलपिन्ही ने 1885 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रुखमाबाई के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उनका विवाह अबोध बचपन में उनकी सहमति के बिना हुआ था। इसके बाद फिर अपील हुई और अपीलीय अदालत ने जज पिन्ही के निर्णय को अस्वीकार कर मामला पुनः विचार के लिए भेजा। मुकदमे के पुनर्परीक्षण में सन 1887 में जस्टिस फरान ने उनके पति के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन रुखमाबाई ने पूरे साहस के साथ स्पष्ट किया कि वो पति के साथ रहने की बजाय जेल जाना स्वीकार करेंगी और अंततः

जोर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि समाज में लड़कियों को केवल 8 या 9 साल की उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। उन्हें अपनी इच्छा या शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होती। पुरुषों को बहुविवाह की छूट है, जबकि महिलाओं पर कठोर पाबंदियां हैं और विधवा स्त्री अमानवीय यातनाएं भी सहती है। उन्होंने कठोर प्रश्न किए कि ऐसा क्यों है। इस तरह उनके लेखों ने अनेक सुधार अभियानों को मजबूती दी तथा ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने भी इन्हें प्राथमिकता से छापा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में महिलाओं की दशा पर गंभीर बहस छिड़ गई। इस मुकदमे की गूंज पूरे यूरोप और ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दे रही थी। इस तरह ब्रिटेन और भारत में अनेक सुधारकों तथा महिला अधिकार समर्थकों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई तथा समर्थकों ने उनकी आगे की शिक्षा के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1889 में रुखमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुई। रुखमाबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में अध्ययन किया तथा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे चलकर उन्होंने एडिनबर्ग के स्कॉटिश मेडिकल कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1894 में उनका नाम मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हुआ। इसी दौरान सन 1890 में उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका न्यू रिव्यू में इंडियन चाइल्ड मैरिज एन अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट शीर्षक से एक शोधपरक लेख लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक मंच पर यह सिद्ध किया कि भारत में बाल विवाह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि ये एक कुप्रथा है। इस तरह उनकी कलम ने लोगों को झकझोर कर जगाने का काम किया।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुखमाबाई की पहचान केवल एक भारतीय महिला के रूप में नहीं रही, बल्कि वो स्त्री अधिकार और स्वतंत्र निर्णय की आवाज के रूप में पहचानी जाने लगीं। वहां उन्होंने महिला अधिकारों और मताधिकार से जुड़े विभिन्न संगठनों से संवाद किया, विभिन्न आंदोलनों में वो शामिल हुईं। इस तरह उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। रुखमाबाई के प्रकरण और उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और विधिक ढांचे में दूरगामी बदलाव की नींव रखी। उनके मुकदमे के कारण बाल विवाह, महिला अधिकार और सहमति की अवधारणा पर देशव्यापी बहस शुरू हुई। रुखमाबाई के मामले ने सुप्रसिद्ध समाज सुधारक बहरामजी मालाबारी के नेतृत्व में चल रहे अभियान को कानूनी और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस व्यापक जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को सहमति आयु अधिनियम 1891 पारित करना पड़ा, जिसमें लड़कियों की शारीरिक सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। सन 1894 में रुखमाबाई एक योग्य चिकित्सक के रूप में भारत लौटी। वो कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबाई जोशी की तरह भारत में चिकित्सक का सफल पेशेवर जीवन जीने वाली शुरुआती महिला चिकित्सकों में शामिल हुईं। सन 1895 में वो सूरत के वुमेन्स हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी और 2 दशक से अधिक समय तक वहां चिकित्सा सेवा दी। सन 1918 के आसपास उन्होंने राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक निष्ठावान डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए भी रुखमाबाई ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। अस्पताल संचालन के दौरान उन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं गंभीर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। उन्होंने अस्पताल के भीतर पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और महिलाओं को खुले वातावरण में सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पर्दा द नीड फॉर इट्स एबॉलिशन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने पर्दे के कारण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। डॉ रुखमाबाई राउत का मानना था कि मरीज केवल मरीज होता है, उसे जाति या वर्ग की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि सभी मरीजों को एक समान भोजन, दवा और सम्मान मिले। सेवानिवृत्ति के बाद वो बॉम्बे में ही बस गईं तथा अनाथालयों और महिला आश्रम से जुड़कर काम करने लगीं। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह और लड़कियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपना शेष जीवन और निजी संसाधन समर्पित कर दिए। उनका मानना था कि किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त अधिकारों पर निर्भर करती है। जीवन के अंतिम दिनों तक वो इसी संकल्प के साथ पढ़ने, लिखने और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहीं और 25 सितंबर सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन दोपहर में बलरामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह साबरमती लोको शेड में नवनिर्मित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर

0: शाह उच्च क्षमता वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शाह साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश की पहली तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली डेमू रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से संबद्ध शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी भंडार को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्ष के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने को कहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री लैवरोफ ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने रूस, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के अंतर्गत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह विषय पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर बल देती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही वर्षा से आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों की स्क्वाश स्पर्धा में आज अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विनी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक मिल सकते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister S. Jaishankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. He said, hostilities continue to destabilize global security, threatening progress and slowing development far beyond their immediate regions. Dr. Jaishankar said, India is prepared to do everything possible to help

0: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: A persistent threat to peace.
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: इन पर्टिकुलर शुड बी एक्सपोज्ड एंड शुड बी काउंटर्ड।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। श्री लावरोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के तहत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीटें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने के लिए रखे गए 7 दिन के प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया है, लेकिन मध्यस्थों के माध्यम से अब तक अमेरिका का कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान अंतिम फैसला लेने से पहले मध्यस्थों के जरिए अमेरिका के औपचारिक जवाब का इंतजार कर रहा है और होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का फैसला ईरान की शर्तें पूरी होने पर ही होगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 7 दिन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से आई खबरों के अनुसार ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर फिर से हमले हो सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
4: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कांगो में एक सैन्य विमान हादसे में करीब 17 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। विमान कल किक्विट से राजधानी किन्शासा के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कांगो के राष्ट्रपति ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वेनेजुएला में मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कल बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। हालांकि रिहा किए गए लोगों की कुल संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। ये रिहाई मंगलवार को अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के

0: दौरान हुई बैठक के बाद हुई है। एक रिपोर्ट। मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि राजधानी कराकास के बाहरी इलाके की एक जेल से कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। इनमें विश्वविद्यालय के छात्र वाइल्डर वास्केज भी शामिल हैं। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्रेज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि उनकी सरकार राजनीतिक विरोधियों को जेल में रखने के आरोपों से इनकार करती है। सरकार का कहना है कि वे राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा देने के लिए कई मामलों में लोगों की रिहाई की कोशिश कर रही है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि वेनेजुएला में अब भी राजनीतिक कैदी हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: और खेल जगत के बाद अब दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से संघर्ष विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय समझौतों की शर्तों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए 7 दिन की योजना पेश की है। इसके तहत होर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री अराग़ची ने कहा कि यह प्रस्ताव इस वर्ष जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन के समान है। जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बैठक में श्री अराग़ची ने कहा कि ईरान ने कूटनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के सामने अपनी शर्तें और मांगे रखी हैं। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने के लिए ईरान के खिलाफ अमरीकी हस्तक्षेप और सैन्य कार्रवाई समाप्त करने की जरूरत पर बल दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। कहा, भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। विश्व पर्यावरण दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम सेमीफाइनल में पहुंची और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए लुत्फ उठाते हैं फिल्मी गीतों का। पहला गीत फिल्म बालिका वधू से अमित कुमार की आवाज में।

0: फिल्म मिस्टर इंडिया के इसी गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं तक। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद,
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
2: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
1: 9 महीने तक जो हर पीड़ा को चुपचाप सहती रही, तोड़ मरोड़ कर खुद को बस औलाद के खैर चाहती रही, जब पेट में लगती ठोकर वो उफ तक न करती थी, अपनी रातों की नींदे बेचकर वो हम पर जान छिड़कती थी, खुद गीले बिस्तर पर सोकर हमें सूखे पर सुलाती रही, सबके ताने सुनती थी पर कभी उफ तक न की उसने,
3: जब कभी बीमार पड़े हम तो वो रात भर जागती रही, ईश्वर से पहले बस हमारे लिए ही दुआ मांगती रही। इस मतलबी दुनिया में सिर्फ वही है जो हमको संवारती है।

0: ही पहचान है। अगर नहीं तो फिर हमें ऐसे लोगों का विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है।
1: अगर हम अपनी माँ को सम्मान दे सकते हैं तो दूसरे की माँ को भी सम्मान देना ही चाहिए। मान दो उस मूरत को जो जीवन का आधार है, इस सृष्टि के कण कण में बस माँ का ही उपकार।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने एक खबर देखी जिसमें एक लड़का अपनी 84 साल की माँ को बुरी तरह से मार रहा था। ऐसी ही एक खबर ये भी थी कि एक लड़के ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी बूढ़ी माँ को रात के अंधेरे में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो उसको दो वक्त की रोटी भी नहीं खिलाना चाहते थे।
4: सुनने में तो एक बार ये भी आया था कि एक बहुत बड़े ज्वेलर ने जब अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया तो उसकी माँ एक मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए मिली। वो तो भला हो किसी ऐसे शरीफ आदमी का जिसने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया
3: और फिर समाज के साथ मिलकर उस लड़के को मजबूर किया कि वो अपनी माँ को इज्जत के साथ घर में रखे। कभी कोई बेटा अपनी माँ को संपत्ति के लिए परेशान करता है तो कहीं कोई बेटा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में अपनी माँ को दुश्मन मान लेता है।
4: कहते हैं कि जब भगवान ने इंसान बनाया तो देवलोक में सवाल उठा कि भगवान, इंसान तो आपने बना दिया मगर इंसान को सही में इंसान बनाने के लिए प्रेम और ममता का पाठ कौन पढ़ाएगा। तब भगवान ने इस दुनिया के लिए माँ को बनाया, इसीलिए संसार में माँ के महत्व को ईश्वर के बराबर समझा जाता है।
3: चलती फिरती हुई आँखों से आजाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: अब ऐसा भी नहीं है कि सारी औलाद ही अपनी माँ के दुश्मन होती हैं। आज भी इस तरह के लोग हैं जो अपनी माँ को भगवान से कम नहीं मानते। ऐसा ही एक वाक्यात मेरे एक परिचित का है जो बिल्कुल सच है। काफी दिनों के बाद जब मेरा एक परिचित दोस्त मुझसे मिलने आया तो मैंने पूछा कि भाई बहुत दिन में आए, सब ठीक है?
3: मेरे सवाल से मेरे दोस्त के चेहरे पर कुछ उदासी सी छा गई। उसने बताया कि अभी कुछ ही दिन पहले उसके पिता की डेथ हो गई है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर उससे पहले कि मैं उसको कुछ कहूँ, उसने कहा कि भाई हम चार भाई हैं और एक ही घर में रहते हैं।
2: मगर मुझे पिता की मौत से ज्यादा इस बात का दुख है कि हमारे समाज के कुछ लोग इतने घटिया क्यों हो गए। मैं कुछ समझा नहीं तो मैंने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने बताया कि भाई पिता की मौत के बाद उनकी 13वीं वाले दिन घर में कई मेहमान आए थे। तभी उनमें से एक मेहमान ने मुझसे पूछा
3: कि नीरज जी आप चार भाई हो तो फादर की डेथ के बाद आपकी माँ अब किसके साथ रहती है? ये सुनकर मेरी आंख से आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रखूं, इसीलिए मैं ही माँ के साथ रहता हूँ। ऐसी सोच वाले आदमी को और कह ही क्या सकता था।
2: उसके बगैर दिल नहीं लगता मकान में, माँ अगर नहीं तो कुछ भी नहीं है जहान में।
4: माँ

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या

0: प्राणिक प्रसंग सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
11: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26

2011 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था, तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को
साक्षात

देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढ़ेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढ़ेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है।
एक कॉलेज में

डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक

सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों

से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों,

0: हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्ति भाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं दशवर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। दशवर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीयसेनया पाकिस्तानदेशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। एलओसी इति नियंत्रण रेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्य कार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढ़तया संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनम् उदाहरण प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकाल पर्यन्तं यां पीडाम् असहत, सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकाल पर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिक विस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 28-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 13 तिथौ दिल्लीनगरे घटितेषु क्रमिक विस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपय सप्ताहानन्तरमेव मुम्बई नगरे 26/11 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतंकवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकं आतंकवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचना क्रियते स्म, किन्तु तस्मिन् विषये न तावत् गंभीरतया ध्यानं प्रदीयते स्म, समययापनमेव प्रतीक्ष्यते स्म, किन्तु अद्यतनीयं भारतं आतंकवादस्य विरोधे शून्य सहिष्णुता नीतिम् अवलम्बते, वयं च तस्याः फलमपि पश्यामः। सखायः अस्मिन् वर्षे 9/11 इत्यातंकवाद्याक्रमणस्यापि 25 वर्षाणि जातानि। अमेरिका देशस्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इत्यत्र ये निरपराधाः जनाः स्वप्राणान् अत्यजन् तेषु अमेरिका देशवासिनां पश्चात् सर्वाधिकाः जनाः भारतदेशीयाः आसन्। मया स्मर्यते 14-20-शततमे वर्षे प्रधानमंत्री पदाधिगमनानन्तरं यदाहम् अमेरिकादेशं गतः आसम् तदा न्यूयॉर्क नगरे तेषां निरपराध नागरिकेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पयितुम् अगच्छम्। अद्य च पुनरेकवारं भारतस्य कोटिशः नागरिकाणां पक्षतः अहं तेषां पीडित परिवाराणां प्रति स्वसंवेदनां समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे देशे एकं महच्चित्रं निर्मीयते। अस्मिन् चित्रे भवन्तोऽपि सन्ति, भवतां परिवाराः अपि सन्ति, भवतां प्रतिवेशि जनाः अपि सन्ति। अहं भारतस्य जनगणना विषये वदामि। देशस्य सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च अस्याः प्रथमं चरणं प्रायः सम्पन्नम् अभवत्। 32 कोटिभ्यः अधिकानां परिवाराणां सूचनाः अभिलेखिताः सन्ति। अद्यत्वे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्डानां च दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु प्रदेशेष्वपि कार्यमिदं प्रचलति। तत्रत्येभ्यः बहवः प्रेरणादायकाः अनुभवाः अस्माकं पुरतः आगताः सन्ति। उत्तराखण्डे जनगणनायाः प्रारम्भः चमोली मण्डलस्य माणाग्रामात् अभवत्। माणाग्रामः देशस्य प्रथमग्रामः इति कथ्यते। तत्र जनगणना कार्यस्य सर्वप्रथमः आरम्भः 83-वर्षीयायाः पूर्णिमा रावत महोदयायाः अभवत्। उत्तर काशी मण्डलस्य बगोरी ग्रामे गृहवास व्यवस्थां संचालयतः हरदेव सिंह राणा महोदयेन आंकिकीय माध्यमेन स्वस्य विवरणं स्वयमेव पंजीकृतम्। सखायः, जनगणना अस्माकं सर्वेषां राष्ट्रियं दायित्वमस्ति। अगस्त मासस्य पञ्चदश तिथौ अपि अहम् दे

12:11 और 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ कार्यक्रम वही जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार और जो आता है हर रविवार कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। और आज आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार। आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 1989 में ये फिल्म रिलीज हुई। रोमांटिक फिल्म, संगीत में फिल्म, म्यूजिकल फिल्म और निर्माण और निर्देशन किया इसका यश चोपड़ा ने। कहानी लिखी कामना चंद्रा ने और पटकथा उमेश कालबाग, अरुण कौल और सागर सरदी ने लिखी। फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे और सहायक भूमिकाओं में थी वहीदा रहमान, अनुपम खेर। और फिल्म का नाम है चांदनी। कैमरा पक्षभाग संभाला मनमोहन सिंह ने। एडिटर थे इस फिल्म के केशव नायडू। संगीत दिया यादगार संगीत शिवहरि यानी पंडित शिव कुमार शर्मा और महान कलाकार हरिप्रसाद चौरसिया जी। और गीत लिखे आनंद बख्शी ने। श्रीदेवी ने किरदार निभाया चांदनी का। ऋषि कपूर थे रोहित के किरदार में, विनोद खन्ना ललित के किरदार में थे और ललित की मां यानी लता खन्ना के किरदार में थी वहीदा रहमान। इसके अलावा सुषमा सेठ, मीता वशिष्ठ, अनंत महादेवन, अचला सचदेव, बीना बनर्जी, मनोहर सिंह, रामगोपाल बजाज, ललित तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्या ये सभी भूमिकाओं में थे और यादगार भूमिकाएं अपनी निभाई इन्होंने। और फिल्म जो थी उस समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी गई। फिल्म की कहानी से अलावा भी बहुत सी बातें हैं इस फिल्म से मुतालिक रखती, लेकिन हम आपको चाहेंगे समय की कमी को देखते हुए कि भाई आपको गीत भी सुनाने हैं, कहानी भी बतानी है, लिहाजा सीधा हम कहानी पर आते हैं। चांदनी एक मिडिल क्लास की भोली भाली लड़की अपने माता पिता के साथ अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली जाती है और वहां पर अपने ही चचेरे भाई के जिगरी दोस्त रोहित से होती है उसकी मुलाकात। रोहित मानो पहली ही नजर में चांदनी को दिल दे बैठा है। अब शादी का माहौल है, रोहित अपने दिल की बात कहे तो कहे कैसे, और किसी ना किसी बहाने वो चांदनी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। और चांदनी शादी के माहौल में रची बसी है, रमी हुई है और उसकी वजह से पूरा माहौल, पूरा घर खुशनुमा है।

चांदनी बन गई है। अब ये लेडी संगीत में रोहित जा तो नहीं सकता, लेकिन दूर से कैमरे से, अपने कैमरे से चांदनी के हर एक फोटो, हर एक अंदाज की फोटो खींच रहा है। दिल दे बैठा है चांदनी को, अब बात कहे तो कहे कैसे। शादी का घर है, पूरा उल्लास है, और ऐसे में रोहित नजदीकियां बढ़ाने के लिए चांदनी को अपने दिल की बात कह ही देता है और साथ ही साथ उसके जवाब का इंतजार भी करता है। शुरू में तो चांदनी उसको तुरंत हाँ नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे वो भी रोहित के नजदीक होने लगती है। शादी की रस्में पूरी होती हैं, विदाई होती है दुल्हन की, और उसके बाद घर सूना सा होता है। चांदनी के माता पिता भी चांदनी को लेकर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बुआ के कहने पर चांदनी कुछ दिन और रुक जाती है। अब रोहित को अपने मन की बात कहने का मौका मिल गया है और उसने चांदनी को रिझाने के लिए वो तमाम कोशिशें कर डाली जिसे चांदनी तुरंत हां कर बैठी।

रोहित को चांदनी के रूप में अपने महबूबा मिल गई और चांदनी को रोहित के रूप में अपना महबूब। दोनों जीने मरने की कस्में एक दूसरे के साथ खाने लग गए, अपने सुंदर सुखद भविष्य के सपने बुनने लग गए। चांदनी वापस अपने घर आई और रोहित ने वादा किया कि खतों के माध्यम से, खतों की मार्फत एक दूसरे के दिल की बात एक दूसरे तक हम पहुंचाते रहेंगे। बस प्यार परवान चढ़ता गया और धीरे धीरे चांदनी रोहित के सपनों में खोती चली गई।

अब रोहित अपनी चांदनी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपने परिवार को, अपने माँ बाप को बता देता है कि मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शुरू में तो उसके माता पिता इस रिश्ते के बेहद खिलाफ रहते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में चांदनी का परिवार मध्यम वर्ग की परिवार है, उनके बराबर का नहीं है, और जो उनका रुतबा है शहर में वो कहीं भी चांदनी के परिवार से मेल नहीं खाता। लेकिन रोहित तो रोहित है, इकलौता बेटा होने के नाते वो अपनी बहन, अपने पिता, अपनी मां, तीनों के विरुद्ध जाता है, उनके खिलाफ जाता है और कहता है कि मैं शादी करूंगा तो केवल चांदनी से। केवल उसका सहारा बनते हैं, उसका साथ देते हैं उसके जीजा रमेश भैया, जो कि खुद उस घर में घर दामाद बन के रह रहे हैं। रमेश कहता है कि अगर समाज ने मुझे कबूल कर लिया तो एक दिन चांदनी को भी वो समाज कबूल कर ही लेगा। मां बाप हार मान जाते हैं और बेमन से वो रोहित और चांदनी की सगाई को मंजूरी दे देते हैं। अब चांदनी तो चांदनी है, अल्लड़, शोक, चंचल, और सगाई वाले दिन रोहित के कहने पर वो फिर अपना नृत्य, अपना गायन सबको रिझाने के लिए सबके सामने पेश करती है। ये देख आग बबूला से हो जाते हैं रोहित के माता पिता, लेकिन रमेश खूब आनंद लेता है उसकी इस शरारत का भी।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
6: Personal loan offer.
7: फिर से block करता हूँ.
6: Free trip to Dubai.
7: ये भी block. कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में

0: पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
0: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

12:40 और 52 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्स कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म चांदनी। रोहित और चांदनी की सगाई तो हो गई घर वालों की मर्जी के बावजूद भी और अब चांदनी को लेकर रोहित ने तमाम तरह के सपने बुनने शुरू कर दिए। चांदनी को बोला कि हम शादी होते ही यहां से दूर चले जाएंगे, स्विट्जरलैंड में अपना हनीमून मनाएंगे जहां सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। और इन्हीं सुंदर सपनों में चांदनी भी खो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि समय उसके सामने कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे उसकी जिंदगी बिल्कुल ही तबाह या यूं कह लीजिए कि तहस नहस हो जाएगी। होता यूं है कि एक दिन रोहित उसे फोन करता है और कहता है कि तुम अपने घर की छत पर आओ, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं। चांदनी पहुंचती है, इधर उधर देखती है, रोहित कहीं नजर नहीं आता। तभी उसको आसमान से आवाज आती है, चांदनी। ऊपर झांक के देखती है तो क्या देखती है कि रोहित हेलीकॉप्टर में सवार है और उस पर गुलाब की पंखड़ियों की बरसात कर रहा है। चांदनी उसका यह रूप देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन अगले ही पल रोहित हेलीकॉप्टर से गिरता है और उसे पैरालिसिस हो जाता है। दाहिना हाथ दाहिना पांव रोहित का लकवा मार जाता है और रोहित आ जाता है व्हीलचेयर पर। रोहित के घर वाले खासतौर से मां बाप और उसकी बहन जिम्मेदार ठहराते हैं चांदनी को, अपशगुन कहते हैं कि तुम इस घर के लिए हो, लेकिन रोहित कहता है कि इनकी बातों को नजरअंदाज करो और मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी आंख खोलूं तुम मेरे सामने हो। चांदनी भी वादा करती है कि तुम्हारी सुबह होगी तो मेरे साथ

घर में रोजाना की कलेश, रोजाना की कलह से रोहित भी एक दिन परेशान हो जाता है और वो कमरा जिसमें उसने पूरी दीवारों पर चांदनी के पोस्टर्स, चांदनी की तस्वीरें लगाई हैं, एक रात गुस्से में आकर, जज्बात की रोह में बहकर उन पर सफेद रंग पोत देता है। अगले दिन चांदनी आती है, देखती है ये क्या। तब रोहित कहता है कि मुझे किसी की दया पर नहीं रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, तुम चले जाओ मेरी जिंदगी से, और घर वालों की तरह मैं भी सोचने लग गया हूं कि तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस हालत में पहुंचा हूं। चांदनी रोती बिलखती वहां से निकल जाती है। रमेश के कहने पर रोहित बताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं नहीं चाहता कि मुझ अपाहिज के साथ रहकर चांदनी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, और उसका दिल तोड़कर ही मैं उसका जीवन संवार सकता था, इसलिए मैंने उसे अपने से दूर कर दिया। चांदनी रोती बिलखती अपना वो शहर छोड़कर वहां की यादों से बचते हुए, भागते हुए पहुंच जाती है बंबई।

और बंबई में अपनी सहेली के यहां पर जाके रहती है, जो कि एक सरकारी कॉलोनी में अपने पति के साथ रहती है किराए पर। और वहां पर एक ट्रेवल एजेंसी में उसको नौकरी मिलती है चांदनी को, और वो ट्रेवल एजेंसी होती है ललित की। ललित चांदनी को पसंद करने लगता है। और एक रात जब कॉलोनी के अंदर चांदनी के वहां पर पुलिस की रेड पड़ती है, किराएदारों को बाहर रहना पड़ता है रात भर, तो उस बारिश भरी रात में ललित देखता है चांदनी को फुटपाथ पर अपने सहेली और उसके पति के साथ। उन्हें ले आता है अपने घर, आसरा देता है रात भर का, और वहां पर चांदनी ललित की मां का दिल जीत लेती है। चांदनी को पहली नजर में देखते ही ललित की मां ये सोचने लगती है, सपने बुनने लगती कि काश ललित की शादी चांदनी से हो जाए। लेकिन चांदनी को क्या पता कि ललित बेहद तनहा है, बेहद गमगीन है, क्योंकि उसकी जिंदगी में देविका नाम की एक लड़की थी जिसे वो बेहद प्यार करता था, शादी करना चाहता था, लेकिन देविका एक ऐसी बीमारी के रूप में फंसी कि फिर वो ठीक ही ना हो पाई और इस दुनिया को अलविदा कह गई। यहां दोस्तों आपको बता दें कि देविका की गेस्ट अपीयरेंस में थी जूही चावला, और यहीं पर रात की वो बरसात देखकर ललित के दिल के छाले मानो फूट पड़ते हैं।

0: धीरे धीरे समय बीतता है। ललित देविका को भूलकर अपनी मां के कहने पर चांदनी के पसंद करने लगता है, लेकिन अपने मन की बात नहीं बता पाता। और वहीं दूसरी ओर समय बीतता गया और उधर रोहित चांदनी को भूल नहीं पा रहा। उसके दिल में चांदनी के प्यार की खलिश एक बार फिर भड़क उठी है और रमेश भैया से रोते हुए कहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूं। और उसे वो पल याद आते हैं जो उसने चांदनी के साथ बिताए थे।
1: चांदनी

Tom.

चांदनी के उन्हीं पलों को याद करता हुआ रोहित तय कर लेता है कि वो ठीक होगा। विदेश जाने के लिए तैयार होता है, स्विट्जरलैंड ज्यूरिख जाता है अपना इलाज कराने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ललित भी एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड जाता है, और जाते हुए चांदनी को कहता है कि मैं तुमसे वहां पर फोन पर अपने दिल की बात कहूंगा। वहां पहुंचता है और इत्तेफाक देखिए कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी ललित और रोहित। रोहित ठीक हो जाता है पूरी तरह से और दोनों अपने मन की बात, अपनी महबूबा की बात साझा करते हैं। और ये सुनने के बाद, हालांकि वो दोनों नहीं जानते कि दोनों जिस लड़की से प्यार करते हैं वो चांदनी ही है, और वहां से ललित एयरपोर्ट से फोन करता है चांदनी को और कहता है आई लव यू। और इधर से वो भी हैरान होती है कि वो कहे तो कहे क्या। और दूसरी तरफ रोहित कोशिश करता है चांदनी को फोन करने की, लेकिन वो फोन नहीं उठाती क्योंकि उसको लगता है ललित का फोन है और ललित ने कहा है कि एयरपोर्ट मुझे तुम लेने आना। असमंजस की स्थिति है चांदनी के जहन में और जिंदगी में, करे तो करे क्या। सब कुछ भूलकर वो रोहित के घर एक बार फिर फोन करती है और रोहित की मां उसे फिर अपशब्द सुनाती है, कोसती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, दोबारा यहां कभी फोन मत करना। अब चांदनी तय कर लेती है कि वो ललित से शादी करेगी। और इसी बीच उसके सामने आ खड़ा होता है रोहित बिल्कुल ठीक होकर। वो अवाक रह जाती है, दंग रह जाती है, करे तो करे क्या। रोहित को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे तिरस्कार करने

के बाद मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है, अब मैं उससे शादी करने जा रही हूं। रोहित उसके रास्ते से हटना चाहता है, हट भी जाता है, और ललित के कहने पर रोहित चूंकि उसका दोस्त है उसकी शादी में आता है, और वहां पर एक हादसे में एन फेरों से पहले उस सीढ़ियों से गिरता है, और चांदनी पूरे जमाने की परवाह ना करते हुए रोहित को चिल्लाती हुई बचाने जाती है और सबके सामने कहती है कि बचा लो मेरे रोहित को, बचा लो मेरे रोहित को। तब ललित को समझ आता है कि ये वही लड़की है जिससे रोहित प्यार करता था, और ये दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ बंधी है। बस फिर क्या था, ललित एक बार फिर से अपने जज्बात, अपने प्यार को ताक पर रखकर रोहित और चांदनी को मिला देता है। दोस्तों ये थी कहानी फिल्म चांदनी की। उम्मीद है आपको गीत और इसकी कहानी दोनों पसंद आए होंगे। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आपसे फिर भेंट होगी। मधुर तरानों का होगा कार्यक्रम दिल ढूंढता है, सुनना मत भूलिएगा। इंतजार रहेगा मुझे आपका।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और

0: पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD, it still stands grandly symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera Temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath Temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation by Alauddin Khilji, emphasizing that Indians view the sun as a source of light, energy, science and continuity rather than just an architectural deity. The PM shared that Modera has evolved into the country's first Surya Gram solar village running entirely on solar energy as a model of sustainability.

1:11 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज मधुर तरानों का कार्यक्रम दिल ढूंढता है। आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म शागिर्द के उस यादगार गीत से जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

अगला गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म गैम्बलर से। गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार, संगीतकार एसडी बर्मन और गीतकार नीरज।

0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। एंड स्टॉप।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना

0: और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
1: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड

श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश आपके लिए है फिल्म रॉकी से गायक कलाकार लता मंगेशकर, किशोर कुमार, संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी। इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद आप सुनेंगे संस्कृत साप्ताहिकी।

0: अर्थात सभी श्रेष्ठ गुणों में कौशल सबसे उत्तम है, सभी धनों में विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है, सभी लाभों में उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है और सभी सुखों में संतोष सबसे श्रेष्ठ है।
1: कर्ण प्रियाय शुभाषिताय साधुवादः ऋचावर्यायै। दयालवः श्रोतारः, कथं सुन्दर रीत्या अस्माकं मार्गदर्शनं कृतम् अनेन शुभाषितेन। संस्कृत साहित्यं ज्ञान विज्ञान पूर्णं नैतिक विमर्श युतं चास्ति। अस्मिन्नेव ज्ञान सागरे स्तोत्र शुभाषितादयः मणयः अपि प्रवहन्ति। मित्राणि, संस्कृत साहित्ये अनंत मात्रायां उपलभ्यमानात् स्तोत्र साहित्यात् शास्त्रीय संगीत स्वीकृत संदर्भ समृद्धेन श्लोकेन सह उपस्थितोऽस्ति जतिन शर्मा प्रसंगाख्येऽस्मिन् प्रभागे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मर्दुमशुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की एक नई मिसाल पेश की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कल 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहादुर भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस अंदाज से कंट्रोल लाइन को पार किया था, दुनिया भी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों की वजह से मुल्क ने तवील अरसे से जिस दुख और तकलीफ का सामना किया है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी तनाजुर में भारत की फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9/11 के दहशतगर्दाना हमलों को भी इस साल 25 साल हो गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इन हमलों में हलाक होने वालों में अमरीकियों के बाद सबसे बड़ी तादाद भारतीय अफराद की थी। जनाब मोदी ने 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमरीका के अपने दौरे में इन बेकसूर लोगों को खराज अकीदत पेश करने का तस्करा भी किया। मौजूदा मर्दुमशुमारी के अमल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इस अमल का पहला मरहला करीब करीब मुकम्मल हो गया है। 32 करोड़ से ज्यादा कुंभों का डेटा पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि मर्दुमशुमारी की तफसीलात खुद ही रजिस्टर करने की सहूलत बहुत ही सहल है और लोग अपने मोबाइल फोन से ही खुद के बारे में और अपने अरकान खानदान के बारे में जानकारी का इंदराज कर सकते हैं।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16

0: भाषाओं में उपलब्ध हैं।
1: जानकारी दाखिल करने के बाद लोगों को एक खसूसी आईडी मौसूल होगी, जिसे वो मर्दुमशुमारी करने वाले इन्यूमरेटर के आने पर शेयर कर सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक इंटरनेशनल वर्किंग सदर आजहानी अशोक सिंघल का 100वां यौमे पैदाइश भी है। जनाब मोदी ने उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, मुआशरे और मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। वजीर आजम ने महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया, जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि सफाई सुथराई जिंदगी के उन बहुत से रहनुमा उसूलों में से एक है जो बापू ने दिए थे। वजीराजम ने कहा कि मुल्क भर के करोड़ों नौजवान अफराद ने नशा मुक्त युवा अभियान के तहत मुनशियात और नशा आवर मादों के खिलाफ हाल ही में अहम अहद किया है।
0: आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अजीम जश्न के साथ इस साल का आगाज किया था। जनाब मोदी ने कहा कि महमूद गजनी ने 1000 साल पहले पहली मरतबा 1026 में सोमनाथ मंदिर को मुनहदिम कर दिया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सोमनाथ मंदिर समुन्द्र के किनारे अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आज भी खड़ा है। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने सामईन से जोर देकर कहा कि वो अपने भाई से तरगीब किस्से और कहानियां शेयर करते रहे। वजीर आजम ने कहा कि मन की बात के जरिए इन कोशिशों के बारे में सीखने से मुल्क के दीगर हिस्सों के लोगों को भी तरगीब मिलती है। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने यह उम्मीद जाहिर की कि लोग अपने अजीज व अकारिब के साथ आने वाले त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत खुद कफील और मुस्तकबिल के दिफाई इको निज़ाम तैयार करने की समत आगे बढ़ते हुए अगले 10, 20, 25 साल के दौरान जंगी साजो सामान की नौईयत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस के जेर एहतमाम प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही।
2: आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है।
1: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तसादी तरक्की को तकवियत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को अज़रेनो वज़ा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक ग्राहकों की सहूलत के लिए आज खुले हुए हैं। ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जानिब से पूरे मुल्क में कल से शुरू होने वाली मुजव्वजा 3 रोजा बैंक हड़ताल के पेश नज़र उठाया गया है। पाकिस्तान में शुमाल मगरबी खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान में हुए धमाके में 12 अफराद हलाक और 35 दीगर जख्मी हो गए। ये धमाका कल उस वक्त हुआ जब धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी पुलिस चेक प्वाइंट में जा टकराई और जोर का धमाका हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में 80 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूज सलीमोव को 5-0 के मुत्तफिका फैसले से हरा दिया। इस तरह बॉक्सिंग में भारत को पहला तमगा मिलना तय है। अंकुश पहली मरतबा एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। मर्दों की क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 1 रोजा मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद 2 बजे शुरू होगा। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2 महीने के वक्फे के बाद भारत की 1 रोजा क्रिकेट मैचों की टीम में वापस आ गए हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज के कप्तान हैं।

0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया के सामने दहशतगर्दी से निमटने की भारत की पॉलिसी की नई मिसाल पेश की और ये पैगाम दिया कि दहशतगर्दों के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के पैगाम की तशहीर करें। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो मरदूम शुमारी के अमल में शामिल हों और खुद ही तफसीलात का इंदराज कराने की सहूलत का इस्तेमाल करें। लोगों की सहूलत के लिए सरकारी मिल्कियत के सभी बैंक और इलाकाई देही बैंक आज खुले हुए हैं। एशियाई खेलों में बॉक्सर अंकुश पंघाल मर्दों के 80 किलोग्राम के जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इस तरह भारत को एक तमगा मिलना तय है। और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के साथ पहले एक रोजा मैच में भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukt Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG-powered train at Sabarmati. Red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, boxer Ankush Pangal assures medal by defeating Tajikistan's Nekruz Salimov in the men's 80-kilogram quarterfinal. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow, that is 28th of September. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Prime Minister Modi said this year also marks 25 years since the 9/11 terrorist attacks. He said the highest number of victims at the World Trade Center, the US, after Americans were Indians. He recalled paying homage to those innocent citizens during his US visit after becoming Prime Minister in 2014. He once again extended his condolences to the bereaved families on behalf of crores of Indian citizens. Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and union territories. Data of over 32 crore families has already been recorded. Work is currently underway also in the remote, snow-clad regions of Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Uttarakhand. The Prime Minister noted that many inspiring experiences have emerged from these areas. In Uttarakhand, the census process began in the village of Mana in Chamoli, which is known as the country's first village.
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत

0: The headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued over Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's singles. Squash boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
2: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के

0: ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक

0: सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
2: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
1: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री

लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इसके बाद में ही मैंने
1: जितना बाद में किसी भी समस्या का जी
2: बिठाई लिया तो चला जाएगा।
3: तो कोरम पूरा है?
4: यस सर।
3: सिंडिकेट की अर्जेंट मीटिंग एक असाधारण मसले पर विचार करने के लिए बुलाई गई है।
5: सर, एजेंडे से कुछ अनुमान तो हुआ, लेकिन जरा विस्तार से बताइए।
3: श्रीनिवास रामानुजन के नाम और काम के बारे में हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं। मैथमेटिक्स रिसर्च बोर्ड के सामने भी ये काम पेश हुआ था। बोर्ड ने सिफारिश की है कि रामानुजन को रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, वे कैम्ब्रिज में जाकर अपना शोध पूरा कर सकें। बात यह है कि उम्मीदवार की शिक्षा नियमों के अनुसार नहीं है।
6: तब तो उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती।
7: अरे मामला इतना सरल होता तो इस बैठक की जरूरत ही नहीं थी। अरे श्रीनिवास के पर्चे मैंने पढ़े हैं और उनका काम भी देखा है। अब मेरे विचार में ये छात्रवृत्ति देकर हम अपने पर ही उपकार करेंगे।
6: ऐसा? तो फिर नियमों का मतलब?
7: अरे नियमों में उलझना ठीक नहीं है। प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर ग्रिफिथ और प्रोफेसर हार्डी तक ने उनके काम की तारीफ की है।
5: मिस्टर चेयरमैन, हम नियमों से हटकर तो कुछ नहीं कर सकते ना।
6: क्यों नहीं कर सकते?
3: क्यों नहीं?
5: इसलिए कि हम पर सीधा पक्षपात का आरोप लगेगा।
7: कुलपति महोदय, हम गणित बोर्ड की सिफारिश पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें पक्षपात कैसा?
3: मेरी राय में भी नियमों के चक्कर में रामानुजन के टैलेंट को बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए।
5: सर, प्रतिभा को कौन रोक सकता है, कौन बांध सकता है? वो तो यहाँ भी डेवलप हो सकती है ना।
6: नहीं नहीं, फिर ठीक है, कल फिर किसी और की सिफारिश होगी, परसों किसी और की, तब हम क्या करेंगे?
3: विचार तो तब भी करना पड़ेगा।
6: मेरी राय में आने वाले खतरे को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।
7: गणित के क्षेत्र में रामानुजन की योग्यता
6: मैं उनकी योग्यता पर संदेह नहीं कर रहा हूँ।
5: सर, योग्यता का प्रश्न तो है ही नहीं, प्रश्न ये है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का एमए पास होना जरूरी है और वो नहीं है।
3: ठीक है, नियम तो यही कहता है, पर
5: बस जब नियम यही कहता है तो विषय समाप्त।
7: अरे सिंडिकेट के सदस्यों का ध्यान मैं कुछ और बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, अगर आप लोग परमिशन दें तो।
3: कहिए।
7: यही कि रामानुजन की सिफारिश मौसम विभाग के डायरेक्टर ने भी की है और रॉयल सोसाइटी के फेलो द गिलबर्ड ने भी की है।
5: सर, सिफारिश की बात तो हो चुकी ना।
7: मैं अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूँ।
5: और सर, मैं भी।
7: आप थोड़ी देर चुप रहेंगे?
5: हमारा समय खराब ना करें।
7: इतनी गंभीर बात है और आपका समय खराब हो रहा है, कैसी बेटों की बात है?
5: सर, अध्यक्ष महोदय, ये मेरा अपमान कर रहे हैं।
3: नहीं, यहाँ किसी का कोई अपमान नहीं हो रहा है।
7: हाँ तो मैं कह रहा था, प्रोफेसर हार्डी ने भी रामानुजन के काम को रोचक और महत्वपूर्ण कहा है, और यह बताने की जरूरत नहीं कि गणित की दुनिया में आज प्रोफेसर हार्डी की क्या जगह है।
5: तो फिर नियम आखिर है किस लिए?
6: देखिए, लेकिन किसी की प्रतिभा अगर एमए की डिग्री से कहीं ज्यादा हुई तो?
5: नियमों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अब बैठक खत्म कीजिए और

0: में जाने दीजिए।
1: जस्टिस सुंदरम आप क्या कहते हैं?
2: कुलपति जी, नियम तो है और वो अपनी जगह, पर इस झमेले में हम गणित का, रामानुजन का और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, ये बात आप सब ध्यान रखिए।
3: पर सर, नियम तो नियम है।
4: तो क्यों ना नियम को बदला जाए?
2: जो नियम यूनिवर्सिटी के एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चन डालते हैं, उन्हें अनुचित समझा जाना चाहिए।
3: सर, तो क्यों ना नियमों को बदला जाए?
2: आप ठीक कह रहे हैं, वो भी एक रास्ता है, पर लंबा, और हमें फैसला आज ही लेना है।
1: जस्टिस सुंदरम की राय कानूनी तौर पर सही लगती है और मानवीय भी। आप अपना हट छोड़ दें और इसे स्वीकार कर लें।
3: ठीक है।
5: तो सिंडिकेट ये तय करती है कि रामानुजन को कैम्ब्रिज जाकर अपना अनुसंधान जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। वे हर 3 महीने बाद अपने काम की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजते रहें।
4: बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू।
6: अम्मा,
7: नहीं नहीं
6: अम्मा सुनो तो,
7: नहीं नहीं नहीं
6: अम्मा,
7: नहीं।
6: अम्मा आप मान भी जाओ ना, अपना कृष्ण स्वामी भी श्रीनिवास के साथ जाने को तैयार है।
7: बहुत कठिनाई है। नहीं नहीं, नहीं।
2: अम्मा अम्मा, कितनी मुश्किल से मिलती है स्कॉलरशिप। श्रीनिवास तू बोलता क्यों नहीं है?
8: क्या बोलूं, बड़ी अम्मा ने तो नामगिरी की रट लगा रखी है, नाराज हो जाएंगी वो।
2: ऐसा क्या?
7: ऐसे जो करना है वही करे, अपने देश में भी तो बहुत कुछ है करने के लिए।
8: अरे नामगिरी को हम मना लेंगे।
7: वो कैसे?
8: अरे उसकी आराधना करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे।
2: देखो अम्मा, अब तो प्रोफेसर हार्डी ने भी खत लिखा है, कैम्ब्रिज से भी एक स्कॉलरशिप मिल रही है। अम्मा हार्डी बहुत अच्छे आदमी है।
7: तू कब मिला उससे?
2: नहीं मिला तो क्या, जानता हूँ, अच्छे इंसान है, तेरी कसम।
7: मैं मान भी लूं पर बड़ी अम्मा नहीं मानेंगी, ये नहीं हो सकता।
2: अब बड़ी अम्मा, अरे कहाँ है, कहाँ बड़ी अम्मा?
7: नामगिरी मंदिर।
2: अब क्या करें?
8: अरे कहती क्या है बड़ी अम्मा?
7: यही 7 समुंदर पार जाना, ये पाप है। वहाँ खाने को मिलेगा भी क्या? माँ संडे बाला नामगिरी रक्षा करे, तो सुन रहा है ना?
8: आता हूँ।
2: अरे अरे कहाँ चला?
8: अरे कहा ना, आता हूँ, आ रहा हूँ।
2: रामानुजन तू बोल, क्या करना है?
8: कृष्णा पहले तो डर था, लेकिन प्रोफेसर हार्डी के खत से डर नहीं रहा, पर बड़ी अम्मा को कौन समझाए।
2: बस हम लोगों की दिक्कत यही है, छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, पीछे देखते हैं और पीछे ही रहते हैं।
7: बड़ी बड़ी बातें छोड़, क्या खाएगा ये बोल।
2: अम्मा कुछ नहीं खाना मुझे, 250 पाउंड की स्कॉलरशिप, काश काश अम्मा मुझे मिली होती। अम्मा अम्मा तू ही समझाना बड़ी अम्मा को।
7: पर श्रीनिवास का क्या भरोसा?
8: अम्मा ये क्या कह रही हो तुम?
9: हाँ माँ जी बिल्कुल, और मांस मछली तो बिल्कुल नहीं, और पूजा पाठ भी करना है।
2: सही कह रही है उर्मिला।
8: हाँ माँ बिल्कुल नहीं खाऊंगा।
7: तो खाएगा क्या?
8: अपनी रसोई खुद बनाऊंगा मैं।
7: और जो वहाँ इतनी सर्दी होती है?
8: कुछ तो प्रबंध हो ही जाएगा। देखो अम्मा, कुछ दिनों बाद कृष्णा स्वामी और चेंगल भी पढ़ने के लिए वहीं आने वाले हैं।
7: वो तो सब ठीक है, पर तेरी बड़ी अम्मा को कैसे मनाऊं?
8: अरे मान गई, बड़ी अम्मा मान गई।
2: क्या क्या कह रहे चेंगल तू?
8: कैसे मान गई बड़ी अम्मा?
4: अरे मैंने जाकर पांव पकड़ लिए, बड़ी अम्मा ने पता है क्या कहा?
8: हाँ, क्या कहा?
4: उन्होंने कहा रात नामगिरी देवी उनके सपने में आई थी और उसने आज्ञा दे दी। अच्छा? इसलिए बड़ी अम्मा आज सुबह जल्दी ही मंदिर चली गई, और फिर जब मैंने ये बताया कि जल्दी ही मैं और स्वामी भी आने वाले हैं, तो बस हाँ कर दी।
2: अरे वाह चेंगल वाह।
7: अम्मा हैं कहाँ?
4: अरे आ रही हैं, जानकी भाभी भी साथ में हैं, मैं तो भागा भागा आया। अम्मा अब तू भी दे आशीर्वाद।
2: अम्मा दे दे आशीर्वाद।
7: मेरा आशीर्वाद तुम सबके लिए श्रीनिवास, अपनी रसोई खुद बनाना।
4: अम्मा हाँ यही होगा, बड़ी अम्मा ने भी सब समझा दिया है।
7: जानकी साथ जाएगी ना?
4: अभी नहीं, श्रीनिवास चल हो जा तैयार। चल चल चल आ जा, चल चल चल।

0: जानकी, जब से यहाँ आए हैं चुप बैठी हो।
1: तुम सात समंदर पार जा रहे हो ये सोचकर मुझे डर लग रहा है।
0: यहाँ से देखो,

0: एक समुंदर, वो दूर दूसरा समुंदर, तीसरा चौथा और वो पार। अरे वहीं जाकर तो कुछ कर सकूंगा ना मैं।
1: यहाँ भी तो तुम वही कर रहे हो, हर वक्त नंबर्स नंबर्स। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें नंबर्स पसंद है ना?
0: नंबर्स पसंद है और तुम भी पसंद हो।
1: भी, देखा देखा तुमने भी बोला।
0: जान के तुम बाल की खाल निकालना बहुत अच्छी तरह जानती हो। खुद सोचो, कहां बोट की एक छोटी सी क्लर्की, न धन न मान न संतोष, इधर क्लर्की भी मुश्किल से मिली है और उधर प्रोफेसर हार्डी जब कह रहे हैं तो उसका कुछ मतलब है ना?
1: पर फिर भी
0: जानकी, इधर वो सुविधा नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं, जो समझना चाहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं। हम लोग कुछ अजब हैं, खुद को नहीं पहचानते। जब लंदन की मोहर लग जाती है ना, तब सब मानने लगते हैं। समझ रही हो जानकी? अब मेरा वक्त सामने खड़ा है कुछ साबित करने का। जानकी
1: तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे अकेले में डर लगता है।
0: डर लगता है किससे?
1: यही कि तुम वहां जाकर कहीं कहीं बदल तो ना जाओगे।
0: हाँ भाई, इस धोती की जगह सूट टाई, यही ना?
1: ये सब नहीं, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रही।
0: तो
1: वहां और भी तो बहुत कुछ।
0: भरोसा नहीं है मुझ पर?
1: भरोसा है तुम पर।
0: वहां जाकर अवसर मिलते ही तुझे बुला लूंगा, सच।
1: अच्छा, मुझे चिट्ठी लिखोगे ना?
0: हाँ भाई, रोज लिखूंगा। ठीक। अब चलें।
1: नामगिरी रक्षा करें, चलिए।
0: चलो।

0: अरे कृष्णा चेंगल तुम दोनों पूरा एक साल लगा दिया भाई तुम दोनों ने।
1: साल से कुछ कम हमने तय किया था, जाएंगे तो एक साथ।
2: हाँ
1: तेरा क्या हाल है?
0: बस काम ही काम। अच्छा ये बताओ अम्मा कैसी हैं?
1: अरे अरे बैठने तो दे।
2: आओ बैठो।
1: अम्मा अच्छी है।
0: और जानकी?
2: जानकी जानकी उदास रहती है।
0: मजाक छोड़ चंगल।
2: अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये देख भाभी ने तेरे लिए खास चीज भेजी है।
0: क्या है?
1: और अम्मा ने भी।
0: अरे वाह बड़े दिनों बाद घर की बनी खाने की चीज मिली। दो दो दो दो जल्दी दो मुझे।
3: अच्छा अरे अरे आराम से। अच्छा ये बता यहाँ क्या खाता है?
2: बता भाई।
0: हाँ बताऊ खाने की बड़ी परेशानी है।
1: हाँ तो भाभी जी को बुला लेना।
0: तब तो हो चुका काम।
1: है
0: यहाँ तो बस काम काम और सिर्फ काम।
2: अच्छा ये बता प्रोफेसर हार्डी मिलते हैं?
0: हाँ रोज मिलते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है। प्रोफेसर बेरी प्रोफेसर लिटिलवुड सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ बड़ी अम्मा कैसी हैं?
2: अरे अम्मा ठीक हैं। ये खत भिजवाया तेरे लिए। ये
0: ले तो मुझे।
2: चल अब तुझे खुशी की बात बताता हूँ।
0: क्या?
2: मद्रास यूनिवर्सिटी ने 250 पौंड और दिए।
0: हाँ चेंगल जानता हूँ, इसीलिए सोचता हूँ प्योर मैथमेटिक्स में अभी काम करने का वक्त आया है।
3: अरे वो तो तुम जोरदार कर रहे हो।
1: तेरी सारी खबर मिल जाती है हमें।
0: अच्छा ये बात है। तब बताता हूँ तुम्हें, मेरे दिमाग में आजकल बस अंक नाचते रहते हैं। संख्याएं बनती हैं कटती हैं फिर खड़ी हो जाती हैं।
2: ओ
0: कई कई रूप। बस एक काम पूरा हो जाए तब सोचूंगा क्या करना है। कॉफी बनाओ तुम लोगों के लिए।
2: हाँ बनाओ।
0: एक मिनट कोई आया है बाहर। अरे सर आप। गुड इवनिंग सर। आइए सर।
4: गुड इवनिंग स्वामी।
0: इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त कृष्णा स्वामी।
3: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग।
0: और सर ये है चेंगल बरायन।
5: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग।
0: और आप हैं प्रोफेसर हार्डी।
6: गुड इवनिंग सर।
4: गुड इवनिंग। प्लीज सिट डाउन।
6: थैंक यू सर।
3: सर वी हैव आल्सो जॉइन कैम्ब्रिज सर।
4: Oh, that's very good. Excellent.
3: हमारा सौभाग्य सर।

0: बेरी इलिप्टिक इंटीग्रल पढ़ा रहे थे, उसी का कोई सवाल जिसे बने बनाए फॉर्मूले से हल करने में लगे हुए थे। फिर सर ये मुझे प्रोफेसर बेरी ने ही बताया कि इसी बीच आपका ये दोस्त श्रीनिवास खड़ा हो गया।
1: ओ,
0: बोला सर मैंने सवाल हल कर लिया है।
1: सच में?
0: प्रोफेसर बेरी ने देखा हैरान, जवाब बिल्कुल सही था। मैं वही पूछने चला आया, क्यों रामानुजम तुमने ये सवाल हल कैसे किया?
1: अब वो तो नहीं मालूम सर।
0: मतलब व्हाट यू मीन?
1: बस सर एक फ्लैश सी हुई और हल सामने था।
0: फ्लैश? पर कोई तरीका तो होगा ना?
1: तरीका तो पता नहीं, कोशिश कर रहा हूँ सर ढूंढने की।
0: ढूंढने की?
1: जी।
0: What you mean by that?
1: तरीका सर, तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता।
0: इसीलिए मैं इसे एक एनिग्मा कहता हूँ।
2: हम तो बचपन से इसे ऐसे ही देख रहे हैं।
1: जी,
2: ये ऐसे ही काम करता है, बात करते करते खो जाएगा। और हमें याद है एक दिन ये पूरी रात समुद्र किनारे घूमता रहा अपने नंबरों के साथ, और एक बार तो चारपाई के नीचे घुसकर काम करता रहा।
0: ओह वेल, श्रीनिवास
1: सर,
0: नो कॉफी टुडे?
1: सॉरी सर, अभी बनाता हूँ सर।
0: आपका दोस्त कमाल का आदमी है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: यू आर मोस्ट वेलकम। अभी तो प्रोफेसर लिटलवुड के साथ काम कर रहा है। सुना हालात खराब होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉर?
1: सर, आर कंट्री बुद्धा कंट्री, no war only peace, shanti।
0: and you friend chingle?
2: subramaniam bharti sir, great poet, and we have tradition of bhakti, peace only
1: sir। we were talking about Srinivas।
0: oh yes, I understood। wo professor littlewood ab to wah war front pe hai, par humne bataya hai ki ramanujam ko kisi aur chhatra ki tarah se padhana theek nahi, you know why?
1: bataiye na sir।
0: you know कुछ बातें जो मैथमेटिक्स में साबित हो चुकी हैं, बट योर दिस फ्रेंड रामानुजन ही इज प्रूविंग देम इन अ डिफरेंट वे। इसके पास कोई थर्ड आई है जो इसे कुदरत ने दी है, आई थिंक।
3: वेरी राइट सर,
0: ही इज रियली अ सीयर ऑफ मैथमेटिक्स।
2: यू मीन साधु?
1: नो, ही मींस दृष्टा।
0: What's that? क्या कहा?
1: दृष्टा सर।
0: क्या मतलब?
1: A person who could see beyond perception।
0: Oh, that's very very right।
2: और रामानुजन आ गया।
1: कॉफी सर
2: लीजिए।
1: लीजिए सर कॉफी लीजिए।
0: Oh, thank you very much for the coffee।
2: आप भी लीजिए कॉफी।
0: Thank you very much for the वेरी फाइन कॉफी श्रीनिवास।
1: थैंक यू सर। अरे अरे बैठ ना, बैठ जा, तेरी ही चर्चा चल रही है।
2: मेरी चर्चा? हाँ, तेरी।
1: सर कुछ और बताइए ना इसके बारे में।
2: नो नो नो सर, नो नो नो।
0: रामानुजम प्लेज विद नंबर्स। इसका मानना है कि हर नंबर यानी हर अंक या हर संख्या की अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ ताकत है सम पावर में।
2: यू मीन न्यूमरोलॉजी सर? ये बात तो बचपन से ही कहता है।
0: नो, नॉट अ न्यूमरोलॉजी। रामानुजन के कहने के मुताबिक हर अंक के कुछ गुण होते हैं, जैसे जो संख्या 9 से कटती है उस संख्या का जोड़ भी 9 के अंक से कट जाता है, 27 या 36 या 45। ये संख्याएं 9 से कटती हैं तो इनका जोड़ भी कटता है।
1: अरे वाह।
2: पर सर जीवन में इसका कोई फायदा है?
0: बहुत लोग यही सोचते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स का हमारे जीवन में कोई इस्तेमाल नहीं, बट आई फील आने वाले कल में यही हमारे जीवन और विज्ञान में बिल्कुल नए रास्ते खोलेगा। माय कॉफी इज फिनिश्ड, अब चलना चाहिए, पूरा ब्लैकआउट होने का समय भी होने वाला है। ओके गाइस, गुड नाइट टू यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।
3: गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट,
0: गॉड ब्लेस।
1: थैंक यू सर। अरे वाह, प्रोफेसर हार्डी तो बड़े ही दिलचस्प आदमी है।
2: सही कह रहा है कृष्ण स्वामी, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। रामानुजन अब तू भी कुछ बोल।
1: अच्छा वो कुंभकोणम के क्या हाल है?
2: वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिलती तो उदास हो जाते हैं, और जब पता चलता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो सब परेशान हो जाते हैं।
1: अच्छा।
2: अम्मा कहती है वापिस बुला लो।
1: अच्छा वो कुमार मंगलम, सीतारमन और वो वेंकटेश्वरन, वो सब कैसे हैं?

0: अरे सब मजे में हैं, समंद्र किनारे जाते हैं, तेरी बड़ी याद आती है, अरे कितनी गप्पे
1: और वो
0: लगाते
1: जो एक ट्राम पर चढ़ते हुए तेरी टोपी उड़ गई थी।
0: थे। हाँ यार, अम्मा ने कितना डांटा था, वो टोपी फिर नहीं बन सकी। कैसा वक्त था वो भी, कागज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे।
1: तब भी तूने कितना काम कर लिया, देखा?
0: काम तो अभी करना है दोस्त, जंग की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। ये बारूदी धुआं, ये मुझे मुझे बहुत परेशान करता है।
2: रामानुजन, कुछ मैजिक स्क्वायर भी बनाए क्या?
0: हाँ चेंगल, इधर मैंने संख्याओं के विभाजन पर कुछ काम किया है।
1: हाँ, इस बारे में तुम्हारा एक पर्चा भी देखा था अब किसी मैगजीन में। क्या था भला उसमें?
0: यही कि हम एक संख्या को कई तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर चार, चार को हम पांच तरह से लिख सकते हैं। हाँ, जैसे 4+0, 3+1, 2+2, 2+1+1 एंड 1+1+1+1
2: है।
0: इसी तरह से एक्सेसिव एंड डिफेक्टिव नंबर है, 6 एंड 28 जैसे परफेक्ट नंबर्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ प्राइम नंबर्स यानी मूल अंकों का पता लगाया है, वो हैं 3, 5, 7, 11।
2: यानी
0: ये वो नंबर हैं जो इंडिविजिबल यानी जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। इसके अलावा टेंजेंट फंक्शन, गामा फंक्शन और थीटा फंक्शन पर भी कुछ काम किया है मैंने।
1: रामानुजन भाई, कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे?
2: थोड़ा बहुत नाम हम भी कमा लें।
1: अब आ ही गए हैं तो।
0: हाँ यार, ऐसे तो बहुत से एरिया हैं। अच्छा, एरिया से मुझे याद आया कि बेतरतीब जमीन के टुकड़े का क्षेत्रफल जानने के लिए मैंने डाइवर्जेंट सीरीज पर काम किया है,
2: चाहे वो टुकड़ा कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो।
0: हाँ।
1: अरे ये सायरन कैसा है?
0: टोटल ब्लैकआउट का टाइम हो गया।
1: बात तो कर सकते हैं ना?
0: बड़ा
1: खतरनाक वक्त है। अरे बम यहीं ना गिर जाए।
0: अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है।
1: रामानुजन, तुम अपनी बात कहते रहो, ये तो बचपन से ही डरपोक है।
2: अच्छा अच्छा, जहाज पर चढ़ने से तुम डर रहे थे या मैं?
1: वो अलग बात है।
2: समुद्री लहरों से तुम घबरा रहे थे या मैं?
1: अच्छा बस बस बस बस बस।
2: अरे ये बू कैसी आ रही है?
1: हाँ,
0: बारूद की बू है ये। पूरी हवा में है। ये बारूदी धुआं, ये मेरी जान लेने का।
1: क्या हुआ? पहले पहले भी ऐसा होता है क्या?
2: बिस्तर पर लेटाओ।
1: डॉक्टर बुलाएं?
2: अरे अस्पताल ले चले।
1: हाँ,
0: कुछ नहीं कुछ नहीं, पानी पानी दे तुम। हाँ, सिर्फ हाँ,
2: ये लो ये लो ये लो पानी। ये दवा, ये दवा तुम्हारी है?
0: वो वहां रखिए दवा।
1: हाँ, मैं लेके आया। ये
0: मैं सो रहा हूँ।
1: चेंगल चेंगल, क्या हुआ?
2: कृष्ण स्वामी, बुरी खबर
1: है।
3: चेंगल, व्हाट डिड डॉक्टर से?
2: तपेदिक, ट्यूबर क्लासेस सर।
3: ओ नो, एट दिस एज?
1: चेंगल, अब
2: डॉक्टर ने कहा है कि इसे भारत वापस ले जाना ठीक रहेगा। एक तो जंग, सारे वातावरण में बारूद ही बारूद की बू।
1: हाँ।
2: और कृष्ण स्वामी, तुम तो जानते हो, श्रीनिवास को कई चीजों से परहेज भी है।
1: हाँ, वो तो है।
3: नो नो नो, लेट मी टॉक टू द डॉक्टर।
2: उसे कुछ तो बताना होगा सर, और वापस जाना बहुत जरूरी है।
1: जी सर जी।
4: क्या हो गया ये सब तुम्हें?
0: लगता है चलने का वक्त आ गया।
4: नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, ये रोड नहीं छोड़ना था, वहां अपना घर है।
0: मद्रास में भी राव बहादुर का अपना ही घर था, फिर वहां की आबो हवा भी रास नहीं आ रही थी। मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेले हो जाओगे।
4: बार बार ऐसा कहकर मुझे परेशान करना चाहते हो ना?
0: परेशान? जानकी, मैंने तुम्हें कब परेशान नहीं किया?
4: एक बात पूछूं?
0: बोलो।
4: लंदन से मेरी चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं देते थे?
0: मैं जवाब नहीं देता था? तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया मैंने, और जब तुमने ही चिट्ठी लिखना बंद कर दिया तो क्या करता?
4: कितनी चिट्ठियां लिखी थी मैंने तुम्हें, पर जब तुम

0: एक का भी जवाब नहीं दिया तो मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखना बंद कर दिया।
1: जानकी, मैंने तुम्हारी हर चिट्ठी का जवाब दिया, तुम्हारी याद के सिवा मेरे पास और था ही क्या वहाँ।
0: झूठ, तुम तो हमेशा अपने नंबरों में ही उलझे रहते हो।
1: रहता था, लेकिन हाथ में रात को सोता भी है जानकी, उस वक्त तुम्हारी याद जरूर आती थी।
0: झूठ,
1: पर नंबर आते जाते जाते आते पता ही नहीं चलता था कि कब तुम्हारी याद को नंबर ढक लेते थे और कब नंबरों के साथ ही तुम्हारी याद तैरने लगती थी। सब गड़बड़ हो जाता था तो नींद घेर लेती थी।
0: चिट्ठियों का जवाब देते थे तो फिर जाती कहाँ थी तुम्हारी चिट्ठियाँ? मैंने तो एक चिट्ठी लंदन भी भेजी थी, तुम्हारे वो तुम्हारे दोस्त स्वामी के हाथ।
1: स्वामी के हाथ?
0: हाँ,
1: लेकिन उसने बताया नहीं मुझे और ना ही चिट्ठी दी। तुमने खुद दी थी?
0: हाँ, मैंने खुद दी थी उसे। नहीं नहीं, मुझे याद आया, मैंने वो चिट्ठी लिखकर अम्मा को दी थी। ओ, अब समझ गई सारी बात।
1: अम्मा? ऐसा क्यों किया अम्मा ने? लेकिन अम्मा ऐसा क्यों करेगी, समझ में नहीं आ रहा।
0: समझ में तो आता है, लेकिन चलो छोड़ो ये सब। सबसे जरूरी बात है कि तुम्हारी सेहत में सुधार हो जाए और तुम जल्दी से ठीक होकर फिर से अपने काम में तेजी से जुट जाओ। अपना काम प्योर मैथमेटिक्स, नंबर से जुड़े रहोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनो, हाँ? प्रोफेसर हार्डी से तुम्हारी बात होती है?
1: हाँ, उन्हें मैंने अपने मार्क थीटा फलन के आविष्कार के बारे में खत लिखा था, लेकिन अभी तक उनका जवाब नहीं मिला।
0: मार्क थीटा?
1: हाँ, प्रोफेसर रोसस ने फॉल्स थीटा फलनों का कुछ अध्ययन अपने निबंध में किया है, लेकिन मेरी खोज में ये गणित में बड़ी खूबसूरती से लागू किया जाता है।
0: मेरे पास नहीं है इतनी समझ, प्रोफेसर हार्डी को भेजो ना।
1: भेजा है ना, साथ में कुछ उदाहरण भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक उनकी राय नहीं मिली, बहुत बिजी हैं वो।
0: आराम से, चलो सूरज भी छिपने जा रहा है, हवाओं में नमी बढ़ जाएगी, चलो अंदर चलो।
1: एक मिनट सहारा दो मुझे।
0: आराम से चलो
1: चलो।
2: श्रीनिवास का भारत लौटना भी आखिरकार निरर्थक रहा।
3: भारत में उसका इलाज शुरू हुआ मद्रास में,
2: मद्रास से कुंभकोणम,
3: समुद्री हवाएं,
2: पहाड़ी मौसम,
3: बेहतर दवाएं,
2: दोस्तों की दुआएं और जान की भाभी की अथक सेवा,
3: अम्मा की पूजा,
2: नामगिरी का मंत्र जाप,
3: फिर भी हालत नहीं सुधरी,
2: श्रीनिवास ठीक नहीं हो सका। और वो कुंभकोणम में पैदा हुआ भारत का विलक्षण अंक दृष्टा 26
3: अप्रैल 1920 को छोटी सी 32 वर्ष की आयु में अपनी अक्षय कीर्ति छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। वो जिसने बचपन में सवाल किए थे, पहला सवाल, क्या शून्य को शून्य से भाग देने पर संख्या आएगी,
2: और फिर जीवन भर सवाल ही करता रहा, ढूंढता रहा उनके जवाब, संख्याओं का वो जादूगर चला गया,
3: वो अंकों का खिलाड़ी नहीं रहा।
2: अब हमारे पास समुद्री हवाएं हैं, पहाड़ों का मौसम है, अंकों का संसार, और हम खाली हाथ उठाए खड़े हैं
3: आसमान की ओर, जहां सिर्फ शून्य है, शून्य का विस्तार, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं रामानुजन के गणित का इस्तेमाल, प्योर मैथमेटिक्स,
2: शुद्ध गणित,
3: परमाणु शक्ति,
4: शून्य, शून्य का विस्तार, और हम आज भी खोज रहे हैं रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ, रामानुजन होने का अर्थ।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक रामानुजम, लेखक डॉक्टर प्रताप सहगल, भाग लेने वाले कलाकार थे साबिर हुसैन, राजेश बख्शी, राजीव शर्मा, किशोर सहजानी, ब्रजमोहन यादव, जयदीप सिंह, उर्मिला चंदोलिया, सविता शर्मा और नौरीन शर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: श्री मोदी ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले की इस वर्ष 25वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने जनगणना के लिए लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। श्री मोदी ने मन की बात में कुपोषण से लड़ाई की भी चर्चा की।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में असम के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का उदाहरण दिया। प्रकृति के साथ मानव संबंध का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में एक प्रेरणादायक उदाहरण का जिक्र किया, जहां झड़खाली की कुछ महिलाएं मैंग्रोव वन लगा रही हैं। श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करने और इसकी विविधता की रक्षा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के निरंतर अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए गांव के लिए बेहतर कस्बों तक पहुंचकर खेल प्रतिभाओं की खोज करना जरूरी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुन रहे हैं आप एक गीत आशा भोंसले और अमित कुमार की दिलकश आवाजों में, फिल्म जीवा से। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन।

0: प्यारे दोस्तों और हमारे सभी प्यारे लिसनर्स को नमस्कार। वेलकम टू आवर सुपर फन रेडियो किड्स प्रोग्राम। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट द फन बिगिन। पर शुरू करने से पहले जरा एक बार अपने आप का परिचय तो दे दीजिए।
1: मुसाब
2: सर,
1: इसराज
3: सौर्य,
4: संस्कृति मडवाल,
5: अमाया गुप्ता,
6: परिणीति।
0: यहाँ पे तो बहुत क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं आज। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारी लाइफ में लर्निंग कभी बंद नहीं होती। सुबह उठने से लेकर स्कूल जाने तक और स्कूल से वापस घर आने तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने?
2: हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: कभी हमारी टीचर कोई नई बात सिखा देती है, कभी दोस्त मजेदार ट्रिक सिखा देते हैं, और कभी कभी तो हम अपनी गलतियों से ही सीख लेते हैं और फिर हमारी गलतियाँ कहती हैं चलो आज कुछ नया ही सीख लो। और मजे की बात तो ये है कि हर दिन की अपनी कोई एक नई ही लर्निंग होती है। तो आज देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे दोस्त ने ऐसे कौन कौन सी नई बात सीखी है। चलो तो शुरू सहर से करते हैं। बताओ सहर, आपने क्या सीखा?
6: मैं पहले साइकिल चलाना सीखी, बार बार गिरी लेकिन वापस साइकिल चलाना सीख गई।
0: अरे वाह सहर। चलो शौर्य अब तुम ही बता दो।
3: तो मैंने कंप्यूटर वेबसाइट्स पर प्रोग्राम करना सीखा है।
0: अरे वाह, अब इस राज की टर्न है।
1: सुबह से मिलने वाली सीख, हर सुबह जब मैं अपना बिस्तर खुद ठीक करता हूँ तो मैं चीजें व्यवस्थित करना सीखता हूँ, तो मैं डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखता हूँ। मैंने सीखा है कि अपनी छोटी छोटी काम खुद करने से भी हम इंडिपेंडेंट बनते हैं। एक छोटी सी कविता जो मैंने खुद सीखी थी सुबह से मिलने वाली सीख पर। छोटी सी मेरी रोज की बात, दे जाती है सीख बड़ी खास, अपने काम खुद करना सीखो, बन जाओ अपने काम के बॉस।
0: अब संस्कृति से भी तो सुन लिया जाए।
4: मैंने तो पहली बार क्रोशे बनाना सीखा था, क्योंकि क्रोशे से बनी हुई हर एक चीज मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं सोचती थी अगर इसे खुद से बनाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा।
0: पता है संस्कृति, मेरे पास एक क्रोशे का टॉप है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी किसी दिन।
4: हाँ जी जरूर।
0: अब फाइनली बारी आ ही गई परिणीति की, तो आप भी कुछ बताइए अपने बारे में।
6: मैं डेली योगा सीखती हूँ।
0: और परिणीति को डेली योगा सिखाता कौन है?
6: मम्मी पापा।
0: चलो बातें तो बहुत हो गई, एक गाना भी सुन लिया जाए।
7: हाँ।

0: दोस्तों, स्कूल का नाम सुनते ही हमारे सामने कितनी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स और होमवर्क जो हर रोज हमारी टीचर हमें दे देती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स। हर दिन हमारी टाइम टेबल में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी मैथ्स, कभी साइंस, कभी इंग्लिश, तो कभी सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में अक्सर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी क्लास हमें थोड़ी ज्यादा पसंद आती है। तो जल्दी जल्दी बता दो, किसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पसंद है?
1: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिंदी है।
2: और हाँ, मेरा तो विज्ञान है, यानी साइंस। वो जादू जैसा लगता है, जैसे कि शहद कभी खराब नहीं होता, चाहे वो हजारों साल पुराना भी क्यों ना हो।
0: हाँ शौर्य, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब जरा शहर से भी तो पूछ लिया जाए कि उनका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
1: हिंदी।
0: अच्छा, तो शहर का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। जरा ये तो बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी क्यों है?
1: क्योंकि उनकी माँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है।
0: ये तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी का कोई फेवरेट सब्जेक्ट उनकी टीचर की वजह से भी होता है। हिंदी में तो बहुत सारी कविताएं भी होती हैं। तो क्या कोई कविता है?
1: लक्ष्मी बाई, मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। घुमी हुई आजादी की कीमत सबने मन में पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
0: अरे वाह, चलो अब मुसाब से पूछती हूँ कि उसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
3: गणित मेरा पसंदीदा विषय।

0: है क्योंकि इसमें रटने के बजाय अभ्यास की जरूरत होती है।
1: अरे वाह मुसाब, अरे मैं देख रही हूँ इतनी देर से परिनीति मुझे चूटी मार रही है कि दीदी मुझे भी तो बोलने का मौका दे दो। चलो परिनीति अब तुम बताओ।
2: मुझे हिंदी पसंद है और मैं आपके लिए कविता लेके आई हूँ,
1: तो जरा सुना भी दो।
2: एक चिड़िया के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, उत्तर से पश्चिम को जाए धूमधाम जब घर को आए, मम्मी को एक बात सुनाए, देख लिया हम जग नजारा अपना घर है सबसे प्यारा।
1: अरे वाह परिणीति कितनी क्यूट सी पोयम थी ये। इसराज तुम बताओ।
3: मेरा सबसे प्रिय विषय है विज्ञान, साइंस। मुझे विज्ञान इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हमें केवल पढ़ना ही नहीं पड़ता बल्कि देखना, सोचना, सवाल पूछना और एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखना भी होता है। मुझे विज्ञान केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं लगता, विज्ञान हमारे चारों ओर है, हमारे घर में, हमारे प्लेग्राउंड में, आसमान में, पेड़ पौधों में, पानी में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में।
1: अरे वाह इसराज, अब अमाया से भी पूछ लिया जाए।
4: मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस क्योंकि इसमें मेरे अंक ज्यादा आते हैं और साथ ही साथ पढ़ने में बहुत इजी होता है।
1: मैंने एक बात तो नोटिस की है, यहाँ पर ज्यादातर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट या तो हिंदी है या फिर साइंस है। चलो अब फिर से एक गाना सुन लिया जाए।
5: हाँ जरूर।

0: परिणीति प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मुझे बता रही थी कि दीदी पता है आज मैं गाना भी लेके आई हूँ, तो चलो अब परिणीति जी से गाना सुन लिया जाए।
1: हाँ दीदी।
0: तो चलो सुने इसका गाना।
2: हाँ, हाँ। हाँ।

0: बनी भूरी कटुंब पूरी कते।
1: परिणीति का गाना सुन के तो मुझे भी एक गाना याद आ रहा है।
2: अच्छा जी संस्कृति, तो सुना भी दो।
1: ठीक है, सुना देती हूँ।

वाह संस्कृति, कितना सुंदर गाना गाया तुमने। दोस्तों अभी हमने बात की कि हर दिन कुछ नया सीखना कितना मजेदार होता है, और सच कहें तो सीखना सिर्फ किताबों से नहीं, कभी किसी की बातों से, कभी किसी के काम से, तो कभी किसी की पूरी जिंदगी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

0: बापू भी कहते थे। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में से एक थे। जब मैं गांधी जी की तस्वीर देखता हूँ तो सबसे पहले मुझे उनके गोल चश्मे, सफेद धोती और शांत मुस्कान दिखाई देती है। गांधी जी बहुत ही सरल जीवन जीते थे। वे खादी के कपड़े पहनते थे और चरखा चलाते थे। वे मानते थे कि हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए।
1: हाँ इसराज, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो संस्कृति, आप बता दो।
2: महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया। वह मानते थे कि बिना अहिंसा के भी बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को हमेशा सच बोलने, मेहनत करने और अपने देश से प्रेम करने की सीख दी।
1: बहुत बढ़िया संस्कृति। चलो शौर्य, जरा आप भी कुछ बता दो।
3: तो मैं उनके बारे में तीन कहानियां सुनाना चाहता हूँ।
1: तीन? चलो आप सुना दो।
3: तो एक बार गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो जैसे ही ट्रेन चल पड़ी, उनका एक जूता फिसल कर सीधा ट्रैक पर गिर गया। तो गांधी जी ने दरवाजे बंद होने से पहले ही दूसरा जूता उनके पहले वाले के ठीक बगल में ही फेंक दिया। उनके आसपास खड़े हुए लोग हैरान हो गए। बापू, आपने अपना दूसरा जूता क्यों फेंक दिया? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई गरीब रेलवे ट्रैक से मतलब कि जा रहा होगा तो एक जूता उसके किसी काम का नहीं, दो जूते वो कम से कम पहन तो पाएगा। और हाँ दूसरी, तो एक बार गांधी जी की एक छोटी सी पेंसिल आश्रम में गुम गई। वो इतनी छोटी थी उसको पकड़ना तक भी मुश्किल हो जा रहा था। कुछ लोगों ने उनको नई पेंसिल देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और फिर अपनी पुरानी पेंसिल ढूंढ ली। और फिर गांधी जी ने बोला, ये ना मुझको मद्रास ने एक बच्चे ने बड़े ही प्यार से दी थी और मैं किसी के प्यार को अनदेखा नहीं कर सकता। तो ये कहानी बताती है गांधी जी के पास नेशन के लिए कितना प्यार है। और तीसरी, तो ना एक बार गांधी जी एक छोटे से पाठशाला में बच्चों से मिलने गए। वहाँ पर एक छोटा बच्चा था जो गांधी जी की सिंप्लिसिटी देखकर उदास हो गया। गांधी जी उनके पास आए और बड़े ही प्यार से पूछा कि वह उदास क्यों है। बच्चे ने बोला, बापू आप सिर्फ धोती क्यों पहनते हैं, कुर्ता क्यों नहीं, आपको ठंड नहीं लगती? तो फिर बाद में मैं अपनी मम्मी से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा, ये बच्चे ने कहा था। गांधी जी ने कहा, अरे मैं ही नहीं हूँ जिसके पास कुर्ता नहीं है। और हाँ, मैं सिर्फ जभी ऊपर का हिस्सा पहनूंगा जब मेरे लाखों बहन भाइयों के पास भी कपड़ों की कमी नहीं होगी।
1: अरे वाह शौर्य, कितनी मोटिवेशनल कहानी थी। तो अब सेहत भी कुछ बोलना चाह रही हैं।
4: मैं आज गांधी जी के बारे में एक कविता सुनाना चाहूंगी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर थर थर थर सुनकर उनका नाम रे। बंदे में था दम, बंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे मातरम।
0: अरे मुझे तो इस कविता पर एक गाना याद आ रहा है।
1: अच्छा, तो जरा सुना भी दो वो गाना।
0: ठीक है।

0: बहुत अच्छा गाना था।
1: मुझे दिख रहा है अमाया के पास भी कुछ है, तो जरा सुना जाए उसका भी।
2: महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरक प्रसंग चलो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम गांधी जी के बचपन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग सुनने जा रहे हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि ईमानदारी छोटे उम्र से ही हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। बात उस समय की है जब मोहनदास यानी गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार स्कूल में अंग्रेजी अधिकारी द्वारा विद्यार्थी की वर्तनी की परीक्षा ली जा रही थी। परीक्षा के दौरान गांधी जी से एक शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई। उनके शिक्षक ने उन्हें संकेत किया कि वे पास बैठे विद्यार्थी की कॉपी देखकर वह स्पेलिंग लिख ले, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। यानी उस समय भी उन्होंने यही सोच कि अंक कम मिल जाए लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर परीक्षा में कोई सवाल नहीं आता तो गलत तरीके से उत्तर लिखने या नकल करने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कम अंक उसे सुधारने का मौका देते हैं, लेकिन बेईमानी हमारे चरित्र को कमजोर कर सकती है।
1: अरे वाह अमाया, बहुत खूब। अरे हम इतनी देर से गांधी जी की बातें करे जा रहे हैं, पर किसी ने ये सोचा कि हम क्यों करे जा रहे हैं गांधी जी की इतनी सारी बातें?
3: क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है।
1: जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हम महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने की सीख दी थी।
4: हाँ आपने सही कहा, लेकिन अब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। क्या आपको पता है 2 अक्टूबर को एक और महापुरुष की जयंती हम मनाते हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका नारा था जय जवान जय किसान। वह अपनी सादगी के लिए ही जाने जाते थे।
5: मुझे गांधी जयंती के बारे में बोलना है।
1: हाँ हाँ बोलो मुसाब।
5: गांधी जी सत्य और अहिंसा के पर चलते थे। उनका मानना था कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मबल और शांति से इसे जीता जा सकता है। वह दुनिया में फेमस होने के बावजूद एक आम इंसान के तरह बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनका पहनावा और रहन सहन उनकी सादगी का प्रतीक था।
1: हाँ मुसाब, आपने बिल्कुल सही बात की। तो दोस्तों आज के हमारे कार्यक्रम में हमने कितनी सारी चीजें देखी, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में, हर दिन कुछ नया सीखने के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी जी और उनके गुणों के बारे में, जिनसे हमें आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है, तो किसी को मैथ्स, या फिर किसी को आर्ट पसंद है, और यही तो हमारी खूबसूरती है। हर किसी की अपनी पसंद और अपने सीखने की कहानी होती है, और अगर हम हर दिन बस एक नई चीज सीखें और साथ ही सच्चाई, सादगी और अच्छे व्यवहार जैसी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हर दिन थोड़ा और स्पेशल बन सकता है। तो इसी प्यारी सी लर्निंग और ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, तो चलो जाते जाते महात्मा गांधी जी का एक भजन भी सुन लिया जाए।
3: हाँ बिल्कुल।
1: जिसका नाम है रघुपति राघव राजा राम, जो कि गांधी जी का फेवरेट भजन था।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेडियो किड्स। आपको बता दें कि अब से कुछ ही पलों बाद यानी ठीक 4 बजे सुनिएगा पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। 4:10 पर कुछ प्यारे से हिंदी फिल्मी गीत आप तक पहुंचेंगे। 4:20 का समय है एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचारों का और 4:30 पर प्रसारित करेंगे प्रोग्राम परिक्रमा। फिर शाम 5 बजे सुनिएगा समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। 5:10 का समय है कार्यक्रम हौसले का। पूर्वोत्तर डायरी आप तक पहुंचेगा 5:30 पर। तो बहुत कुछ है आपके लिए और ये सब आपको पसंद आएगा ये बात तय है। बस आपको करना है एक छोटा सा काम, आज रविवार के दिन आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन के साथ जो आप तक पहुंचता है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: 1,472 करोड़ की लागत से जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के सभी पैसेंजरों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एलएनजी से चलने वाली ट्रेन का भी लोकार्पण हुआ है जो आने वाले दिनों में बहुत पर्यावरण की सुविधा का काम करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। पश्चिमी नेपाल में तिब्बत सीमा के पास हिमलुंग हिमाल में आधार शिविर पर आज सुबह हिमस्खलन के बाद 10 लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों को आगे न बढ़ने की सलाह दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के 2 सबसे बड़े शहरों में गोलीबारी की घटनाओं में 27 लोग मारे गए हैं। कल रात जोहान्सबर्ग के वेडेला टाउनशिप के एक बार में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की जिसमें 17 लोग मारे गए। केप टाउन के पास हुई एक अन्य गोलीबारी में आज 10 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज 4 धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में बिजली गिरने की आशंका है। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने एक और कांस्य पदक जीत लिया है। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने देश को ये पदक दिलाया। इससे पहले स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने रजत पदक जीते। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के नेक्रोस सलीमोव को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। पदक तालिका में चीन 113 स्वर्ण समेत 190 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 27 ओवर में 1 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। कुछ धुनें दिल के बहुत पास होती हैं और कुछ गीतों में बीती मुलाकात की बात होती है। सुर छिड़ जाए तो यादें महकने लगती हैं और खामोशियां भी जैसे गुनगुनाने लगती हैं। तो आइए आज फिर सुरों में खो जाएं, कुछ पल मुस्कुराएं, कुछ पल गाते जाएं, गुनगुनाते जाएं। आज रविवार की दोपहर आप हैं एफएम गोल्ड के साथ आकाशवाणी दिल्ली के चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने गीत। फिल्म है 1966 की बहारें फिर भी आएंगी। शिवान रिजवी के लिखे शब्दों को संगीत की धुनों में पिरोया संगीतकार ओपी नैयर ने और बड़े ही दिलकश अंदाज में हम तक गाकर पहुंचाया मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने।

0: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7, गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
6: और FM गोल्ड पर एक और ऑल टाइम हिट सॉन्ग पहुंच रहा है आप तक, फिल्म दिल और मोहब्बत से। ओपन एयर का म्यूजिक, लिरिक्स शिवान रिजवी के, आवाजें हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

0: for areas including VC Secretariat, HR and Recruitment, GAD, Procurement, Programs, Agribusiness, Resident Business and Engineering and Development. Detailed notification, eligibility criteria, terms of reference and the online application facility are available on the university's website. The last date for submission of online applications is 30th September 2026. Applications will be accepted only through the university's website. Kindly refer to www.tsu.ac.in/careers. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में ये पद रिक्त हैं। इंजीनियरिंग अधिकारी ग्रेड वन, पदों की संख्या 7। इंजीनियरिंग अधिकारी ग्रेड वन सिविल 1 पद। इंजीनियरिंग सहायक विद्युत 10 पद। इंजीनियरिंग सहायक यांत्रिक 1 पद। वैज्ञानिक सहायक रसायन 2 पद। तकनीशियन ग्रेड 1 7 पद। तकनीशियन ग्रेड 1 2 पद। तकनीकी परिचर ग्रेड 1 37 पद और सहायक ग्रेड 2 29 पद तथा बहुकार्य स्टाफ ग्रेड 1 14 पद। इच्छुक उम्मीदवार पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, आयु में छूट, अनुभव और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं CPRI की वेबसाइट cpri.res.in। इस वेबसाइट के करियर पृष्ठ पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान PSU, अर्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के पात्र और अनुभवी सेवानिवृत्त सरकारी अभियंताओं से आवेदन आमंत्रित करता है। पात्रता मानदंड, नियम और शर्तें सहित विवरण दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है delhijalboard.delhi.gov.in। ग्राम अधौरा, जिला कैमूर, बिहार में वनवासी सेवा केंद्र की कृषि विज्ञान केंद्र इकाई के तहत इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। फार्म मैनेजर 1 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 1 पद। शैक्षणिक योग्यता, अन्य मानदंडों और पदों की संख्या, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 19 से 25 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर यंग प्रोफेशनल्स तकनीकी के 6 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है www.mnre.gov.in। भारत सरकार का उपक्रम राइट्स लिमिटेड आवेदन आमंत्रित करता है इन पदों के लिए। महाप्रबंधक, टीम लीडर, मेट्रो कार्य, संयुक्त महाप्रबंधक, भू तकनीकी विशेषज्ञ, उप महाप्रबंधक, वास्तुकार, उप महाप्रबंधक, संरचनात्मक अभियंता भवन, सहायक प्रबंधक, संरचनात्मक अभियंता भवन, सहायक प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वास्तुकार, सहायक प्रबंधक, भवन विशेषज्ञ और सहायक प्रबंधक, वास्तुकार, मेट्रो रेल विशेषज्ञ। विस्तृत विवरण के लिए देखिए राइट्स की वेबसाइट www.rights.com। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: कभी कोई रास्ता हमें किसी नई जगह ले जाता है तो कभी वही रास्ता हमें किसी नई संस्कृति, नई कहानी और अपने ही एक नए रूप से मिलवाता है। शायद इसीलिए सफर की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपी होती है। आज 27 सितंबर यानी विश्व पर्यटन दिवस है। दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये दिन पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को रेखांकित करता है। भारत की बात करें तो यहाँ पर्यटन केवल खूबसूरत जगहों की यात्रा नहीं बल्कि इतिहास, विरासत, आस्था, कला, खान पान और विविध संस्कृतियों से रूबरू होने का माध्यम है। तो आज के परिक्रमा कार्यक्रम में सफर रहेगा कुछ ऐसे ही कहानियों का, देश दुनिया की खबरों से लेकर उन शख्सियतों तक जिन्होंने अपने काम से इतिहास में अपनी खास जगह बनाई। मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
2: हेलो वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स आल्सो, गुड डे एवरीवन। दिस इज परिक्रमा 100.1 एफएम। टुडे विद मी शगुन एंड वैष्णवी, वी आर टुगेदर। वी आर वेरी थ्रिल्ड टू बिगिन आवर प्रोग्राम एंड एज यू सेड, इट्स ऑलवेज अबाउट द जर्नी एंड द एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन।
1: बिल्कुल।
2: समथिंग कॉन्ट्रास्टिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स, दैट it is a bit about the destination as well. Mm-hmm. If it's beautiful, if you, I'm talking about the places, the destinations that you travel to basically. Gee. So those destinations, they are the ones to look out for, and I believe that it's also about the journey and the experience in life. So with that, let's begin our program. We have so much that we will unravel in the next 30 minutes, and first we are beginning, both of us, we are beginning with the headlines. Shall we start?
1: Gee.
2: Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindoor demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response.
1: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की।
2: The Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete.
1: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया।
2: रेड अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल इश्यूड ओवर उत्तराखंड एंड वेस्ट उत्तर प्रदेश फॉर टुडे।
1: और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वॉश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया।
2: This is our segment, Dateline India, and today we are actually talking about World Tourism Day. Vaishnavi.
1: बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। पर्यटन हमें नई जगहों से नहीं बल्कि नई संस्कृतियों, परंपराओं और कहानियों से भी जोड़ता है। तो आइए बात करते हैं भारत में पर्यटन के बदलते स्वरूप और उससे जुड़ी कुछ खास पहलुओं की। किसी के लिए भारत उसकी विरासत में बसता है, किसी के लिए प्रकृति में, तो किसी के लिए खान पान में और किसी के लिए यहाँ के लोगों की गर्मजोशी में। लेकिन भारत से लौटते समय हर यात्री अपने साथ इस देश की कोई ना कोई खास याद जरूर लेकर जाता है।
2: दैट इज ट्रू वैष्णवी, एंड टूरिज्म इज नॉट मेयरली, स्पेशली इन इंडिया, टूरिज्म इज नॉट मेयरली अ जर्नी टू प्लेसेस बट अ जर्नी ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। इट इज अ लैंड वेयर सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशंस रिमेन वाइब्रेंट टू दिस डे, वेयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव बीन हियरिंग अबाउट दिस आइडिया सिंस चाइल्डहुड, एंड दिस इज नॉट जस्ट स्पोकन but it is lived, and where a traveler arriving from any corner of the globe ceases to be mere guest and becomes one of our own, right?
1: बिल्कुल। कहीं हिमालय की ऊंची चोटियां भारत की भव्यता का एहसास कराती है, तो कहीं रेगिस्तान की रेत सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है, कहीं किलों में इतिहास जीवंत है तो मंदिरों में आस्था की गूंज सुनाई देती है, गलियों में संस्कृति की झलक मिलती है और हर मेहमान के स्वागत में अतिथि देवो भव की भावना दिखाई देती है।
2: अतिथि देवो भव, यस। एंड वैष्णवी, वी सेट आउट टू डिस्कवर न्यू प्लेसेस बट अलोंग द वे वी कलेक्ट मेमोरीज, द एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज, फ्रेंडशिप्स, फ्लेवर्स एंड द पर्सपेक्टिव्स दैट स्टे विद अस लॉन्ग आफ्टर द जर्नी एंड्स। एंड मार्क ट्वेन famously said that travel is actually fatal to prejudice, and perhaps that

0: is one of the most beautiful things about tourism. It brings people closer to places, to cultures, and importantly, to one another.
1: बिल्कुल. और 27 सितंबर का जो ये दिन है, ये विश्व पर्यटन दिवस पर ध्यान उस बदलाव पर है जो यात्राओं की योजना बनाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनकी यादों को संजोने के तरीके को बदल रहा है.
0: दैट इज ट्रू. सो लेट्स ऑल्सो शेयर द थीम फॉर दिस ईयर. द थीम इज डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म.
1: शगुन, सोचिए आप 3 दिन की छुट्टी की योजना बनाते हैं तो 10 अलग अलग ऐप के खोलने के बजाय आप बस एक AI पावर ट्रैवल असिस्टेंट से पूछते हैं कि मुझे इतिहास, स्थानीय खाना और शांत जगहें पसंद है, मेरे पास 3 दिन है और बजट भी सीमित है.
0: अ स्पेशलाइज्ड ऐप, सो आवर सर्च विल बिकम, आवर रिसर्च बेसिकली विल बिकम इवन क्विकर. एंड I understand what you're about to say. Within moments, that AI bot could potentially suggest destinations, create an itinerary, and check the weather for us, recommend experiences, and help organize the journey.
1: बिल्कुल. और भारत एक ऐसा टूरिज्म इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहाँ टेक्नोलॉजी, डेटा और AI यात्रा को अधिक व्यक्तिगत, आसान और सुगम बना सकते हैं.
0: And we all know that one traveler can create a chain of opportunities for an entire community. That is why tourism is much more than just sightseeing. It is about that also.
1: जी बिल्कुल. वहीं भारत में 2023-24 में पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 5.22% योगदान रहा और इसने 8.46 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करे. वहीं देश में पर्यटन का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है.
0: And let's talk more numbers. So domestic tourist visits reached 428.55 crore last year, while foreign tourist visits rose to 2.53 crore. Foreign exchange earnings from tourism, they climbed to 2,76,800 crore rupees last year alone.
1: शगुन, आज के समय में स्मार्टफोन यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बनते जा रहा है. भारत भी इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पर्यटकों को यात्रा से जुड़ी जानकारी और सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है.
0: इट हैज बिकम मच इजियर टू ट्रैवल, डोंट यू थिंक सो? एंड द रीवैम्प्ड प्लेटफॉर्म, इट ब्रिंग्स टुगेदर द एक्सपीरियंसेस कवरिंग हेरिटेज, कल्चर, एडवेंचर, गैस्ट्रोनॉमी, वेलनेस, आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड मच मोर, रूरल टूरिज्म एज वेल.
1: इसके AI पावर्ड फीचर्स यात्रियों की पसंद और जरूरत के मुताबिक यात्रा से जुड़ी जानकारी देते हैं. ये मौसम के ताजा अपडेट भी उपलब्ध कराने के साथ साथ शहरों और जरूरी सेवाओं की जानकारी पाने में भी मदद करते हैं.
0: So can I ask you, Vaishnavi, an interesting question? It's very interesting. Can technology help tourists discover the India that is still waiting to be discovered?
1: बिल्कुल. अगर हम देखें तो भारत में ऐसी कई जगह हैं जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन देश में अनगिनत ऐसी कम जानी पहचानी जगह भी है जिनकी कहानियां उतनी ही दिलचस्प है. इन्हीं जगहों को सामने लाने में देखो अपना देश 2.0 और स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
0: मोर सो देखो अपना देश 2.0 फोकसेस ऑन टूरिज्म रेडी लेसर नोन डेस्टिनेशंस एंड एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट टूरिस्ट फुटफॉल मोर वाइडली.
1: वहीं स्वदेश दर्शन 2.0 डेस्टिनेशन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाता है. इसमें जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, बेहतर सुविधाओं और पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभवों पर जोर दिया जाता है.
0: एंड इंडियाज टूरिज्म लैंडस्केप इज ऑलमोस्ट लाइक अ जायंट मोज़ेक. एंड देयर इज स्पिरिचुअल टूरिज्म इन अयोध्या, काशी, बोधगया, अमृतसर, तिरुपति, पुरी एंड मेनी अदर प्लेसेस.
1: जी, सिर्फ यही नहीं, जैसा आपने बोला, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़ने वाला बौद्ध सर्किट भी है. ये स्थल भारत के बौद्ध धर्म के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं.
0: एंड देयर आर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूजियम्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, फोर्ट्स एंड देन देयर आर क्लासिकल डांसेस, क्लासिकल म्यूजिक, फेस्टिवल्स, हैंडलूम्स एंड इट्स फेस्टिवल टाइम एज वेल इन होल ऑफ इंडिया, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एज वेल.
1: योग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ा वेलनेस टूरिज्म भी तेजी से बढ़ रहा है. इसके साथ ही भारत में वन्यजीव और ग्रामीण पर्यटन के भी कई अवसर हैं. समुद्री पर्यटन भी लोगों को आकर्षित कर रहा है. पिछले 12 वर्षों में भारत में क्रूज से यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 4 लाख से अधिक हो गई है, यानी शगुन इसमें 328% की वृद्धि हुई है.
0: 328%
1: जी,
0: that's quite a lot. Also, we have heard about cruise.

0: terminals. These are especially, we know them in cities like Mumbai, Chennai, Visakhapatnam. They are being upgraded. And while the East Coast cruise circuit has expanded with Puducherry.
1: टेक्नोलॉजी ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया को भी आसान और तेज बनाया है। QR बेस्ड इमिग्रेशन क्लियरेंस सिस्टम के जरिए अब प्रति यात्री इमिग्रेशन प्रक्रिया में लगभग 30 सेकंड का समय लगता है।
0: Just 30 seconds. That's great and astonishing. And one fascinating example which we would like to share, listeners, lighthouses were built to guide ships safely through the sea. And today, they have also become tourism destinations, lighthouses.
1: शगुन अब lighthouse के बारे में बात कर ही रही हैं, तो देशभर में 75 lighthouse को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को समुद्र इतिहास और lighthouse से जुड़ी तकनीक के विकास के बारे में जानकारी मिलती है।
0: 75 lighthouses, that's amazing. Now let's talk about Nidhi Plus, the national integrated database of hospitality industry. This provides a unified digital platform for registering, for recognizing and classifying tourism service providers. One-stop destination.
1: भारत ने ई वीजा सुविधा का भी विस्तार किया है। 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई ये सुविधा अब 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसके अंतर्गत यात्री 88 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के जरिए भारत में प्रवेश कर सकते हैं।
0: एंड वैष्णवी, अराउंड 78% ऑफ वीजेस इश्यूड बाय इंडिया आर नाउ इलेक्ट्रॉनिक वीजेस, व्हाइल अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ ई वीजा एप्लीकेशंस दे आर प्रोसेस्ड विद इन 72 आवर्स 3 डेज।
1: बिल्कुल, वहीं इससे भारत की यात्रा पहले की तुलना में आसान हो गई है। जैसे आपने आंकड़े बताए शगुन, अब यात्री विमान में सवार होने से पहले ही कई जरूरी औपचारिकताएं पूरे कर सकते हैं।
0: ओह यस, दैट्स कन्वीनियंट। एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स ओनली। इंडियाज ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हैड 1497 DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स अक्रॉस 262 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इंटरेस्टिंगली 58% वर बेस्ड इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज।
1: शगुन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्यटन में एक चीज अभी भी ऐसी है जो तकनीक कभी जगह उसकी नहीं ले सकती है, और वो है लोग। होम स्टे में आपका स्वागत करने वाले मेजबान, स्थानीय गाइड, शेफ, कारीगर या वो ड्राइवर जो किसी भी मैप से बेहतर स्थानीय रास्तों को जानता है।
0: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस मैप थिंग, देयर स्किल एक्चुअली। एंड होम स्टेज आर वेरी पॉपुलर नाउडेज, एंड दैट इज व्हाई टूरिज्म डेवलपमेंट आल्सो मींस इन्वेस्टिंग इन पीपल through the capacity building for service providers program. More than 1.68 lakh people were trained between past 5 years with more than 36,000 placed.
1: वहीं पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के अंतर्गत स्थानीय लोगों को मेहमान नवाजी, स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: And then comes connectivity. After all, what good is a wonderful destination if reaching is difficult? And under Regional Connectivity Initiative, 687 RCS Udaan routes connecting 95 airports have been operationalized.
1: साथ ही प्रसाद यानी कि PRASHAD स्वदेश दर्शन राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता यानी SASCI और चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट जैसी योजनाओं के जरिए पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है।
0: We will now inquire a bigger question here. What do we want technology to help us achieve? A faster holiday? A better one? As Steve Jobs famously said, technology is nothing. What's important is that you have faith in people. And perhaps that perfectly captures the future of tourism.
1: शगुन, अगर हम बचपन की बात करें तो पर्यटन हमारे लिए सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। टीवी पर दिखाए जाने वाले पर्यटन की वो यादगार विज्ञापन हमारे यादों का आज भी हिस्सा है, जिनकी धुन और पंक्तियां आज तक हमें याद है। मध्य प्रदेश का मशहूर अंदाज MP अजब है, सबसे गजब है, 90 के दशक के आखिर में बड़े हुए लोगों को आज भी जरूर याद होगा।
0: एंड एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ राजस्थान, मारी धोरान री धरती and Gujarat's Khushbu Gujarati, each of these they hold a unique identity of its own, don't you think?
1: बिल्कुल, और फिर आता है केरलम टूरिज्म, जिसने गॉड्स ओन कंट्री कहकर केरल को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई थी। तो क्यों ना आज विश्व पर्यटन दिवस पर इन यादगार विज्ञापनों को अपने श्रोताओं के साथ एक बार फिर सुने और उन खूबसूरत यादों को ताजा करते हैं।
0: श्योर।
2: MP में दिल हुआ बच्चे सा, मुगली के छोटे से कच्चे सा।

0: from the other forest.
1: The natural beauty of Khas, along with popular destinations like Mahabaleshwar and Panchgani, is attracting tourists from across the India and abroad. For Parikrama, this is Madhavi Kulkarni, Pune.
2: Vaishnavi, now let's tell our listeners about a 5-day elephant festival and rejuvenation camp which is being held at Bandhavgarh Tiger Reserve in Umaria district of Madhya Pradesh. The camp is being organized near Parsi Gate in the Mokhar buffer zone from 24th of this month till tomorrow.
3: और इसका उद्देश्य हाथियों को कुछ आराम देना, उनकी सेहत की जांच करना और उन्हें पौष्टिक व पसंदीदा खाना देना है। बांधवगढ़ के 15 कैंप हाथियों में से 9 को इस कैंप में शामिल किया गया है।
2: एंड देयर इज वन वेरी क्यूट लिटिल अट्रैक्शन, अ यंग एलिफेंट कृष्णा was born in Bandhavgarh last year in October, and this event also aims to promote tourism in the buffer zone and spread awareness among villagers about wildlife conservation and also about Krishna, the young elephant.
3: जी, और स्थानीय लोगों को हाथियों को करीब से देखने और उनकी देखभाल के बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है। शगुन, अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की ताजा हलचल।
2: एंड दिस इज अबाउट आवर स्पोर्ट्स अपडेट टुडे, इट्स अबाउट एशियन गेम्स वेयर इंडिया मेड अ स्ट्रांग स्टार्ट टू इट्स एशियन गेम्स आर्चरी कैंपेन इन आईची नगोया टुडे विद द मेंस एंड वुमेन्स कंपाउंड टीम्स एडवांसिंग टू द सेमीफाइनल्स अलोंग विद द रिकर्व।
3: भारत ने आज स्क्वाश में 2 सिल्वर मेडल जीते। भारत के अभय सिंह ने पुरुषों के सिंगल स्क्वाश में सिल्वर मेडल जीता। वहीं फाइनल में वे मलेशिया के इन यू एन जी से 11-9, 11-5, 11-5 से हार गए।
2: एंड द वर्ल्ड नंबर 26 इंडियन वाज अनेबल टू मैच द नंबर 18 मलेशियन हु डिफेंडेड हिज एशियन गेम्स टाइटल विद अ कमांडिंग स्ट्रेट गेम विक्ट्री।
3: महिलाओं के सिंगल स्क्वाश में अनिहत सिंह ने भी सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने मलेशिया की शिवसंगरी सुब्रमण्यम के खिलाफ फाइनल खेला था।
2: अर्लियर अंकुश पंघाल अशोर्ड इंडिया ऑफ इट्स फर्स्ट बॉक्सिंग मेडल एट द गेम्स आफ्टर डिफीटिंग ताजिकिस्तान्स नेकरू सालिमो 5-0 इन द मेंस 80 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टुडे।
3: भारत अब तक कुल 32 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है, जिसमें 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज ही के दिन वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की।
5: 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया।
4: 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी।
5: राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिनजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली।
4: इसी दिन 1873 में विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। एक सम्मानित नेता और मानवतावादी, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गुजरात के नाडियाड में जन्मे विट्ठल भाई ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद की अदालतों में वकालत की।
5: विट्ठल भाई ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में 2 विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और नगर नियोजन विधेयक। उन्हें 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का श्रेय दिया।

0: गया था।
1: जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया तो पटेल ने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए। वे 1928 में भारत सरकार से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाने के अपने प्रयासों में सफल रहे। ये विट्ठल भाई ही थे जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के तटस्थ रहने की परंपरा स्थापित की।
0: अपने बाद के वर्षों में विट्ठल भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। यूरोप में उनकी तबीयत खराब हो गई और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उनकी मृत्यु हो गई।
2: आज ठुमरी के रानी शोभा गुरटू की पुण्यतिथि है।
3: Well, yes, her mastery of ठुमरी and other semi-classical forms earned the title of ठुमरी Queen and she was honored with the Padma Bhushan in 2002.

श्रोताओं, कुछ आवाजें सिर्फ गीत नहीं गाती, वे किसी दौर की पहचान बन जाती है। महेंद्र कपूर की आवाज ऐसे ही आवाज थी जिसमें प्रेम भी था, विरह भी था और देशभक्ति का जोश भी था। शगुन, अब देशभक्ति की बात हुई ही है तो उनका जो फेमस गीत था मेरे देश, बिल्कुल, तो ये सुनते हैं।

0: आज ही के दिन यश चोपड़ा का भी जन्मदिन है और आज ही के दिन वे 1932 में लाहौर में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1959 में धूल का फूल से निर्देशन की शुरुआत की थी और आगे चलकर वक्त, दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, सिलसिला, चांदनी, लम्हे, डर, दिल तो पागल है और वीर जरा जैसी अनगिनत फिल्मों में हिंदी सिनेमा पर अपनी अलग छाप छोड़ी थी।
1: सो मेनी मूवीज देयर, राइट? एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चूज अ सॉन्ग, बट वी डिड द डिफिकल्ट पार्ट एंड वी हैव चोजन द सॉन्ग। लेट्स लिसन इन।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए अनुमति परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर एक जनसभा में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनोमेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनोमेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 2 रजत और 1 कांस्य समेत 3 पदक जीत लिए हैं। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक जीते। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में चीन 113 स्वर्ण समेत 190 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हम आपको बता दें कि इस मैच में रोहित शर्मा भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी 200वीं पारी खेलेंगे। विराट कोहली 59 रन बनाते ही सबसे तेज 15,000 एकदिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a

0: सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का चैनल एफएम गोल्ड, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे हौसले, संघर्ष और उस अदम्य इच्छा शक्ति की, जो किसी भी शारीरिक चुनौती से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। जब इरादे बुलंद होते हैं तो मंजिलें भी कदम चूमती है। इसी प्रेरणा के प्रतीक हैं हमारे आज के विशेष अतिथि श्री उदय कुमार जी। आप पैरा माउंटेनियर हैं और उन्होंने ये साबित किया है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सीमा नहीं, बल्कि साहस और संकल्प की नई परिभाषा बन सकती है। कठिन पहाड़ों को फतेह करके उन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। और उन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2023 मिल चुका है। तो ऐसे साहसी व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। उदय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो जानते हैं आपके संघर्ष के बारे में, आपकी पर्वतारोहण यात्रा के बारे में और चुनौतियों से लड़ने का वो साहस और वो संदेश जो आप पहुंचाना चाहते हैं हमारे अनगिनत सुनने वालों को। नाम,
1: मेरा नाम उदय कुमार है और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को। एक चलता फिरता इंसान रेंगने को मजबूर हो गया। मैं अपने गांव से शहर की तरफ आ रहा था और उस दौरान मैं अपने रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में उठा और उठ के बेसिन के तरफ गया और वो बेसिन उस समय भरा हुआ था और पानी ओवरफ्लो होके नीचे ट्रेन में ही गिरा हुआ था। मैंने हाथ में पानी लिया और जैसे ही अपने फेस पे छींटा मारा, पता नहीं एक जर्क आया और अपने बॉडी को अनबैलेंस्ड किया और मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीचों में फंस गया और ट्रेन तब चल रही थी। खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन ट्रेन आगे बढ़ती गई और प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसने की वजह से मेरा पैर पूरी तरीके से जख्मी हो गया। जैसे ही प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ, मैं अपने आप को हाथ छोड़ा और वहाँ जब गिरा तो एक पत्थर मेरे स्पाइनल में जाके घुस गई। मैं हड़बड़ाहट में उठा और उठ के जैसे ही खड़ा हुआ, तब मुझे एहसास नहीं था कि मेरे नीचे का पैर पूरी तरीके से टूट गया है और मैं फिर से गिरा। एक पत्थर मेरे सर के अंदर पीछे की तरफ घुस गया। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, दर्द से कड़ाहटा और मैं जब नीचे की तरफ देखा तो देख रहा हूँ कि मेरा पूरी तरीके से पैर टूट गया है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पैर ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे लगा कि टूट गया है। मैं जैसे तैसे चिल्लाया और अपने आप को, मतलब दूसरा पैर पटरी पे था, मैं अपने आप को घसीटते हुए हाथों के बल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा और जोर जोर से मतलब हाथ पैर मारने लगा और चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ और हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। तभी अचानक मैं देखा कि 3-4 बंदे मेरे तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये लोग मेरी हेल्प करेंगे और मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि लोग इस कंडीशन में भी लोग चाहते हैं कि कैसे इनके पर्स, पैसे और ये सब लेके भागा जा सकता है।
0: अच्छा,
1: उन्होंने मेरा पॉकेट सर्च किया, बैग सर्च किए, मेरे वॉलेट निकाले, मोबाइल निकाले और जो भी रुपया पैसा था लेके चले गए। मैं चिल्लाता रहा, जो लेना है ले लो, कम से कम हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दो मुझे कि मैं बच सकूं।
0: ये बात स्टेशन पर है, जब आप स्टेशन पर थे या?
1: जी जी जी। फिर जैसे ही बेहोश हुआ, वो हाथ छुड़ा के भाग चुके थे। बहुत देर बाद फिर से होश आया, तब देखा कि भीड़ इकट्ठा हो रखी है और उसी में से एक परिवार वहीं पे था, तो उनकी बेटी बोली कि पापा इसको बचाइए, ये बच सकता है। उन्होंने मेरी मदद की और मेरे घर का नंबर, मेरे ऑफिस का नंबर पता किए और मैं वो सारे नंबर मतलब याद था तो मैं बताया और ऑफिस के तरफ से, मतलब उस समय जिस कंपनी में मैं काम किया करता था वहाँ के तरफ से एम्बुलेंस और सिक्योरिटी गार्ड भेजवा के वहाँ से मेरे को रिकवरी करवाया गया और हॉस्पिटल ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। वहाँ से एक हॉस्पिटल, एक ही दिन में एक के बाद एक 3 हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के बाद मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब बचना मुश्किल था। फिर डॉक्टर की निगरानी में 2 दिन तक शायद बेहोश था। उसके बाद घर वाले, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ और बच्चे बिहार से कोलकाता आ चुके थे और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पैर को काट के अलग कर दिया गया है। और जैसे ही मैं होश में आया, अपनी पत्नी

0: को सामने देखा तो मुझे अजीब सा फीलिंग्स हुआ कि मैं अब दिव्यांग हो गया हूँ और तरह तरह की चीज़ें घूमने लगी। तभी एक अच्छा चीज़ भी मेरे दिमाग में आया, जो गीता की लाइन है कि आप जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा इससे भी अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अच्छा क्या होगा, सब तो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि क्या पता भगवान यहाँ से कुछ अच्छा लिखे होंगे। और उसी के भरोसे के दम पे आज मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, नॉर्मल लोगों के साथ 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ता हूँ। तो ये तो एक पार्ट था। और दूसरा पार्ट ये था कि जैसे जैसे हॉस्पिटल में समय बीतते गए, आसपास के लोग और दोस्त और बहुत सारे लोग जो मिलने आते थे, तरह तरह की बातें किया करते थे, ये दिव्यांग हो गया है, इसकी देखभाल कौन करेगा, ये मतलब इसको भरण पोषण कौन करेगा, इसकी बूढ़ी माँ है, कैसे ये चलेगा। हालांकि हमारे परिवार में ये सब कुछ चिंता है नहीं थी, लेकिन मतलब होते हैं ना कि लोग दूसरे
1: समाज
0: का,
1: तो तरह तरह
0: हाँ
1: से बातें सोचता
0: जी,
1: है। जी
0: इसके पास ट्रेन का टिकट नहीं था, टीटी को देख के जंप कर गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उठ के आई। फिर भी मैंने खुद को संभाले रखा। जैसे ही मैं सुना कि इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसका क्या होगा, तब मुझे थोड़ा सा डर तो लगा। और मैंने खुद से अपनी वाइफ को सामने से बोला कि एक काम करते हैं, मैं तो अब दिव्यांग हो चुका हूँ, आप मेरे साथ क्यों जिंदगी बिताना चाहोगे।
1: तो आपकी जीवन साथी ने क्या जवाब दिया?
0: मेरी जीवन साथी ने इतना रोई कि बोले कि मतलब हम लोगों ने 7 जन्मों के फेरे लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं, ये तो पहला जन्म है। और बहुत रोई, बहुत समझाई, और जिस तरीके से उसने आज साथ दिया है ना, तभी ये पॉसिबल है कि आज वो कलकत्ता में है और मैं यहाँ दिल्ली में बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को आज भी निभा रही हैं। और जिस भी पहाड़ पर जाता हूँ चढ़ने के लिए, तो वो DDLG का जो डायलॉग है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ऐसे ही कह के वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करती हैं।
1: उदय कुमार जी, जब आपने मैराथन चलना शुरू किया तो वो भी हमें बताइए कि कितनी मैराथन चली और उसमें जो अनुभव आपके रहे।
0: अभी तक तो 100+ इवेंट्स का मैं मैराथन रनिंग में भाग ले चुका हूँ। 2 हाफ मैराथन 21 किलोमीटर जिसको बोला जाता है वो कर
1: जी
0: चुका हूँ। कई सारे पहाड़ी इलाकों में जाके भाग चुका हूँ
1: अच्छा
0: और वहीं से एक प्रेरणा मिली। और हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग के तत्कालीन प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर से मैंने एक पोस्ट के दौरान उनसे वार्तालाप हुई और उन्होंने मेरी भरपूर मदद की। और पहाड़ पे चढ़ना ना मैम, 110% फिजिकल मेंटल गेम है।
1: उदय कुमार जी, पहली जो पर्वतारोहण यात्रा थी वो कब शुरू की और कैसे शुरू की?
0: वो 2022-23 में मैंने यात्रा आरंभ की और मैं पहली अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वेस्ट बंगाल की हाईएस्ट पीक संदकपुर है, जो
1: अच्छा
0: दार्जिलिंग से मैंने ट्रैकिंग करते हुए चलते हुए मैं गया हुआ था। और ये लगभग 12 दिनों की यात्रा थी, हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत मोटिवेशन मिला और जिंदगी जीने का मकसद वहाँ पे दिखाई दिया। पहाड़ों में कम संसाधनों में कैसे सर्वाइव किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और दूसरी यात्रा मेरी 2023-24 में हुई, जो हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट का बेस कैंप होता है कंचनजंगा रेनॉक, 16,500 फीट का यात्रा मैंने की। और ये HMI टीम और HMI इंस्ट्रक्टर के बदौलत, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत कुछ सिखाया। और वो ट्रैकिंग में वहां से बहुत मतलब उत्साहित हुआ कि अब मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ।
1: तो ये जो यात्रा थी उसके पहले की जो ट्रेनिंग थी, क्या कोई विशेष ट्रेनिंग थी?
0: मेरे लिए स्पेशल कोर्स ग्रुप कैप्टन जयकिशन सर ने ऑर्गेनाइज की थी और
1: जी
0: उसमें मेरे लिए बचने का तरीका, हर मतलब कैसे मैं कम संसाधनों में मतलब सर्वाइव करूंगा, ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई थी।
1: अच्छा, कितने दिन की ये ट्रेनिंग थी,
0: मेरी
1: विशेष
0: पहली
1: ट्रेनिंग?
0: ट्रेनिंग थी लगभग 10 दिनों की,
1: अच्छा
0: दूसरी ट्रेनिंग थी 18 दिनों की, और तीसरी ट्रेनिंग 28 दिनों में मैं रेनॉक सबमिट किया और वापस आया।
1: जब आप ये पर्वत चढ़ रहे थे तो क्या कोई ऐसा पल आया कि अब आगे चढ़ना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा?
0: जी, ये पल तब फीलिंग्स हुआ जब साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पे जब मैं चढ़ाई किया। रात को हम लोग 12 बजे चलना स्टार्ट किए थे और साथ में 7,800 स्क्वायर फीट का फ्लैग था, जो 80 किलो जिसका लगभग वजन था। वो टाइम ऐसा था कि जैसे जैसे दिन निकलते गया वैसे वैसे मैं अनकॉन्शियस होते गया
1: अच्छा
0: और ऊंचाई पे एक पॉइंट दिख रहा था, बस मेरे गुरु और मेरे को मेंटर मतलब बता रहे थे कि उदय वो पॉइंट है, वहीं पे चढ़ जाओगे तो पूरा मिशन सक्सेसफुल। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा मैं पहुंच गया, मैं फतेह कर दिया। लेकिन जाना और आगे था।

0: वहाँ से लगभग 500 मीटर और आगे जाना था, और थोड़ी सी चढ़ाई बाकी थी। मैं वहाँ पे जाके, मतलब होता है ना कि मैं पॉइंट पे पहुँच गया, सारी
1: जी
0: एनर्जी वहीं पे मतलब छोड़ दिया मैं,
1: जी
0: लेकिन वहाँ पे बताया गया कि पॉइंट ये नहीं है, वो है। और वो 500 मीटर मतलब सब कुछ मुझे याद दिला दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही 50 मीटर बाकी था, तब पैर कदम उठ नहीं रहे थे। महेंद्र साहब बोले, उदय बैसाखी दे मुझे पीठ पे, आ मैं तेरे को ले चलता हूँ। तब
1: तो
0: मैंने
1: आपने
0: सर,
1: उनका प्रस्ताव स्वीकारा,
0: नहीं,
1: बहुत
0: मैं
1: अच्छा
0: बोला
1: किया।
0: कि सर, जब इतिहास में लिखा जाएगा मेरा नाम, तो क्या लिखा जाएगा कि फिनिशिंग पॉइंट पे मैं किसी के कंधे के सहारे गया? और क्या मैं अपने बच्चों को जवाब दूंगा? क्या मैं अपनी प्रॉमिस किया हुआ जो अपने आप से वो कहूंगा? सर बोले कि तू जैसे आना है, या 2 घंटे में आना है, 2 दिन में आना है, आ हम लोग इंतजार करेंगे वहां पे। और फिर जैसे ही मतलब सर को लगा कि अब गिव अप कर रहा है, एकदम इसके हालात खराब हो रहे हैं, तब सर नेशनल फ्लैग के आगे खड़ा होके चिल्ला रहे हैं, बेटा आ जा, बेटा आ जा, देख तेरे लिए 7,800 स्क्वायर फीट का विशाल तिरंगा इंतजार कर रहा है। और वो चीज मुझे अंदर से इतना ताकत दिया जब तिरंगे को मैंने देखा, वो 50 मीटर सच में मुझे चलने की हिम्मत नहीं थी। अगर वीडियोस देखेंगे तो मतलब बोलेंगे कि हाँ, मैं सच में टूट गया था। और जैसे तैसे मैं पहुंचा, मैंने अचीवमेंट कर लिया और मैं तिरंगा फहरा दिया और भारत का पहला दिव्यांग लड़का बन गया कि जिसने इतना बड़ा कारनामा
1: माउंट
0: किया है।
1: किलिमंजारो पर
0: जी
1: आपने पर्वतारोहण किया, बहुत खूबसूरत। क्योंकि राह कठिन हो, पर्वत ऊंचे, लेकिन मन में हो विश्वास और दृढ़ संकल्प, अगर साथ चले तो मिल जाती हर आस। ये शब्द आपने बिल्कुल सार्थक कर दिए। और इस मौके पर हम सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: हुआ। और बहुत सारे दिव्यांग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो अवश्य इससे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आपने जो साहस का काम किया है वो वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मंजिल लेकिन उसी को मिलती है जो हार से कभी नहीं डरता, और इतिहास वही रचता है जो हर मुश्किल से लड़ता है। तो हमारे साथ उदय कुमार जी जो पैरा माउंटेनियर हैं वो इस समय मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जो ये जर्नी है, पूरी यात्रा हम सबसे बांटी, और हम अपनी तरफ से, FM गोल्ड की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं उदय जी, आपके आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए, और बहुत सारे किले फतेह करें, बहुत सारे पर्वत फतेह करें, बड़ी बड़ी चोटियों पर चढ़ें, और आपका साहस और भी बढ़ता जाए, आपकी जो क्षमता है प्रभु उसमें और भी सहायक हमेशा सिद्ध हो।
1: जी मैम, बहुत बहुत आभार मैम।
0: आप FM गोल्ड के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: और समेटते हैं अपना कार्यक्रम जिसका नाम है हौसले। इसी के साथ रश्मि कुकरेती को इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 5:30 से आप सुनेंगे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं इस चैनल पर कुछ और अन्य प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में, ताकि आपसे कोई भी प्रोग्राम मिस ना हो जाए। विश्लेषण सुनिएगा 6:10 से। मार्केट मंत्रा का समय है 6:30 का। और जन सेवा से देश सेवा, ये स्पेशल सीरीज आप तक पहुंच रहे हैं इन दिनों। इसका एपिसोड 11 हम आप तक पहुंचाएंगे 7:10 से। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे 7:45 से। और स्वर धरोहर प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा 8:15 पर। इसके बाद स्पोर्ट्स स्कैन होता है, समाचार संध्या तो रहेगा ही, न्यूज एट 9 भी आप तक पहुंचेगा और स्पॉटलाइट भी आप सुनेंगे। रेडियो स्कोप 9:30 पर। और उसके बाद जो एक प्रोग्राम है हर सिंगार, वो आप रात को 10:30 पर सुन पाएंगे। फिर मार्केट मंत्रा का जो रिपीट एक हम ब्रॉडकास्ट करते हैं रात को 11:10 से, वो आप तक पहुंचेगा। गीत मेरे मन मीत, इस प्रोग्राम का समय है 11:40 का। तो बस करना क्या है, करना ये है कि आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों की दूरी और फिर आप तक पहुंचेगा पूर्वोत्तर डायरी। प्रोग्राम सुनते रहिए एफएम गोल्ड।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर

0: राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं कार्यक्रम में सिक्किम के एक युवा साइबर शोधकर्ता और एक बहुत बड़े तकनीकी विशेषज्ञ से, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी नामित किया है और विभिन्न बड़ी संस्थाओं जैसे माइक्रोसॉफ्ट और तमाम ऐसी तकनीकी दुनिया की संस्थाओं ने उन्हें उनके काम को उन्होंने पहचान दी है। करीब दुनिया की 328 संस्थाओं ने उनकी उपलब्धि को पहचाना है। विवेक राज तमांग का काम साइबर सुरक्षा को लेकर है। साइबर सुरक्षा की खामियों को लेकर उन्होंने कई शोध किए हैं। आइए सुनते हैं उनकी उपलब्धि और सफलता की कहानी।
1: पश्चिम सिक्किम के रहने वाले विवेक राज तमांग को दुनिया भर की 328 संस्था से मान्यता और सराहना मिली है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार इस उपलब्धि की पुष्टि 25 जुलाई 2026 को हुई। विवेक ने अलग अलग संस्थाओं की वेबसाइट और डिजिटल सिस्टम में मौजूद सुरक्षा खामियों की पहचान की और उनकी जानकारी संबंधित संस्थाओं को दी, ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में इसे सुरक्षा खामियों की जिम्मेदारी से जानकारी देना कहा जाता है। विवेक को उनके काम के लिए बग बाउंटी प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र और सम्मान सूची में जगह सहित कई तरह की मान्यताएं मिली हैं। उनकी 328 मान्यताओं में नासा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पांस सेंटर और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी CERT इन जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।
2: My inspiration to pursue cybersecurity and ethical hacking came from a very curious mind. I've always enjoyed challenges, the thrill of solving a difficult puzzle or completing a challenging level in a video game to finding Easter eggs. Since childhood, I have been fascinated by computers and electronic devices. I would often try to understand how things worked, sometimes even taking things apart just to see the mechanism behind them. Eventually, I realized that I had developed a genuine love for computer science and technology. Over the years, I explored and learned about different areas of computer science, but when I discovered cybersecurity and ethical hacking, I finally found something that I could truly see myself enjoying every single day. My journey was also not entirely traditional. Of course, I have my degree, certification and courses. But courses can give you a strong foundation. But I believe ethical hacking is something you really learn by constantly exploring, practicing and challenging yourself. Cybersecurity is an enormous field and the learning never really stops. So for me, the answer was never just one degree or another course or another certification. It was about learning from anywhere and everywhere possible, practicing responsible disclosures and ethical hacking, and being adamant about improving myself every single day.
1: साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विवेक की रुचि ने उन्हें लगातार सीखने और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी नई तकनीकों को समझने के लिए प्रेरित किया। उनका काम यह दिखाता है कि सिक्किम जैसे छोटे राज्य से आने वाले युवा भी तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर योगदान दे सकते हैं। विवेक का मानना है कि सिक्किम के युवाओं के लिए साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सॉफ्टवेयर विकास जैसे उभरते क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कई अवसर हैं। उनका सफर युवाओं को लगातार सीखने, शोध करने और अपने तकनीकी कौशल को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। विवेक को मिली यह पहचान उनके व्यक्तिगत सफर की उपलब्धि के साथ साथ सिक्किम के युवाओं के लिए उभरती तकनीकों में आगे बढ़ने की संभावनाओं को भी सामने लाती है। साइबर सुरक्षा जैसे तेजी से बदल रहे क्षेत्र में विवेक का सफर दिखाता है कि सही तकनीकी ज्ञान, लगातार सीखने की इच्छा और जिम्मेदारी के साथ काम करके युवा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। मायनाक चैटर्जी, दिल्ली राम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: श्रोताओं, त्रिपुरा की 5 दशक पुरानी गोमती जल विद्युत परियोजना त्रिपुरा की एक बड़ी आधारशिला रही है और इसे दोबारा से पुनर्जीवित करने को लेकर अब विचार किया जा रहा है। 1970 में शुरू हुई इस परियोजना से त्रिपुरा के लिए स्वच्छ बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाता रहा है और दोबारा से अब उम्मीद है कि नए सिरे से जब गोमती जल विद्युत परियोजना शुरू होगी तो त्रिपुरा में स्वच्छ बिजली की मांग को पूरा किया जा सकेगा। तो आइए हमारे संवाददाता की इस

0: इस परियोजना की कहानी 1965 में शुरू हुई थी। उस समय त्रिपुरा में बिजली से जुड़ी सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही थी। राज्य के जल संसाधनों का इस्तेमाल कर बिजली पैदा करने के उद्देश्य से गोमती जल विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया गया। 5 साल बाद 1970 में यह परियोजना शुरू हुई। इसमें बिजली बनाने वाली 3 इकाइयां थी। हर इकाई की क्षमता 5 मेगावाट थी और परियोजना की कुल क्षमता 15 मेगावाट थी। कई वर्षों तक इन इकाइयों के जरिए बिजली का उत्पादन होता रहा, लेकिन समय के साथ परियोजना की मशीनें पुरानी होती गई। साल 2010 में पहली इकाई ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद 2021 में दूसरी इकाई भी बंद हो गई। तीसरी और आखिरी इकाई भी अपनी पूरी 5 मेगावाट क्षमता से बिजली पैदा नहीं कर पा रही थी। इसकी क्षमता घटकर करीब 3 मेगावाट रह गई थी। इसके बाद अगस्त 2024 में आई भीषण बाढ़ ने परियोजना को और बड़ा नुकसान पहुँचाया। तीसरी इकाई भी बंद हो गई और 5 दशक से ज्यादा समय से बिजली पैदा कर रही यह परियोजना पूरी तरह ठप हो गई। लेकिन अब इस पुरानी परियोजना को फिर से शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पावर जनरेशन लिमिटेड यानी TPGL परियोजना के पुनरुद्धार पर काम कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार परियोजना को फिर से चालू कर करीब 10 मेगावाट स्वच्छ बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पानी के नीचे परियोजना की संरचना की स्थिति कैसी है। इसी उद्देश्य से पानी के अंदर रोबोट की मदद से जांच की गई। इसके लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV का इस्तेमाल किया गया। यह मशीन उन हिस्सों की जांच कर सकती है जहां इंसानों के लिए सीधे जाकर निरीक्षण करना मुश्किल या जोखिम भरा हो सकता है। जांच में बांध के गेट, पानी के नीचे मौजूद संरचनाओं और संभावित रिसाव जैसी चीजों की स्थिति को देखा गया।
1: Recently we conducted inspection in Gumti HCV project as a requirement by the TPGL. During the inspection, we covered orbe gate area, intake gate area and trap tube gate area. In the inspection, we captured detailed videos of these critical submerged structures using our ROVs. These data will definitely help them to understand the current conditions of the submerged structures. Our draft report has been already submitted.
0: इस जांच से मिलने वाली जानकारी परियोजना के पुनरुद्धार की आगे की योजना तैयार करने में मदद करेगी। अगर पानी के नीचे मौजूद संरचनाएं मरम्मत के बाद इस्तेमाल करने लायक पाई जाती हैं, तो आगे तकनीकी जांच, मरम्मत और मशीनों को दोबारा लगाने का काम किया जा सकता है। वहीं अगर संरचनाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो अधिकारियों को यह तय करना होगा कि परियोजना को दोबारा शुरू करना तकनीकी और आर्थिक रूप से कितना संभव है। फिलहाल अंतिम फैसला जांच और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर लिया जाना है, लेकिन यह निरीक्षण त्रिपुरा की इस पुरानी जल विद्युत परियोजना को फिर से शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोमती परियोजना ने दशकों तक त्रिपुरा को जल संसाधनों से बिजली उपलब्ध कराई है। अगर इसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से दोबारा शुरू किया जा सका तो यह राज्य के बिजली नेटवर्क में फिर से योगदान दे सकती है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
2: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
3: वर्ष 2012 में शुरू हुआ जीरो म्यूजिक फेस्टिवल संगीत के प्रति जुनून, स्थिरता, सामुदायिक भावना और सांस्कृतिक गतिविधि का उत्सव है। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदाय और कलाकारों को बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय तथा वैश्विक स्वतंत्र संगीत जगत को भी मंच प्रदान करता है। पिछले वर्षों में हनुमान काइंड, कैलाश खेर, शिल्पा राव और फरहान अख्तर जैसे कलाकार जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक में प्रस्तुति दे चुके हैं। इस वर्ष स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की सूची में सुकेश शुक्लबाद्य भी शामिल है। संगीत प्रस्तुतियों के अलावा महोत्सव के दौरान लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन, कहानी कथन, आपातानी मिट्टी के बर्तन निर्माण, संगीत एवं लय, इम्प्रोव थिएटर, ओरिगामी और लेजू कोरिया के पारंपरिक वाद्य संगीत विषयों पर कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। 26 सितंबर को जीरो फेस्टिवल में दामिंदा की प्रस्तुति होगी, जिसमें 800 से अधिक स्थानीय आपातानी महिलाएं हिस्सा लेंगी। दामिंदा मेजबान आपातानी जनजाति का पारंपरिक सामुदायिक फसल कटाई और स्वागत नृत्य है। ये कृतज्ञता कृषि विरासत और सामुदायिक एकजुटता को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश की सुरमई वैली की पृष्ठभूमि में आयोजित ये महोत्सव बांस जैसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध

0: सामग्रियों का उपयोग करता है और आगंतुकों की मेजबानी के लिए स्थानीय समुदाय के सदस्यों को शामिल करता है, जिससे स्थिरता से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से महोत्सव कलाकारों, कारीगरों और स्थानीय युवा समूहों को भी जोड़ता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: श्रोताओं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ की जनजातियाँ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। न सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र का बल्कि पूरे भारत का, दुनिया भर में ये विरासत और संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसने वाली इन जनजातियों की अपनी खासियत है, अपना खान पान है, पहनावा है और संस्कृति में भी बहुत विविधता है। लेकिन जो विशेष बात इस क्षेत्र को बनाती है कि इन विविध जनजातियों में एक सामंजस्य है और यही सामंजस्य जो भारत में विविधता में एकता का एक खूबसूरत मंत्र है, उस मंत्र को ये पूर्वोत्तर क्षेत्र परिभाषित करता है। और 8 राज्यों में बसने वाली इन विभिन्न जनजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जनजातियां क्या परंपराएं लेकर आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से खुद में इन परंपराओं को जीवित किए हुए हैं, इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से सुनते हैं।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातीय विविधता पूरे देश में अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के कारण विशेष स्थान रखती है। ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों से मिलकर बना है। यहाँ 200 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान, रीति रिवाज और लोक कथाएं हैं। ये क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, जीवंत उत्सवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक संरचना इसे और भी विशेष बनाती है। यहाँ घने जंगल, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ और नदियाँ हैं, जो इन जनजातियों की जीवन शैली को प्रभावित करती हैं। अधिकतर जनजातियाँ पहाड़ी और जंगलों से जुड़े इलाकों में रहती हैं, जहाँ उनकी परंपरागत जीवन शैली कृषि, बागवानी, पशुपालन और शिकार पर निर्भर करती है। इन जनजातियों का इतिहास सदियों पुराना है और उनके सामाजिक ताने बाने में प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां रहती हैं, जिनमें आदि, नीशी, अपतानी, टैगिन, मोनपा, वांचो और मिसमी प्रमुख हैं। अपतानी समुदाय अपनी अनूठी कृषि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बिना बैलों के खेतों में धान की खेती की जाती है। मोनपा समुदाय का संबंध तिब्बती संस्कृति से है और इनका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसी तरह वांचो और टैगिन जनजातियां अपने पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और लोक कथाओं के लिए जानी जाती हैं।

असम की जनजातीय संरचना भी अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ बोडो, मिसिंग, देवरी, कार्बी, तिवा और सोनवाल कछारी जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। बोडो समुदाय असम के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है और इनकी भाषा, नृत्य और संगीत इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। मिसिंग जनजाति ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपनी विशिष्ट संस्कृति के साथ बसती है, जहां उनके बांस के बने मकान और परंपरागत हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध हैं। मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया समुदायों की परंपराएं विशेष रूप से ध्यान खींचती हैं। खासी जनजाति मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन करती है, जहां संपत्ति और वंश परंपरा मातृपक्ष से चलती है। खासी समाज में महिलाएं पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गारो जनजाति अपने अनूठे पारंपरिक पहनावे, संगीत और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जयंतिया समुदाय खनन और कृषि से जुड़े हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं भी मात्र सत्तात्मक स्वरूप की हैं।

और पारंपरिक नृत्य रासलीला के लिए प्रसिद्ध है। नागा और कुकी जनजातियाँ पहाड़ी इलाकों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और हथकरघा उद्योग है।

मिजोरम की जनजातीय संरचना भी अद्वितीय है। यहाँ लुशी, रालते, हमार, पाइते और पाविस जैसे समुदाय निवास करते हैं। लुशी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जो यहाँ की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन जनजातियों की पारंपरिक पोशाकें, संगीत और नृत्य बेहद प्रसिद्ध हैं।

नागालैंड में नागा समुदाय की कई उपजातियां हैं, जिनमें अंगामी, एओ, सेमा, चांग, फोम और जेलियांग प्रमुख हैं। नागा जनजातियां अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जानी जाती हैं। इनका पारंपरिक आभूषण और पोशाक इन्हें अलग पहचान दिलाते हैं। यहाँ के हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजातियों की रंग बिरंगी परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुँचते हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, चकमा और हलम समुदाय रहते हैं। त्रिपुरी समुदाय इस राज्य की प्रमुख जनजाति है, जिनकी सांस्कृतिक पहचान उनके पारंपरिक नृत्य और संगीत से होती है। चकमा जनजाति बौद्ध धर्म को मानने वाली प्रमुख जनजाति है, जो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में निवास करती है। रियांग समुदाय की जीवन शैली जंगलों और पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी हुई है।

सिक्किम में नेपाली, भूटिया और लेप्चा समुदाय प्रमुख हैं। लेप्चा जनजाति को सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, जो प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। भूटिया समुदाय तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है और इनका पारंपरिक पहनावा और भोजन तिब्बती शैली का होता है।

0: पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ अपनी भाषाई विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। यहाँ की अनेक जनजातियाँ अपनी विशिष्ट भाषाएं और बोलियाँ बोलती हैं, जिनमें से कुछ लिखित रूप में संरक्षित हैं, जबकि कई बोलियाँ विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रख सकें। इन जनजातियों की पारंपरिक आजीविका कृषि, बांस कला, हथकरघा, उद्योग और वन संसाधनों पर निर्भर करती है। कई समुदाय झूम कृषि प्रणाली अपनाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। हालांकि आधुनिक समय में जनजातीय समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहा है। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने के कारण कई युवा अब शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन जैसी योजनाएं विशेष रूप से जनजातीय समुदायों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। साथ ही आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशाल शर्मा।
1: श्रोताओं, 2026 के एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर भारत की प्रतिभाओं ने फिर अपना परचम लहराया है। मणिपुर की रोशोविना देवी ने इस बार फिर से तीसरा अपना पदक एशियाई खेलों में जीता। वुशु खिलाड़ी रोशोविना देवी ने इस बार पदक जीतकर फिर से नया इतिहास लिखा है। तो आइए रोशोविना देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं, कैसे उन्होंने अपने खेल का सफर शुरू किया और कैसे वो एशियाई खेलों तक अपनी प्रतिभा को ले गई और भारत का नाम रोशन किया।

0: रोशिबीना देवी का जन्म 30 दिसंबर 2000 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कौसिफाई मायाई लिकाई में हुआ। इनके माता पिता छोटे किसान हैं। बचपन में गांव में एक वुशु प्रतियोगिता देखने के बाद रोशिबीना की इस खेल में रुचि पैदा हुई। पांचवी कक्षा में रहते हुए उन्होंने वुशु सीखने का फैसला किया। शुरुआत आसान नहीं थी। माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन रोशिबीना ने खुद अभ्यास जारी रखा। उनके पिता के अनुसार वो गांव के बच्चों के साथ चावल की भूसी से भरी बनियान को पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करके अभ्यास करती रहीं। बाद में उन्हें इम्फाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI सेंटर में प्रशिक्षण का मौका मिला। वहां उनके खाने और ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई और उन्होंने कोच मैबाम प्रेम कुमार सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू किया। 2016 में बुल्गारिया में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में रोशिबीना ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। 2017 में उन्होंने एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया और आगे चलकर 60 किलोग्राम वर्ग में अपनी पहचान बनाई। 2018 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने जकार्ता एशियाई खेलों में पदार्पण किया और कांस्य पदक जीता। इसके बाद 2019 में उन्होंने दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2023 में हांगझोऊ एशियाई खेलों में रोशिबीना ने 60 किलोग्राम सांडा वर्ग के फाइनल में जगह बनाई और रजत पदक जीता। उसी साल उन्होंने विश्व वुशु चैंपियनशिप में भी रजत और मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके सफर में चोट ने भी चुनौती पेश की। 2024 में घुटने की चोट के कारण उन्हें लंबे समय तक खेल से दूर रहना पड़ा। वापसी के बाद 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और शुरुआत में टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन बाद में चोट के कारण खाली हुई जगह पर रोशिबीना को भारतीय टीम में शामिल किया गया। जापान जाने का ये मौका उन्हें एशियाई खेलों से कुछ ही दिन पहले मिला। इसके बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल तक पहुंची। फाइनल में उनका सामना चीन की झांग शियोओ से हुआ, जहां रोशिबीना को 0-2 से हार मिली और उन्होंने रजत पदक जीता। इस रजत के साथ रोशिबीना ने 2018 का कांस्य, 2023 का रजत और 2026 का रजत एशियाई खेलों में लगातार 3 पदक अपने नाम किए। वो एशियाई खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुशु खिलाड़ी बनी।
1: अच्छा लगा, ये मेरा 3rd एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
0: पदक जीतने के बाद रोशिबीना ने अपने परिवार के त्याग को याद किया और कहा कि उनके माता पिता ने उनकी खेल यात्रा में बहुत सहयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में अशांति के बीच तैयारी करना उनके लिए मुश्किल रहा और अगर उन्हें ज्यादा समय मिलता तो वो बेहतर तैयारी कर सकती थी। मणिपुर के एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ रोशिबीना का सफर अब भारतीय वुशु के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। उनका ये सफर मेहनत, संघर्ष, चोट से वापसी और मिले मौके को सफलता में बदलने की कहानी है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी, आकाशवाणी समाचार।
2: अब खेल की ही बात हो रही है तो अपनी सहयोगी निशा की अगली रिपोर्ट में हम इस बार एशियाई खेलों में पूर्वोत्तर की एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मीराबाई चानू की भी उपलब्धि को सुन लेते हैं। उन्होंने जहां एक तरफ कॉमनवेल्थ खेलों और ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया तो इस बार एशियाई खेलों में भी अपना पहला पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने किस तरह से इस बार फिर से भारोत्तोलन में एक नया कीर्तिमान रचा है और एशियाई खेलों के पदक की कमी को भी पूरा किया है, आइए हम इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
3: मणिपुर की नोंगपोक कांगचिंग से शुरू हुआ मीराबाई चानू का सफर एशियाई खेलों के इतिहास का हिस्सा बन चुका है। लगातार मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारतीय भारोत्तोलन में अपनी अलग पहचान बनाई। मीराबाई ने 2014 के एशियाई खेलों से अपने एशियन गेम सफर की शुरुआत की थी, जहां वह 9वें स्थान पर रही थी। 2016 के रियो ओलंपिक में वह कोई वैध लिफ्ट दर्ज नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम

0: समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बावजूद एशियाई खेलों का पदक उनकी उपलब्धि की सूची से दूर था। 2018 के एशियाई खेलों में वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले सकी, जबकि 2023 के हांगशो एशियाई खेलों में क्लर्क एंड जर्ब के दौरान लगी चोट के बाद वह चौथे स्थान पर रही थी। 2026 में मीराबाई ने इस इंतजार को खत्म किया। 23 सितंबर को महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्ब में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 198 किलोग्राम रहा। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की री सॉन्ग गम ने 2015 किलोग्राम वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता था और मीराबाई ने रजत पदक हासिल किया।
1: That smile on her face knows that the trophy cabinet is complete for Mirabai Chanu. The one medal that was missing in her trophy cabinet was that medal at the Asian Games. She clinches that now, a silver medal.
0: मीराबाई का यह पदक इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत ने एशियाई खेलों में भारोत्तोलन का पिछला पदक 1988 में जीता था। 28 साल बाद मीराबाई ने भारत को इस स्पर्धा में फिर पदक दिलाया। मीराबाई पहले ही ओलंपिक, विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुकी थी। अब एशियाई खेलों का पदक भी उनकी उपलब्धियों से जुड़ गया है। पदक जीतने के बाद मीराबाई ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना उनका सपना था और इस उपलब्धि से उनका सपना पूरा हुआ। मीराबाई चानू की यह उपलब्धि उनके लंबे संघर्ष, चोटों से वापसी और लगातार मेहनत की कहानी भी है।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद काफी इससे पहले भी मैं काफी इंजरी हुई थी तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के बाद। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
0: मणिपुर से निकलकर उन्होंने विश्व के बड़े खेल मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब एशियाई खेलों में पहला पदक जीतकर अपने करियर की एक महत्वपूर्ण कमी भी पूरी कर ली है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।
3: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों

0: मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमों को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said, India will mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. The Prime Minister said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories. The Prime Minister stressed that the census is a national responsibility and said the facility for self-enumeration makes the process easier. Ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on 2nd of October, Mr. Modi spoke about cleanliness and public participation. He also highlighted the protecting of the environment to strengthen the entire ecosystem. The Prime Minister said millions of young people have recently taken a pledge to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He urged people to support those trying to overcome addiction and work towards a drug-free youth. Mr. Modi said the nation celebrated Ganeshotsav with great devotion and enthusiasm recently while highlighting the festival's growing popularity beyond India. Concluding his address, Prime Minister Modi urged listeners to continue sharing inspiring stories from across the country. Raksha Mantri Rajnath Singh today said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi. He said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister said as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees in Sabarmati in Gujarat today. Mr. Shah, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati station. Addressing a public gathering, Mr. Shah said, the annual diesel consumption by the railways has declined from 293 crore litres to 108 crore litres, while efforts are continuing to eliminate diesel use completely. Science and Technology Minister Jitendra Singh has said nanomedicine will drive the next generation of precision medicine and personalized healthcare. The minister was speaking at the inaugural function of the World Congress of Nanomedicine 2026 in New Delhi today. Dr. Singh said Department of Biotechnology is supporting 210 research and development projects in nanomedicine with financial support of 174 crore rupees. The Enforcement Directorate, ED, has provisionally attached movable and immovable properties worth around 442 crore rupees in connection with the case related to Rummy, Culture App and others. The ED informed that the action was taken under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA. At the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojan Edapili has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. In squash, the country clinched two silver medals with Abhay Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh also bagging a silver medal in the women's singles. India's Harita Bhadra has won the bronze medal in the women's 200 meters event. Tejaswin Shankar also bagged a bronze medal in the decathlon. Currently, India is at the 12th position in the medals tally with a total of 35 medals including 4 gold, 15 silver and 16 bronze medals. And in men's cricket, West Indies have set a target of 296 for hosts India in the first one-day international of three-match series in Thiruvananthapuram this evening. Earlier, put into bat, West Indies posted 295 for the loss of 7 wickets in the stipulated 50 overs. India had opted to field after winning the toss. Both Rohit Sharma and Virat Kohli returned to India's ODI lineup after a two-month break from this format. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. And with that, we end this news bulletin.
3: Akashwani Samachar Seva Prabhag ki prastuti Vishleshan.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी। श्रोताओं, पर्यटन केवल एक जगह से दूसरी जगह घूमने का माध्यम नहीं है, ये लोगों को अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं से जोड़ता है। साथ ही पर्यटन रोजगार, स्थानीय कारोबार और आजीविका के अवसर भी पैदा करता है। इसी महत्व को देखते हुए हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की वर्ष 1979 में स्पेन के तोरिमोलिनोस में हुई बैठक में इसे शुरू करने का फैसला लिया गया था। 27 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन वर्ष 1970 में संगठन के मूल नियमों को अपनाया गया था। इस वर्ष इसकी थीम

0: डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन को नया रूप देना। ये थीम पर्यटन के बदलते स्वरूप और उसमें तकनीक की बढ़ती भूमिका को सामने रखती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है। वर्ष 2025 में देश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की कुल यात्राएं 431 करोड़ से अधिक रही। लेकिन भारत में पर्यटन का महत्व केवल पर्यटकों की संख्या से नहीं समझा जा सकता। किसी पर्यटन स्थल पर आने वाला हर यात्री अपने साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कई अवसर भी लेकर आता है। यही वजह है कि पर्यटन को रोजगार और आजीविका से भी जोड़कर देखा जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस बढ़ती यात्रा का देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है।
1: पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक योगदान को मापने के लिए टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट यानी TSA का इस्तेमाल किया जाता है। ये पर्यटन से होने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधियों को मापने की आधिकारिक व्यवस्था है। इसके अनुसार वर्ष 2023-24 में पर्यटन क्षेत्र का भारत की GDP में योगदान 5.22% रहा। रोजगार की बात करें तो वर्ष 2019-20 में पर्यटन क्षेत्र से 6,94,00,000 लोग जुड़े थे। वर्ष 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 8,46,00,000 हो गई। पर्यटन के बढ़ते दायरे को देश में होने वाली यात्राओं के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। वर्ष 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 67,70,00,000 थी। वर्ष 2025 में ये बढ़कर 428,55,00,000 हो गई। यानी देश के भीतर यात्रा करने वालों की संख्या में इन वर्षों में बड़ी वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में भी बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या करीब 10,00,000 थी। वर्ष 2025 में यह बढ़कर 2,53,00,000 हो गई। पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 63,978 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2025 में यह बढ़कर 2,76,831 करोड़ रुपए हो गई। इन आंकड़ों से पर्यटन की बढ़ती आर्थिक भूमिका का पता चलता है। लेकिन पर्यटन का विस्तार केवल बड़े शहरों या प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक सीमित नहीं है। भारत की विविधता इसके पर्यटन क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है। आध्यात्मिक और तीर्थ पर्यटन से लेकर विरासत, वन्य जीव, ग्रामीण पर्यटन और समुद्री पर्यटन तक कई तरह के अनुभव देश में उपलब्ध हैं। काशी, अयोध्या, बोधगया, अमृतसर, तिरुपति और पुरी जैसे धार्मिक स्थल बड़ी संख्या में यात्रियों को आकर्षित करते हैं। वहीं भारत के किले, महल, मंदिर, संग्रहालय, ऐतिहासिक शहर, हस्तशिल्प और खान पान भी देश की सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन से जोड़ते हैं। इसी तरह ग्रामीण और होमस्टे पर्यटन लोगों को गांव, स्थानीय खान पान, हस्तशिल्प और स्थानीय जीवन से जुड़ने का अवसर देता है। इससे ग्रामीण परिवारों, कारीगरों और छोटे कारोबारों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर बन सकते हैं। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्रोता, पर्यटन की बदलती जरूरतों को केवल नए पर्यटन स्थल विकसित करके पूरा नहीं किया जा सकता। यात्री को किसी जगह के बारे में सही जानकारी मिले, वहां पहुंचना आसान हो, रहने और घूमने की सुविधाएं उपलब्ध हो और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिले, इन सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना जरूरी है। इसी सोच के साथ भारत में पर्यटन के डिजिटल और भौतिक दोनों तरह के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम से यात्रा की जानकारी और सेवाएं आसान बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थलों, कनेक्टिविटी और लोगों के कौशल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि पर्यटन के इस बदलते अनुभव को जमीन पर उतारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं।
2: भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने की दिशा में ई वीजा एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2014 में 43 देशों के नागरिकों के लिए शुरू की गई ये सुविधा अब 172 देशों तक पहुंच चुकी है। इसके तहत 37 हवाई अड्डों, 38 समुद्री बंदरगाहों सहित 88 अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं से भारत में प्रवेश की सुविधा है। अब करीब 78% वीजा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जा रहे हैं और लगभग 95% ई वीजा आवेदनों की प्रक्रिया 72 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। देश के पर्यटन स्थलों और सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी नया रूप दिया गया है। इस पर संस्कृति, विरासत, रोमांच, खानपान, स्वास्थ्य, कला और हस्तशिल्प तथा ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म पर AI आधारित सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। मौसम

0: जानकारी, शहरों की खोज और यात्रा से जुड़ी जरूरी सेवाएं यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में मदद करती हैं। इसके साथ ही उड़ान, होटल, कैब, बस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों के टिकट जैसी सेवाओं को भी इससे जोड़ा गया है। पर्यटन से जुड़े कारोबार और सेवा प्रदाताओं के लिए निधि प्लस भी एक महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था है। नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी निधि प्लस पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण, मान्यता और वर्गीकरण किया जाता है। आवेदन, भुगतान और मंजूरी की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। 23 सितंबर 2026 तक निधि प्लस पर 63,740 आवास इकाइयां और 15,531 पर्यटन सेवा प्रदाता दर्ज हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, कन्वेंशन सेंटर और खाद्य व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठान भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन पर्यटन का विकास केवल डिजिटल सुविधा से नहीं होता। किसी पर्यटन स्थल तक पहुंचना आसान हो, वहां जरूरी सुविधाएं हो और उस जगह का विकास लंबे समय तक टिकाऊ तरीके से हो, ये भी जरूरी है। इसी दिशा में स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश के अलग अलग पर्यटन सर्किट में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं। वर्ष 2014-15 में शुरू हुई इस योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 75 पूरी हो चुकी है। अब स्वदेश दर्शन 2.0 में किसी एक सर्किट के बजाय पूरे पर्यटन स्थल के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बेहतर सुविधाओं के साथ टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन पर ध्यान दिया गया है। इसके तहत 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए प्रसाद योजना के जरिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत अब तक 54 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें पर्यटक सुविधा केंद्र, पार्किंग, घाट, ठोस कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा और CCTV जैसी सुविधाएं शामिल है। पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है पर्यटकों से सीधे जुड़े लोगों का कौशल। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स के तहत स्थानीय समुदाय, युवाओं और दूसरे सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्ष 2025 के मूल्यांकन के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच इस व्यवस्था के तहत 1,68,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण मिला और 36,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल के जरिए भी कैब और ऑटो चालक, होटल और रेस्तरां कर्मचारी, होम स्टे संचालक, गाइड, दुकानदार और दूसरे स्थानीय सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक करीब 4,382 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: श्रोताओं, पर्यटन का भविष्य केवल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से नहीं होगा। असली बदलाव इस बात से आएगा कि तकनीक, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने, पर्यटन स्थलों को अधिक टिकाऊ बनाने और पर्यटन से जुड़े कारोबार के लिए नए अवसर तैयार करने में कितना प्रभावी ढंग से किया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2026 की थीम इसी बदलते पर्यटन परिदृश्य को सामने रखती है। भारत में विभिन्न प्रयासों के जरिए पर्यटन के लिए एक अधिक सुविधाजनक तंत्र तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य ऐसा पर्यटन तंत्र विकसित करना है जो यात्रियों को बेहतर अनुभव दे, स्थानीय समुदायों के लिए अवसर बढ़ाए और पर्यटन को अधिक समावेशी, टिकाऊ और लोगों पर केंद्रित बनाए। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अक्षत ममगाई।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। शल्यप्रहारः, सिन्दूराभियानं च भारतस्य नूतनायाः उग्रवादविरोधीनीतेः अमोघम् उदाहरणमिति मनोगतकार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा सप्रश्रयं प्रोदीरितम्। सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च जनगणनाभियानस्य प्रथमचरणं पूर्णताम् अगात् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। सामरिकस्वायत्ततायाः, सुरक्षायाः च उपरि आघाते सति भारतं स्वात्मरक्षां विधास्यति एवेति रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सबलं प्रख्यापितम्। गुजरातस्य साबरमती क्षेत्रे पञ्चदश

0: पञ्चाशत्कोटिरूप्यकाणां रेलविकासपरियोजनाः गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन समुद्घाटिताः। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु स्क्वैश स्पर्धायां अभयसिंहेन अनाहतसिंहेन च रजतपदके विजिते, महिलानां 200 मीटर धावने च हरिता भद्रा कांस्यपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आकाशवाण्याः मनोगतम् इति कार्यक्रमस्य सम्बोधनक्रमे राष्ट्रम् उद्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतीय सैन्यबलेन पाकिस्ताने आतंकवादिनां निगूढ आश्रयेषु कृतः सर्जिकल स्ट्राइक इति शल्यप्रहारः भारतस्य आतंकवाद विरोधी नीतेः नव्यम् उदाहरणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् श्वः भारतवर्षम् अस्य ऐतिहासिक शल्यप्रहारस्य दशम वर्षपूर्तिम् अभिनन्दिष्यति। नियन्त्रणरेखां लङ्घयित्वा वीर भारतीय सैनिकाः येन शौर्येण आतंकवाद विरुद्धं कठोरां प्रतिक्रियाम् अकुर्वन् तद्वीक्ष्य समग्रं विश्वम् आश्चर्यचकितम् अभवत्। सः सबलम् अवोचत् यत् एषः शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादी आक्रमणैः संतप्तस्य राष्ट्रस्य एकः निर्णायकः प्रत्युत्तरप्रहारः आसीत्। विगते दशके बालाकोट वैमानिक प्रहारात् आरभ्य सिन्दूराभियानं यावत् भारतेन मुहुर्मुहुः एषः स्पष्टः सन्देशः प्रसारितः यत् आतंकवादी दुश्चेष्टानां प्रत्युत्तरं यथोचित दण्डेन एव दीयते।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: सः उदघोषयत् यत् वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थानके हतेषु अमेरिकी नागरिकान् विहाय सर्वाधिकं संख्या भारतीय नागरिकाणाम् आसीत्। चतुर्दशोत्तर 2000 वर्षे प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहणात् परम् अमेरिका यात्रावधौ तेभ्यः निरपराध नागरिकेभ्यः स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान् इति सः अस्मरत्। प्रधानमन्त्री कोटिशः भारतीय नागरिकाणां पक्षतः शोक संतप्त परिवारेभ्यः पुनरपि एकदा संवेदनां प्राकटयत्। अपरं च जनगणना प्रक्रियाम् अधिकृत्य श्रीमोदी अवोचत् यत् अस्य राष्ट्रियाभियानस्य प्रथमः चरणः देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रायः सम्पन्नः अभवत्। यत्राधुना यावत् 32 कोट्यधिक परिवाराणां विवरणं समालेखितम्। सम्प्रति लद्दाख हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर उत्तराखण्ड राज्यानां दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यमिदम् अविरतं प्रचलति। एतेभ्यः सीमान्तक्षेत्रेभ्यः अनेके प्रेरकाः अनुभवाः प्राप्ताः इति उल्लेखयन् असौ अवोचत् यत् उत्तराखण्ड राज्ये देशस्य प्रथम ग्रामरूपेण प्रसिद्धात् चमोली मण्डलस्य माणा ग्रामात् मतगणना कार्यस्य शुभोत्कर्षः अभवत्।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: अद्य विश्व हिन्दू परिषदः भूतपूर्वस्य अन्ताराष्ट्रिय कार्याध्यक्षस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीय अशोक सिंघलस्य जन्मशताब्दी जयन्ती वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। सः अशोक सिंघलम् एतादृशं महान्तं व्यक्तित्वम् अभिहितवान् येन स्वकीयम् अखिलमपि जीवनं संस्कृतेः समाजस्य राष्ट्रस्य च सेवायै समर्पितम्। प्रधानमन्त्रिणा अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके आयोज्यमानायाः महात्मा गांधी जयन्त्याः सन्दर्भे अभिहितं यत् बापू इत्यस्य जीवनमूल्येषु स्वच्छता अभियानस्य स्थानम् अनन्यमस्ति, सः न्यगादीत् यत् व्यक्तिगत स्तरात् आरब्धाः प्रयासाः अनन्तरं लोक सहभागेन व्यापकरूपं धारयन्ति। स्वच्छतैव राष्ट्रस्य पक्षतः महात्मा गान्धिने दीयमानः सर्वोत्कृष्टः श्रद्धाञ्जलिः वर्तते इति मोदिना सबलम् उक्तम्।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मादक द्रव्य व्यसन मुक्त्यै संचालितस्य मादक मुक्त युवा अभियानस्य प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् लक्षाधिकैः युवकैः दुर्व्यसनात् दूरस्थाने संभूय अन्यान् जागरयितुं महती प्रतिज्ञा गृहीता। शतसप्ताहव्यापी अस्मिन् राष्ट्रिय यज्ञे युवकाः स्वकीयां अभिव्यक्ति कलां प्रयुञ्जीरन् इति मोदिना आह्वानं विहितम्। क्रीडा संवर्धनम् अधिकृत्य तेन प्रोक्तं यत् दर्ग रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् उद्घोषितायाः क्रीडा प्रतिभा अन्वेषण योजनायाः मूल लक्ष्यं सुदूर ग्रामेषु निगूढ सामर्थ्यस्य अन्वेषणम् अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य साबरमती स्थाने 15,00,000,00,000 रूप्यकाणां रेल परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। तेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा सह देशस्य प्रथमा LNG चालिता रेलसेवा च समारब्धा। एषा द्विइन्धनप्रणाली 40% यावत् डीजल उपभोगं न्यूनीकरिष्यति। भारतवर्षं कस्यापि राष्ट्रस्य भूखण्डम् आक्रमयितुं नैव वाञ्छति, परञ्च राष्ट्रिय सुरक्षायाः स्वायत्ततायाश्च उल्लङ्घने सति प्रतिघातं निश्चप्रचं करिष्यति इति नवदिल्ल्यां रक्षासम्मेलने भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रतिपादितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् आतंकवादपोषकैः सह वार्तायाः कोऽपि विकल्पः नैवास्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रसुरक्षा केवलं सैन्यबलानां नास्ति, प्रत्युत सर्वेषामपि नागरिकाणां सामूहिकम् उत्तरदायित्वं वर्तते। रक्षा उत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः उल्लेखं कुर्वन् रक्षामन्त्रिणा निगदितं यत् अस्यां दिशि भारतेन महती उपलब्धिः अर्जिता। जापान देशस्य आईची नागोया मण्डले प्रवर्तमाने एशियाई क्रीडा महोत्सवे अद्य स्क्वैश स्पर्धायां अभय सिंह अनाहत सिंहाभ्यां यथाक्रमं पुरुष महिला एकल वर्गयोः 2 रजत पदके स्वायत्तीकृते। एतदतिरिच्य महिलानां 200 मीटर धावन प्रतियोगितायां हरिता भद्रा तृतीयं स्थानं प्राप्य कांस्य पदकम् अलभत। सम्प्रति भारतवर्षं 4 स्वर्ण 14 रजत 15 कांस्य पदकैः सह आहत्य 33 पदकानि सम्प्राप्य पदकतालिकायां 11 स्थानं भजते। इति वार्ताः।

0: और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर हैं। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: पहले हेडलाइंस के साथ वैभव।
2: फर्स्ट द हेडलाइंस, अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस एवरीवन टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स। External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdraw over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far.
0: त्योहारी मौसम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धरत देशों से तनाव कम करने और वर्तमान संघर्ष के बीच ऊर्जा और व्यापार मार्ग खुले रखने का आह्वान किया। और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली।
2: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Starting with our first headline, the Prime Minister Narendra Modi today said every region of India has a unique specialty, ranging from agricultural products and traditional art forms to local skills. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the One District, One Product ODUP campaign seeks to promote these distinctive products and help them move beyond local markets to reach consumers across the country and abroad. He also linked the initiative with the Vocal for Local campaign, saying that promoting local products can contribute to the country's drive towards self-reliance. With the festive season approaching, the Prime Minister urged people to keep the spirit of local, vocal for local in mind and support products made by local farmers, artisans, entrepreneurs and self-help groups.
0: पहले कॉलर से संपर्क हुआ है हमारा, मुंबई अमित हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद
3: सर। मेरा सवाल था कि हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड में डिफरेंस क्या है, और इसमें हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट में एक एक नाम आप बता सकते हैं प्लीज, और ये क्या डेट फंड में अवेलेबल होते हैं? डेट फंड, सॉरी। थैंक यू
1: जी। देखिए, हाइब्रिड और मल्टी एसेट में आपने अंतर पूछा है, तो मल्टी एसेट एक तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स एक ओवरऑल एक बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, और मोस्टली उनमें डिपेंड करता है कि वो कितने एसेट क्लास में कितने प्रतिशत अपना पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वो करीब 70-75% आपका पैसा इक्विटी और बचा हुआ डेट में निवेश करते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड्स 50-50% आपका पैसा एलोकेट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड वहीं 25% इक्विटी और 75% डेट करते हैं। अब इसी बीच में मल्टी एसेट एक थोड़ी नई कैटेगरी है जिनका मैंडेट होता है कि वो कम से कम तीन एसेट क्लास में आपका पैसा डिवाइड करेंगे, और अधिकतर देखा गया कि वो तीन कैटेगरीज होती हैं, तीन एसेट क्लास होती हैं, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड। अब अलग अलग मल्टी एसेट फंड जो प्रोपोर्शन इन तीनों एसेट क्लास का रखते हैं वो अलग अलग होता है, वो कोई फिक्स्ड कोई एक बहुत प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट नहीं है। अलग अलग फंड में देखा गया कि कुछ इक्विटी हैवी रहेंगे, कुछ तीनों में बराबर बराबर आपका पैसा निवेश करेंगे, तो वो निवेश से पहले आपको देखना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अब डेट और इक्विटी, देखिए टैक्स के नजरिए से देखें तो हाइब्रिड फंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो फंड 65% से ज्यादा आपका पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए उनको इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है, और वहीं वो थोड़ा रिस्क रिटर्न उनका ज्यादा ऊंचे पैमाने पर रहता है। वहीं जो डेट हैवी हाइब्रिड्स होते हैं उनमें आपको डेट वाला टैक्स ट्रीटमेंट लगता है, गेन्स आपकी स्लैब पे टैक्स होते हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट पर, और रिस्क और रिटर्न का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस पर डाउन द ऑर्डर आते हैं। तो ये

0: काफी वेरी कर सकते हैं एक से दूसरा फंड, आपको इसको ध्यान से देखना होगा।
1: जी आशुतोष, हम कई बार देखते हैं कई निवेशक जो अच्छी जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड बाजार की और कैसे निवेश करें, कौन सी कैटेगरीज हैं, और कई हमारे हमेशा हम नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं क्योंकि SIP के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी पता लगता है, नए निवेशकों की अद्भुत दुविधा देखने को मिलती है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे एजेंट्स और एडवाइजर्स से सलाह लेते हैं और कौन सी सलाह अच्छी है कौन सी नहीं है। चले अगले कॉलर के पास। वैभव
2: Absolutely, our next caller is Jitendra from Jaipur. Jitendra ji, welcome to Market Mantra. Please ask your question, sir. Jitendra ji, अपना सवाल पूछिए।
1: लगता है कुछ
2: जितेंद्र जी से कुछ संपर्क
1: संपर्क
2: तो हुआ, लेकिन आवाज और शोर कुछ ज्यादा है।
1: जी, तो हम अपनी बातचीत जारी रखें आशुतोष की। जैसे कई लोग एजेंट से एडवाइजर्स के जरिए निवेश कर रहे हैं और उनसे और वही उनके सलाहकार भी बन जाते हैं। जब आप जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये ले लो आप, इसमें पैसे लगा दो आप, और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो SIP शुरू कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है या कहाँ है। अगर कोई एजेंट या एडवाइज़र किसी नए निवेशक को सलाह देता है कि आप किसी एक तरह के फंड में, मान लीजिए आप अपना 70% पैसा लगा दीजिए स्मॉल कैप फंड्स में, तो क्या आप बोलेंगे कि क्योंकि अभी उसके रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये अच्छी सलाह है? क्योंकि खास करके ऐसे निवेशक के लिए जिसको पता ही नहीं है कि वो स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है।
0: तो देखिए, आपके सवाल पर मुझे एक एक चीज याद आती है कि NSE का जो टैगलाइन है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो निवेशकों को सबसे पहले वही करना है कि आपको कोई भी कुछ भी रिटर्न्स का प्रलोभन दे, आपको अपने आप से, क्योंकि आपका पैसा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा आपको सोच समझ कर निवेश करना है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न अच्छे देते हैं, हिस्टोरिक रिटर्न उनके काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ऐसे फेस भी आते हैं कि जब वो काफी धड़ाम से गिर जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देखा गया गिरते हैं, तो उसका टॉलरेंस होना जरूरी है। लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए, जब तक उनको फेमिलियरिटी नहीं है, इंडेक्स फंड एक बड़ा ही सरल और सुगम तरीका है जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से वो शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि उनका रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और अगर जानकारी का अभाव भी है तो इन फंड्स में आप फिर भी थोड़े मॉडरेट रिस्क के साथ अपना पहला कदम मार्केट के निवेश की ओर रख सकते हैं।
2: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली। योगेश, वेलकम टू मार्केट मंथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जैसे वॉरेन बफेट बरोबर कहते हैं कि बाय एंड होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, सो डू म्यूचुअल फंड हाउसेस दे देमसेल्फ बाय अ स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लाइक सिंस मेनी इयर्स? बिकॉज आई नोटिस अबाउट दे डू अ लॉट ऑफ चर्निंग विद देयर पोर्टफोलियो, सो दे बाय एंड देन दे सेल सम टाइम, सो इज देयर एनी स्टडी ऑन दैट के वट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन दैट अ म्यूचुअल फंड AMC होल्ड अ स्टॉक for the longest term?
2: Ashutosh, the investor is trying to get into the minds of the fund manager. Your views, sir?
0: Yeah. So while I won't have a specific study or a number to quote on this, but it will always be a mixed bag. You will find funds which say that they are on a buy and hold strategy, but there are other funds which say that they don't mind churning, they don't mind getting in and getting out. Different kind of funds, different fund managers, different mandates, and you will find the behaviors could be different. Even in the same fund, a lot of fund managers, what they call as their portfolio construction strategy as a core and a satellite approach, where they would have a core component in the portfolio, which are stocks, which they consider as all weather stocks, which they'll continue to hold through the ups and downs of the market. And then there is a satellite portfolio where they take slightly more opportunistic, slightly more tactical calls depending upon the prevalent macroeconomics, which industries or themes they think will benefit, and then they move in and they move out. So portfolio construction, managing your money is a fairly complex task, better left to the fund manager, better left to their discretion and judgment, and you would find all shades of gray.
1: और श्रोताओं को हम याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। और अगर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0444।

0: आठ एक और 2371-7106। और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन ईरान मध्यस्थों के माध्यम से औपचारिक प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थों के साथ बातचीत में ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए योजना और शर्तें रखी थीं जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तय की थी। श्री अराकची ने कहा कि ईरान ने कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और वह ईरान के लोगों के अधिकार और जायज़ मांगों के लिए बातचीत से समाधान निकालने के पक्ष में है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने अडिग रहेगा। उधर श्री ट्रंप ने ईरान के 7 दिन के संघर्ष विराम और होर्मुज को फिर से तुरंत खोलने के प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे।
1: Moving to our next story, India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. On the Gulf conflict, Dr. Jayashankar said, the hostilities are exacerbating an already difficult situation.
2: This year, we are witnessing a conflict in the Gulf, one that is exacerbating an already difficult situation. We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
1: Dr. Jayashankar also said that the world is witnessing weaponization of everything from finance and market access to supply chains and technology. He said countries are responding by reducing risks and diversifying their ties. Dr. Jayashankar described a 4F crisis confronting the global south, the security of food, fuel, fertilizer and finance. And once again, Jitendra from Jaipur is rejoining in Market Month. Jitendra ji, swagat hai Market Month mein, apna sawal poochein.
3: Hello, haan sir, this is ek hamara multi cap fund chal raha hai Mahindra Manu Life mein. Ek aur hum chahte multi cap fund to bata dete jaise ek aur kholne ke liye. Aur isme ek fund aaya tha naya abhi just 15 days pehle, active momentum fund. तो किसको ट्रैक करता है, कुछ आइडिया है क्या सर? एक्टिव मोमेंटम फंड।
4: तो देखिए, नए फंड से मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा आप बचें। एक्टिव मोमेंटम फंड, उसकी स्ट्रेटजी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की रहेगी। एक्टिवली मैनेज रहेगा, तो एक्टिव मोमेंटम का मतलब है एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड जो कि मोमेंटम एक उसकी स्ट्रेटजी का मेन फैक्टर रहेगा जिसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। और अगर मोमेंटम एज अ थीम, एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी चलता है बाजार में, तो आप इस फंड से रिटर्न्स की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन नए फंड से मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। कुछ भी ऐसा नोवेल्टी कोई भी नया फंड नहीं देता है कि आपको उसके एनएफओ के टाइम पे ही उसमें निवेश करना है। उसको समय दीजिए, अपने आप को प्रूव करने दीजिए मार्केट में। अच्छे रिटर्न अगर वो देता है, कंसिस्टेंसी के साथ देता है, तो उसमें निवेश करने की सोचें। और इसी तरह आप अपना मल्टी कैप फंड भी कोई ऐसा फंड का चुनाव करें जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न। मल्टी कैप फंड्स को आए हुए मार्केट में करीब 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है जब ये कैटेगरी सेबी द्वारा नई बनाई गई थी। तो आप कोई भी ऐसा फंड जो, और इस बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव के दौर भी मार्केट ने देखे हैं, थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट, कोई ऐसा फंड का चुनाव करके निवेश करें जिसने कंसिस्टेंटली रीजनेबली अच्छे रिटर्न दिया। नेवर चेज द हॉटेस्ट परफॉर्मर, एकदम जो टॉप परफॉर्मर है, कभी भी उस फंड के पीछे जरूरी नहीं है कि वही सबसे अच्छा फंड हो। ऐसा फंड का चुनाव करें जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिलती डुलती नहीं है, वो अबव एवरेज अगर हर टाइप के मार्केट के माहौल में आपको अनुभव दे पाता है, तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा फंड होगा।

0: साधारण जरिया होता है म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने का, जिसको एसओए फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट बोलते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको बेच सकते हैं, तो आपके पास उसमें ट्रांजैक्शन करने के सुविधाएं और साधन ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो एसओए फॉर्मेट एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए मेरी राय में बेहतर, ज़्यादा सुगम तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। अब रही बात आपकी डीमैट होल्डिंग्स की, तो बिल्कुल आप उनको एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने इन्वेस्टर सर्विस से आप कॉन्टैक्ट करें, जिस भी एएमसी में आपका निवेश है, कुछ आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और आपकी यूनिट्स डीमैट से एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उनको कहीं भी खरीद बेच पाएंगे और आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी। तो अगर आप शायद आपका इशारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबिलिटी की तरफ है, तो बिल्कुल आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, वहीं से आपकी होल्डिंग पीरियड को काउंट किया जाएगा।
1: आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 17,131 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 25,682 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में हुई बिकवाली से निकाले गए, लेकिन प्राइमरी मार्केट में एफपीआई ने निवेश कायम रखा और सितंबर में अब तक उन्होंने इसमें 8,551 करोड़ रुपए डाले हैं। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय ऋण बाजार से भी निकासी का रुख कायम रखा है। एफएआर के जरिए उन्होंने 7,385 करोड़ रुपए निकाले, वीआरआर के जरिए 3,021 करोड़ रुपए और जनरल लिमिट रूट से 1,889 करोड़ रुपए निकाले हैं। और अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते
2: सर, मेरा सवाल रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट कंपनी पिछले कई सालों से बहुत अच्छा, मतलब पिछले साल दो साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो बेसिकली वो कवर करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और वो रेजिडेंशियल कवर नहीं करता है, ऐसी बात, ये बात सही है क्या? रेजिडेंशियल कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो उछाल आता है उसको वो कैप्चर नहीं कर पाते, दे आर मोर इन टू ये जो प्रॉपर्टीज होती है अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज मॉल प्रॉपर्टी, उसी को कवर करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसी से संबंधित इससे सवाल है कि क्या कोई ऐसे फंड होते हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज को में ही इन्वेस्ट करते हैं या उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, ऐसा कुछ फंड है क्या जो इस तक उस पर ध्यान दिया जाता है, या फ्लेक्सी कैप विल बी एबल टू कैप्चर द रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ? थैंक यू सर।
0: जी, तो देखिए रीट्स अपने आप में एक अपकमिंग एसेट क्लास है। इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रेवलेंट नहीं है, बट ये अपकमिंग सेगमेंट है। सेबी का भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रीट्स को एक अपशॉट देने के लिए उनको इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जिससे कि वो जो इंडेक्स होते हैं, मार्केट इंडेक्स होते हैं, उनमें रीट्स की भी एंट्री हो पाए। तो रीट्स को प्रमोट करने के लिए सेबी अपना काम कर रहा है। आने वाले टाइम में होपफुली रीट्स एज एन एसेट क्लास आपको उस पर ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा वेरीड टाइप के रीट्स की अवेलेबिलिटी होगी। आपका सवाल म्यूचुअल फंड्स में, तो देखिए जो स्टैंडर्ड अभी तक जो वनीला म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनमें आपको रीट्स का एक्सपोजर काफी लिमिटेड ही मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक दो फंड आए हैं जो रीट्स पे ही फोकस करते हैं, रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। उनका मैंडेट है कि वो आपका पैसा रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे और अगर रीट्स में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो रियल एस्टेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत नए फंड हैं, एक का तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनएफओ पीरियड ही चल रहा है, तो इनको आप आइडियली थोड़ा समय दीजिए ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप काफी इंक्लाइंड हैं तो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहता है इनमें, बट इनको थोड़ा समय दीजिए और आने वाले टाइम में मेरा ख्याल ये सेगमेंट में आपको ऑप्शंस काफी मिलेंगी।
3: And we're joined in by Dinesh from Delhi. Dinesh, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: Namaskar, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
3: जी नमस्कार।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी कंपनीज, वो जब डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो डिविडेंड का अमाउंट कहाँ जाता है और क्या वो एनएवी को अफेक्ट करता है, और इस बारे में क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है टू इंश्योर दैट द डिविडेंड इज इंटेंडेड टू गो टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज टू बी? थैंक यू।
0: जी, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करते हैं, जो आप प्लान होल्ड करते हैं, वो आप डिविडेंड प्लान है कि ग्रोथ प्लान है। डिविडेंड प्लान्स को म्यूचुअल फंड्स में आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स के नाम से जाना जाता है,

0: तो अगर कोई फंड डिविडेंड, कोई आप ऐसी स्कीम है जिसके जिसके बारे में आपने सुना कि उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन अगर आप उसका ग्रोथ वेरिएंट ओन करते हैं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि ये कुछ इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जाता है कि इसका अभी मैंने सुना था डिविडेंड आया लेकिन मेरे पास नहीं आया। वो काफी बार वो कारण यही होता है कि आप शायद ग्रोथ प्लान में उस फंड के इन्वेस्टेड होंगे, डिविडेंड प्लान में नहीं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखिए, डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जब मानिए एक फंड है जो कि 20 रुपए की एनएवी पे ट्रेड कर रहा है और वो फंड 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वो 1 रुपया जो भी डिविडेंड प्लान के निवेशक हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितनी भी वो यूनिट्स होल्ड करते हैं उसके हिसाब से, और उनके फंड की एनएवी 20 रुपए से 19 रुपए हो जाएगी। तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, वो आप ही का पैसा थोड़ा सा रिडीम कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल ये सटीक तरीके से किया जाता है। आरटीएस जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेशकों का रजिस्टर ओन करते हैं, जहां पे बड़ी सटीकता के साथ सारे फंड निवेशक, उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं, सब कुछ दर्ज होता है। तो बड़े प्रिसिशन के साथ ये डिविडेंड का काम किया जाता है। इट इज सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट ऑडिट। म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, एएमसी का जो स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है वो एक अलग होता है, और म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स होते हैं वो एएमसी से अलग अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली अगर देखें तो एक ट्रस्ट ओन करता है, और जो म्यूचुअल फंड्स के खाते होते हैं वो एक अलग इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ऑडिट करके सर्टिफाई करने होते हैं। तो काफी वेल रेगुलेटेड वो है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत पुराने निवेशक जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग उनके अकाउंट में दर्ज नहीं है, तो ऐसा है कि डिविडेंड का पैसा अनक्लेम्ड रह गया है, तो लेकिन ये एज अ निवेशक आपको एंश्योर करना होगा कि आपकी प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके फोलियोज में मैप्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के जरिए वो सक्षम है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपके डिविडेंड की रकम को वो ट्रांसफर कर दें। तो अगर आपने ये इंश्योर किया है तो डिविडेंड का पैसा जरूर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप एएमसी के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ शायद धोखाधड़ी हो रही है, तो आप बिल्कुल सेबी पे उनके स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और जरूर कार्रवाई होगी
1: जी। और नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR व्यवस्था अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगी। इसके तहत 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि स्थानीय बाजारों में QR कोड स्कैन करने पर क्या ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाएगा? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने कहा है कि स्थानीय बाजारों, रेड़ी पटरी वालों या छोटी खुदरा दुकानों पर QR कोड स्कैन करने पर ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। NPCI ने यह भी साफ किया कि QR कोड से भुगतान करने वाले ग्राहक से किसी भी राशि की खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2: Our next caller is Shankar from Chennai. Welcome to Market Month. Please ask your question.
3: Sir, good evening.
2: Good evening, sir.
3: I have a query related to mutual fund investments for NRIs. Please listen to this query carefully because it's a very unique query. Okay?
2: Sure.
3: And
2: sir,
3: answer me if in case of advice, please let me know. For a NRI relative who is staying in Germany, he is already investing through a mutual fund distributor through DMAT account. Okay, sir? Now, his mother passed away and he wants to have the mother's things which he will acquire in his NRO account, okay, to be invested in mutual fund. But the mutual fund distributor says one more DMAT account need to be opened because the current DMAT account is only for NRE account investment. Is this correct? What the regulation says and what is the advice? Because having two DMAT accounts is cumbersome, am I right? Are there any exceptions? Who can guide me correctly on?
0: Well, I'm afraid I also may not be 100% sure because of the very specificity of this query, but I am inclined to believe that what your distributor is saying is right, because in the DMAT account, if an NRE account is already linked, you may not be able to link an NRO account with the same DMAT account, and that could be the reason. So it is not about the DMAT account per se, but likely related to the NRE and the NRO status, two different accounts which may not be feasible here. but something which needs to be ensured. And this is my opinion, this is my gut feel, but I'm afraid I won't be able to answer with 100% surety right now.
1: जी, और अगली खबर पे नजर डालें, देखें सोने और चांदी का हाल. पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ट्रेजरी यील्ड में बढ़त और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया. एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 2.3% की गिरावट के साथ 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 2.8% की कमी आई और ये 2,34,696 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई. कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 2.3% गिरकर 4,287 डॉलर्स 80 सेंट प्रति ट्रॉय ऑन्स पर रहा. दिसंबर अनुबंध की चांदी 3.5% लुढ़ककर 64 डॉलर्स 80 सेंट प्रति ट्रॉय ऑन्स पर आ गई.
2: Domestic investors are expected to closely monitor key market triggers, including macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor FII flows, commodity prices, bond yield movements, and currency fluctuations during the holiday shortened week ahead. Indian equity markets will remain closed on Friday on account of Mahatma Gandhi's Jayanti. Market participants will focus on industrial production data, IIP, monthly auto sales figures, GST collection data, and the HSBC manufacturing PMI reading. The primary market is also set for another busy week, with 4 main board IPOs scheduled to open for subscription. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict. In the United States, personal consumption expenditure, PCE, and jobs data will remain on investors' radar. Meanwhile, inflation and trade data from South Korea will also be closely watched by market participants.
1: आशुतोष, 10 सेकंड में बता दें हमें कि अगर हमारा कुल निवेश कुछ 30,000 रुपये का SIP चल रही हो तो उसका हम कितना प्रतिशत स्मॉल कैप में रखें अगर हमें बहुत लालच आ ही रहा हो तो.
0: देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता, आप रख सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल अपना 20-25% तक पैसा आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं.
1: जी आशुतोष, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के और हमारे भी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी
2: धन्यवाद. The headlines once again ahead of festive season. Prime Minister Narendra Modi urges everyone to promote local products. External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdrew over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far. That's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली

0: रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथोनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories. The Prime Minister stressed that the census is a national responsibility and said the facility for self-enumeration makes the process easier. Prime Minister Modi said the month of September is dedicated to the fight against malnutrition. He said several commendable initiatives have been launched this year to combat malnutrition. The Prime Minister said millions of young people have recently taken the pledge to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He urged people to support those trying to overcome addiction and work towards a drug-free youth. Defence Minister Rajnath Singh said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister said as long as neighbouring countries continue to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. The Enforcement Directorate, ED, has provisionally attached movable and immovable properties worth around 442 crore rupees in connection with the case related to Rummy Culture app and others. The ED informed that the action was taken under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Union Home Minister Amit Shah today said that former Vishwa Hindu Parishad President Ashok Singhal devoted his entire life to Hindutva, the nation and social service. Speaking at the inaugural ceremony of the birth centenary celebrations of late Ashok Singhal, Mr. Shah said that Ashok Singhal's life reflected qualities of sacrifice, patriotism, religious devotion, discipline and commitment. Vice President C.P. Radhakrishnan has said technology cannot replace the human touch of a medical doctor. He emphasized the importance of compassion among doctors in an era of rapid progress in AI and digital health. Mr. Radhakrishnan was addressing the graduation ceremony of SUT Academy of Medical Sciences in Thiruvananthapuram today. He urged young doctors to be clear and precise in their communication. India has sent a consignment of life-saving medicines and medical consumables for the government hospital of Kabul as part of its ongoing humanitarian assistance. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that health remains at the heart of India's humanitarian assistance to the Afghan people. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Uttarakhand and West Uttar Pradesh. The weather agency has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, East Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. In men's cricket, chasing a target of 296 runs set by West Indies, India was 70 for no loss in 9.2 overs in the first one-day international of three-match series in Thiruvananthapuram when reports last came in. Put into bat first, West Indies posted 295 runs for the loss of 7 wickets in stipulated 50 overs. At the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojourn Eddapilli has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. India's Sarvesh Kushare wins silver medal in the men's high jump. Kushare cleared 2.25 metre to finish second. Parul Chaudhary has won the bronze medal in the women's 3,000 metre steeplechase final. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉ के एस वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
4: नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सक्सेना और आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2001 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और आज साल 2026 में उनके 25 वर्ष पब्लिक गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस में पूरे हो चुके हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें से सबसे बड़ी एक चुनौती जो थी वो साल 2001 में गुजरात में भुज में आए अर्थक्वेक की थी। तब शायद उन्होंने ये सीख ली थी कि कैसे डिजास्टर से ना सिर्फ निपटा जाए बल्कि आगे आने वाले डिजास्टर के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है, संकट से समाधान तक। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही अहम गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर कृष्णा एस वत्स, ही इज मेंबर एंड एचओडी एनडीएमए, एंड श्री अमित प्रोथी, डीजी सीडीआरआई। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: डॉक्टर वत्स, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि साल 2001 में जो गुजरात में

0: टच को जिसने इम्पैक्ट किया, जिस अर्थक्वेक ने, उसमें काफी लोगों की जान गई, काफी लोग इम्पैक्टेड हुए, काफी लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है डिजास्टर की दिशा में जब भारत ने अपने कदम उठाए। तो आप क्या हमें समझा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कैसे डील किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और ना कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे कैसे रेजिलिएंट बनाया जाए उस पे काम किया?
1: करीब करीब 12,000 लोगों की जाने गई थी और बहुत बड़े क्षेत्र में आर्थिक और बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था। तो यह गुजरात के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत बड़े संकट की घड़ी थी और इसमें पूरे देश की तरफ से जो रिस्पांस आया था, सारे राज्यों ने मदद का हाथ बढ़ाया था और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों से भी मदद मिली थी। तो पहला तो था कि बहुत बड़े क्षेत्र में सर्च एंड रेस्क्यू ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके साथ साथ फिर लोगों को जो तात्कालिक जो मदद देनी होती है वह दिया गया, लोगों को जो टेम्पररी शेल्टर में रखा गया क्योंकि घरों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, स्कूलों के गिरने से बहुत बच्चों के भी डेथ्स हुए थे। तो पूरा राज्य सरकार जुट करके लोगों की मदद कर रहा था और लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की, खाने पीने की, रहने की, ये सारी सुविधाएं, पीने के पानी की, मैं उस समय था वहां पर और मैं देख रहा था कि राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी से सारा कुछ जो रिलीफ है और उसका काम किया था। साथ साथ जो है वो एक उस समय यह भी एक चुनौती थी कि इस पूरे का पुनर्वास कैसे किया जाए, रिहैबिलिटेशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं एक बहुत बड़े आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी और उसके लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी मदद ली गई थी और उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें काफी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा योगदान था कि एक तो जब हम लोगों का पुनर्वास करें तो अच्छे से करें, लोगों को बेहतर घर मिले, भूकंप प्रवणता का ध्यान रखें और साथ साथ जो है सो लोगों को रोजगार के भी बेहतर अवसर मिले, इस क्षेत्र में एक इन्वेस्टमेंट आए तो इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूपांतरण हो। कच्छ जो है वह कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां सूखे की प्रवणता ज्यादा रहती है, तो कच्छ का आर्थिक रूपांतरण भी हो उसकी ओर भी उतना ही ध्यान था। तो लोगों का पुनर्वास, एक पूरे क्षेत्र का आर्थिक रूपांतरण और साथ साथ लोगों को किस तरह से फिर से अपने पैर पर खड़ा करना और एक राज्य को आगे आने वाली आपदा से मुकाबला करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाना, ये सारी चुनौतियां थी। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नेतृत्व इसके लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ।
0: यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर प्रोथी मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर हम ग्लोबली फिगर्स को देखें तो लगभग 100 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल इफेक्ट होते हैं किसी न किसी नेचुरल डिजास्टर से। जैसा डॉक्टर वत्सा ने अभी हमें बताया, प्रधानमंत्री की वो दूरदर्शी सोच ही है जिसने 2019 में CDRI की स्थापना को जन्म दिया, CDRI का जन्म हुआ। तो आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आखिर CDRI को बनाने के पीछे की सोच क्या थी और CDRI का काम एक्चुअली में है क्या?
2: आई थिंक जैसे कृष्णा जी ने बताया कि जो कच्छ में एक्सपीरियंस हुआ उसमें बहुत साफ साफ दिखने लगा कि जैसे भूकंप आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड आता है, इसमें लोगों को भी काफी डेथ्स भी होती हैं, डिफिकल्टीज भी होती हैं, लेकिन जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी काफी भारी डिस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। तो और ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा इंडिया में तो हमने देखा है, लेकिन अब पीछे नेपाल में भी देखा है, कोलंबिया में भी भूकंप आया है। लोगों पे इन इवेंट्स की जो चैलेंज आते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी आते हैं, जैसे घर कैसे बनाया जाए, जैसे सड़कें कैसे बनाई जाए कि गिरे ना, जैसे पानी चलता रहे, बिजली चलती रहे, नॉर्मल लाइफ बेसिकली चलती रहे। इनफैक्ट 23 सितंबर एग्जैक्टली 7 साल हो गए हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोलिशन को न्यूयॉर्क में अनाउंस किया था कि भारत ग्लोबल लीडरशिप दिखाएगा कि कैसे हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको इस तरीके से बनाया जाए कि हम ये जो लॉसेज आ रहे हैं साथ साथ में

0: को अवॉइड कर सके। अब हमारे करीब 59 देश इस कोलिशन के मेंबर बन चुके हैं एंड वो हमसे तीन चीजें पूछते हैं। हम जो सेक्रेटेरिएट हैं कोलिशन के, हम उसको तीन सवाल आते हैं। एक कि अभी मैंने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें किस तरीके से बनाया जाए कि ताकि कल का जो भूकंप आएगा या कल जो साइक्लोन आएगा वो मेरा सर्विसेज को डिस्ट्रप्शन ना करे, मेरी बिजली आती रहे, लाइफ चलती रहे, एक वो है। दूसरा है कि लोगों पे जो इम्पैक्ट है उस पर किस तरीके से ऐसे ध्यान दिया जाए कि वो इम्पैक्ट ना हो और अगर है तो बहुत जल्दी उससे रिकवर किया जाए। और तीसरा, अगर इसमें जो पैसा जाता है बाद में, जब डिस्ट्रक्शन के बाद जो पैसा जाता है उसको किस तरीके से पहले अवॉइड किया जाए,
1: तो
0: एक्सपेंसेस को, लॉसेस को। तो हमको पता है कि इवेंट्स तो आएंगे, भूकंप आएंगे, बारिश भी आती है, गर्मी भी आएगी और साइक्लोन्स भी आएंगे, लैंडस्लाइड्स भी आएंगे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे ना गिरे, घर ना गिरे, डिसरप्शन ना हो, उस पे कैसे काम किया जाए, वो हमारा सबसे ज्यादा मेन फोकस है। एंड बिकॉज अब हम बोलते हैं कि हमारे इतने सारे देश मेंबर्स हैं तो इनसे एक दूसरे से सीखा कैसे जाए, बिकॉज हर देश में कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है, उसको किस तरीके से शेयर किया जाए ताकि जिस देश को जरूरत है उसको बड़ी जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस तरीके से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिज्यूम कर सकते हैं। तो वो भी कोलिशन का जो एक आइडिया है कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाए और शेयर किया जाए एक्सपीरियंस, ताकि जो गलतियां हम कर चुके हैं या कोई और कर चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए।
1: डॉक्टर वत्सा, जब 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था उसके बाद ही GSDMA का भी जन्म हुआ था, उसके पीछे का सोच क्या था और शायद अर्थक्वेक ने एक सीख दे दी कि आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्लान्ड मोड में किया जाए, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
2: क्योंकि वो पुनर्वास का जो स्वरूप था वो इतना बृहद था कि उसके लिए आवश्यक था कि एक विशेष व्यवस्था की जाए और वह विशेष व्यवस्था GSDMA गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुई। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को फिर से अपने जीवन में पुनर्स्थापित करने का था। तो GSDMA की स्थापना हुई, GSDMA की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुई, तो राज्य सरकार ने एक ना उसके लिए लेजिस्लेशन लाया और फिर GSDMA का एक किट, कई विंग्स थे, कई जो शाखाएं थी जिनके माध्यम से ये पुनर्वास का कार्यक्रम लिया गया। तो करीब करीब ये जो प्रोग्राम था वो कई हजार करोड़ों का था, मतलब मैं अगर वर्ल्ड बैंक और ADB की मदद मिली और अन्य संस्थाओं की मदद मिली तो करीब करीब वो $2 बिलियन के आसपास का यह प्रोग्राम था। तो काफी बड़ा प्रोग्राम था और इसलिए वो आवश्यक था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए और उनके माध्यम से पूरा इसका कार्यान्वयन हो और फिर GSDMA फिर आगे भी चला और वो अभी भी है। GSDMA के बाद राज्य में एक नया कानून डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी लाया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही वह भी संभव हुआ और इन सब के कारण गुजरात में जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की जो संकल्पना है वो काफी मजबूत हुई। पूरे राज्य में जो रिस्क असेसमेंट का काम लिया गया और भी जो साइक्लोन के लिए जो तैयारियां होती हैं, गुजरात में 1996-97 में शायद है ना कांडला का साइक्लोन हुआ था, काफी लोग उसमें मरे थे, तो एक गुजरात में फिर साइक्लोन की तैयारी की भी बात आवश्यक थी। तो भूकंप हो या साइक्लोन हो या फ्लड्स हो, इन सारे विषयों पर ध्यान दिया गया और राज्य में एक ना आपदा प्रबंधन के लिए एक नया संकल्प आया, मैं इस बात को निश्चित रूप से कहूंगा।
1: मिस्टर प्रोति, जैसे कि डॉक्टर वत्सा ने बताया किसी भी डिजास्टर, किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक प्लान्ड तरीका होता है, CDRI भी वहीं से आया है। तो कोई डिजास्टर अगर होता है तो उसमें नॉर्मल आम आदमी इम्पैक्ट होता है, तो क्या आपका काम आम आदमी से रिलेटेड है? आप लोग कैसे जनता को ये बताते हैं, कैसे लोगों को ये बताते हैं कि उनको डिजास्टर रेजिलियंट घर बनाने चाहिए? जैसे हमने नेपाल में भी देखा कि फ्लड आया और बहुत लोगों की जाने गई पर एक घर सुरक्षित रहा और वो कई बार सुरक्षित रहा है कई ऐसी चुनौतियों में, तो आप लोगों का ऐसा क्या काम है?
0: मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि जो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक आया था नेपाल में, मैं काठमांडू में ही था एंड मैं थोड़ा पहाड़ों में था। जब मैं पहाड़ों में जब था, जब अर्थक्वेक आया है, मेरे को तो लगा कि पूरा शहर खत्म हो रहा है, पर जब मैं नीचे आया 6 में से पांच बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी, एक बिल्डिंग शायद गिरी थी, मतलब अगर आप आसपास देखो। एक चीज उस दिन बड़ा क्लियर हो गया मुझे कि जो हमारे बिल्डिंग कोड है, हम जब घर बनाते हैं, टावर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इनके पीछे होता है ये पूरा कोड एंड स्टैंडर्ड होता है कि इस तरीके से बनाइए, आप इस रिस्क जोन में हैं, आपका इस टाइप का विंड स्पीड है, तो इनको महत्व देना है। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इन सब पे अटेंशन आपको देना है। अब हमारा जो काम है वो ये भी है कि देखना है कि जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या अभी रिस्क चेंज हो रहे हैं, साइक्लोन्स की स्पीड चेंज हो रही है, जो बारिश गिर रही है उसका भी चेंज आ रहा है कि कब बारिश गिर रही है, कितनी बारिश गिर रही है, अगर हम उसको समझ सकें और उसको फिर कोड एंड स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट कर सकें ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो आगे का जो रिस्क है उसको समझ के बने। जो पीछे का रिस्क है वो तो हमको पता है, लेकिन जो आगे का रिस्क आने वाला है एंड वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्री असेसमेंट और प्री असेसमेंट भी नहीं, रिस्क असेसमेंट इसको कहते हैं। कि अब आपने पहाड़ों में सड़क बनानी है, पहाड़ों में हमको पता है कि लैंडस्लाइड होती हैं, लेकिन लैंडस्लाइड सब जगह नहीं होती हैं। उसके पीछे आपको समझना पड़ता है कि पहाड़ कहाँ पर गिर सकता है, उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का साइंस है, तो वो सब चीजें अगर समझ के फिर सड़क बनाई जाए तो उसका गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हमारा एक तरह से है कि वो रेजिलियंस है। एक और चीज में एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हम सब सेलफोन पे इतने डिपेंडेंट हैं, ये मेरे सामने नेपाल में जब मैं था, अपने मेरे साथ एक गाइड था पहाड़ों में जो चढ़ रहा था, जब भूकंप आया तो मेरे सेलफोन पे मैंने मैसेज अपनी वाइफ को भेज दिया कि मैं भूकंप में हूं और मैं ठीक हूं। जो गाइड था वो वेट करा, भूकंप खत्म हुआ उसके बाद उसने कोशिश करी भेजने की और वो गया नहीं टेक्स्ट, और डेढ़ घंटे के लिए उसको ये नहीं पता था कि उसका फैमिली का क्या हाल है। एंड जब उसका टेक्स्ट गया, शुक्र है उसकी फैमिली ठीक थी, ये आदमी मेरे सामने बैठ के रोने लग गया। अब ये बताता है कि हम सब इतने डिपेंडेंट हैं आज कम्युनिकेशन पे, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, अगर आप एक दूसरे को नहीं रीच कर पाएंगे या पुलिस को नहीं कर पाएंगे या इमरजेंसी को नहीं कर पाएंगे, तो वो डिजास्टर जो इवेंट है वो फिर सबके लिए ज्यादा ही उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो कैसे इन सिस्टम्स को भी मेक श्योर करें कि ये सिस्टम्स जब इवेंट्स आते हैं उसके टाइम काम करते रहें, वो भी हमारा काम है देखना।
1: आगे बढ़ते हुए डॉक्टर वत्सा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे गुजरात में पानी की भी काफी दिक्कतें हुई और जब वहां के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब उन्होंने पानी की दिक्कतों से निपटने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया, तो अगर आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाए।
2: नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा के लिए काफी काम किया था, नर्मदा में जो डैम बन रहा था तो वो जो डैम की ऊंचाई है वो कई स्टेजों में उसको बनाना था, तो पहले 95 मीटर पर, फिर 110 मीटर पर, फिर 137 मीटर पर था, और जैसे जैसे डैम से जो लोगों का विस्थापन हो रहा है उनका पुनर्वास जैसे जैसे होगा वैसे वैसे डैम की ऊंचाई बढ़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। तो उस समय में मैं महाराष्ट्र में था तो वहां पर इस पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा था, और ये पुनर्वास का कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों में हो रहा था, और महाराष्ट्र में मैं पुनर्वास का कार्यक्रम देख रहा था। तो उस समय जो था कि पुनर्वास का कार्यक्रम समाप्त करके फिर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, वो सर्टिफिकेट जो है सो एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्थापित एक यंत्रणा थी उसके माध्यम से दिया जाता था, तो वो उस पर लगातार काम होते रहता था और गुजरात सरकार बड़ी सक्रियता से इसको देख रही थी, और उनके नेतृत्व में उस समय 95 मीटर पर बना, फिर 110 पर बना, तब तक मैं वहां था और मैं देख रहा था कि गुजरात सरकार इसको पूरी अच्छे से संभाल रही थी और डैम का हाइट ऊपर गया। फिर नर्मदा का डैम फिर बाद में 137 मीटर पर भी पहुंचा, और नर्मदा के कारण जो पानी की उपलब्धि हुई राज्य को उसका सूखा प्रवण क्षेत्रों पर काफी उसका है ना अच्छा परिणाम हुआ। आज बहुत सारे क्षेत्रों में जो पानी की उपलब्धता है वो नर्मदा में बने डैम के कारण है, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी नर्मदा डैम के बारे में तो उसके कारण राज्य के पानी की उपलब्धता पर काफी ना अच्छा परिणाम आया।
1: मिस्टर प्रोति, अगर हम सीडीआरआई की बात करें, पानी रिलेटेड कोई डिजास्टर आता है स्पेसिफिकली, क्योंकि फ्लड्स की दिक्कतें भारत में होती हैं मानसून के सीजन में, उसमें सीडीआरआई का क्या रोल रहता है?
0: हाँ, तो इनफैक्ट आज ही हम एनडीएमए के साथ एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर देखिए हमारा काम है एक्सपर्टीज लाना डिफरेंट देशों से। और बाढ़ का जो आपने बात किया है, बाढ़ एक्चुअली बहुत ही चैलेंज रहेगा स्पेशली शहरों में, क्योंकि हम शहर बड़े जल्दी बन रहे हैं, हमारे बारिश के जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स भी चेंज

0: हो रहे हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है। तो हमने क्या किया है कि अभी हम नेदरलैंड्स गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स काफ़ी देश दुनिया में माने जाते हैं कि उनको पानी मैनेज जो करना है उसको बहुत अच्छी तरह आता है। वो 8 साल से, अगर आप उस देश के बारे में सोचें, वो देश समुद्र के नीचे लेवल पे है, तो उन्होंने बहुत अरसों से पानी को मैनेज करना पे काम किया हुआ है। तो हम ये कर रहे हैं कि एक्सपर्टीज जैसे नेदरलैंड्स में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी देशों में है, उसको किस तरीके से जल्दी से भारतीय इंस्टीट्यूशंस के साथ मिला के थोड़ा सॉल्यूशंस देखे जाएं हमारे शहरों के लिए। अब जैसे हम शहर जब बना रहे हैं तो एक तो उसमें ड्रेनेज जो डालनी है, अगर हम उसको ढंग से डाल रहे हैं, उसमें उसका साइंस क्या है, वो सब उसको इम्प्रूवमेंट कुछ कर सकते हैं वो देखना है। कई जगहों पे आपको पूरा ड्रेनेज की डालने की जरूरत ना पड़े, और कोई इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। जैसे अब बैंकॉक ने एक पूरा पार्क बनाया है, पब्लिक पार्क, जो फ्लड के लिए भी काम आता है। इन्होंने इस पार्क को इस तरीके से बनाया है कि जब आपका पानी एक्सेस पड़ता है, बिकॉज बाढ़ क्यों आती है, बिकॉज आपको पानी की जगह नहीं है कहीं जाने के लिए, इन्होंने पार्क इस तरीके से बनाया है कि उसमें जब पानी एक्सेस है वो पार्क के अंदर जाके बैठ जाता है एंड धीरे धीरे धीरे चला जाता है, एंड जब वो बाढ़ की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती, वो पार्क है, लोग खेल रहे हैं वहां पर। सिंगापुर ने भी ये ट्राई किया है, न्यूयॉर्क भी ट्राई कर रहा है, काफी सूरत ने भी इनफैक्ट थोड़ा बहुत इस पे काम थोड़ा करना शुरू किया है। जब पानी को संभालना है शहरों में, उस पानी को किस तरीके से देखा जाए कि उसको सिर्फ ड्रेन में डाल के बाहर निकालना नहीं जाए, बिकॉज उसका कॉस्ट काफी होता है, और कोई भी तरीके हैं, जैसे इनको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के नाम पे ये पूरा एजेंडा है जो इस कि जो नेचुरल सिस्टम को समझ के अगर आप पानी को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सोच जो है वो हम धीरे धीरे इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से सीख के लाया जाए। और बाढ़ का काम अभी, क्योंकि हमारे शहर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, इस पे काफी अटेंशन हमने पे करना है, और एनडीएमए के साथ हम इस पे थोड़ा काम भी कर रहे हैं।
1: इनफैक्ट क्योंकि डॉक्टर वत्सा, हम अभी पानी की बात कर रहे हैं, और अगर मैं वापस जाऊं गुजरात पे, तो वहां पे एक तरफ सुजलाम सुफलाम और सोनी जैसी लार्ज स्केल वाटर इंटरवेंशंस हैं, और दूसरी तरफ चेक डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जैसे लोकल इंटरवेंशंस भी हैं। तो गुजरात का ये जो इंटरवेंशन है, गुजरात का जो ये मॉडल है, क्या देश में बाकी स्टेट्स भी इससे कुछ सीख ले रहे हैं?
2: सारी जगह जो है सो ये लोकल लेवल पर जो पानी की उपलब्धता है, फार्म पॉन्ड्स जो है ना, जिसको हम खेत में जो तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं और जिसके कारण जल का संवर्धन होता है, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है ना, और ग्राउंड वाटर को कैसे हम रिचार्ज कर सकें, इसकी ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसके कारण देखिए, इस साल भी हमारे यहाँ पानी काफी कम हुआ, बारिश काफी कम हुई इस साल, करीब करीब 15% का डेफिसिट था, लेकिन चूंकि स्थानीय स्तर पर सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही हैं, इसके कारण खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। मैं नहीं कहूंगा कि खेती पर असर नहीं पड़ा है, टोटल जो एरिया है खेती में उसमें 4-5% जो है मैं कह सकता हूं कि उस पर असर पड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से बारिश इस बार कम हुई उस हिसाब से खेती पर उतना असर नहीं पड़ा है। इसका कारण मुख्य ये है कि जो स्थानीय स्तर पर जल संवर्धन पर काफी ध्यान दिया गया है, इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। पेड़ लगाने पर, पेड़ों के लगाने से भी है ना, वो उर्वरता और जमीन की जो उपजाऊ संभावना है वो सब बढ़ती है। साथ साथ अभी हमने एनडीएमए की ओर से भी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम 12 राज्यों में शुरू किया है, जहां हम हर राज्य में 25,000 किसानों को हम मदद कर रहे हैं, जहां भी इस तरह की सूखे की स्थिति है, उस सूखे की स्थिति को निपटने के लिए किस तरह से हम उनके खेतों में हम ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था कर सके, उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध करा सके। तो एक वो किसानों की ओर एक तो ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा मैं कहूंगा कि स्थानीय स्तर पर सिंचन की व्यवस्था, उस पर भी काफी निवेश हुआ है और इसके अच्छे परिणाम आए हैं।
1: मिस्टर प्रोति, हमने पानी की बात करी, हमने बाढ़ की बात करी, अगर मैं सीडीआरआई का मॉडल समझूं, आपका मॉडस ऑपरेंडी जिसको कहते हैं वो समझूं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप कौन से नेचुरल डिजास्टर को रखते हैं, और उसके बाद उससे डील करने का तरीका क्या होता है?
0: सो आई थिंक पानी का सबसे बड़ा है।

0: अगर हमने डेटाबेस एक डाला है 3 साल पहले कि ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क किसका है, वो फ्लड्स का ही आता है, भूकंप का भी आता है, उसके बाद फिर साइक्लोन आता है, अब गर्मी का भी शुरू हो गया है, अब हीट वेव लेकिन एक्सट्रीम हीट। अब हीट वेव क्या होता है कि अब हमको पता है दिल्ली में गर्मी आती है 45-50 डिग्रीज का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, आपकी यू नो एसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, बिजली की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपका सिस्टम उस टाइम काम ना करे, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत, तो ये सब चीजें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लड्स तब भी सबसे आई थिंक 8 out of 10 आपके फ्लड्स के ही डिजास्टर सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन बाकी के भी जब भूकंप आता है तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है उसकी। जब भूकंप आता है वो कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर बहुत डिस्ट्रक्ट करते हैं। फ्लड्स रेगुलरली आ रहे हैं, उन पे डिस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, लेकिन उस पे अब काम इस तरीके से हो रहा है कि कल को पता है पानी में वेरिएबिलिटी आएगी, प्रेसिपिटेशन में वेरिएबिलिटी आएगी, उसको फ्लड और डिजास्टर ना हो पाए उस पे सोच अभी काफी चल रही है। एंड ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये बाहर देशों में भी इसी पे काफी फोकस आ रहा है। अब आपने यूरोप में भी देख लिया
1: गर्मी,
0: बट फ्लड, स्पेन में बहुत बड़ा फ्लड आया है। एक और चीज शुरू हो गई है वाइल्ड फायर, अभी अगेन हमारे भी स्पेन में भी आया है, पीछे लॉस एंजलिस में पूरा काफी शहर में भी। तो ये सब चीजों में जनरली ज्यादा अटेंशन हो रहा है, और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब पता लग रहा है कि वी आर नाउ 1 to 2 डिग्रीज वार्मर ग्लोबली में। पिछला साल सबसे गर्म साल था, उसके पहला साल उस सबसे गर्म साल था, तो ये इसकी वजह से वेदर पैटर्न्स भी चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये वाइल्ड फायर हो गया, अभी ग्लेशियल बेल्ट की भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। सो ये सब चीजें हो रही हैं, बट इस पे काम भी होने लग गया है काफी।
1: मिस्टर प्रोति, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, जैसे अभी ब्रिक्स का समिट खत्म हुआ, उसके अलावा भी एससीओ मीटिंग हुई, काफी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और सारे जैसे आपने देशों का नाम लिया, हर कोई नेचुरल डिजास्टर से परेशान है और समाधान ढूंढ रहा है। तो अगर हम मल्टीलैटरल फोरम्स की बात करें तो वहां भारत का नेतृत्व कैसा है, और उसके साथ साथ हमें आगे जाके कोई हमने क्या डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है कि सारे देश एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करेंगे, या ये एक अनसेड रूल है कोई
0: है? और मैं चाहूंगा कि कृष्ण जी भी इस पे आके तरह बात करें। हम सब देशों ने एक सेंडाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है, ये एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम सब देश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करेंगे। ये ऑलरेडी है, G20 हुआ था भारत में, उस टाइम भारत ने G20 फोरम में बोला कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मुद्दा में एक वर्किंग ग्रुप डालेंगे। इंडिया ने लीडरशिप ली, उसके बाद ब्राजील ने उसको फॉलो किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलो किया, और CDRI को इस गर्व से मैं बोलूंगा कि हम 7 साल भी नहीं हुए हमें एस्टैब्लिश हुए, लेकिन हम इन तीनों फोरम में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन सब ग्रुप्स के नॉलेज पार्टनर थे। अब आगे अगले साल सेंडाई पे भी चर्चा हो रहा है कि सेंडाई को भी अब थोड़े टाइम आ चुका है, उसको फिर से देखना है कि एग्रीमेंट में चेंज आए, इसमें भी अब भारत लीडरशिप दिखा रहा है। और सेंडाई का एक टारगेट है, 4 टारगेट्स में से एक टारगेट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, उसमें हम जरूर भारत के साथ काम करके और बाकी देशों के साथ काम करके बोलेंगे कि इसमें क्या एग्रीमेंट दिखना चाहिए, ताकि अगले जो 10 साल है उस पे किस टाइप से फोकस हुआ जाए, उस पे हम जरूर अपनी नॉलेज लाएंगे वगैरह, उसको सपोर्ट करेंगे।
2: तो ये जो है कई क्षेत्रों की ओर अमित जी ने अपना ध्यान खींचा है। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट फायर पर, तो फॉरेस्ट फायर के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम शुरुआत की है, अभी वो है ना 15 राज्यों में वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो हमने जो है फॉरेस्ट फायर के इमीडिएट रिस्पांस के लिए और उनके जो लॉन्ग टर्म जो मिटिगेशन है उसके लिए, दोनों के लिए को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर का जो स्वरूप आपको कई देशों में बाहर दिखने को मिल रहा है, भारत में इसमें काफी कमी आई है और काफी नियंत्रण हमने किया है। जैसे हमारे एनडीआरएफ के बटालियंस अभी इसके लिए ट्रेंड हैं, हम जो फॉरेस्ट में वाटर बॉडीज को क्रिएट कर रहे हैं, हम फायर लाइंस को और इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इन सब के कारण ये जो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंडियन एयरफोर्स अब मदद करती है, जब भी

0: भी फॉरेस्ट फायर होता है और एक विशेष सीमा से बाहर जब चला जाता है तो इंडियन फोर्स की, तो हमारा फॉरेस्ट फायर पर थोड़ा बेहतर नियंत्रण हुआ है ये मैं कहूंगा। हीट वेव की बात हो रही है कि तापमान बढ़ रहा है, तो हीट वेव पर भी हम आज हमारे पास 300 से ज्यादा हीट एक्शन प्लान्स हैं पूरे देश में, कई शहरों ने बनाए हैं, कई जिलों ने बनाए हैं, करीब करीब 23 ऐसे राज्य हैं जहां हीट वेव होती है, लू की घटनाएं होती हैं ज्यादा, तो उन सबों ने ये हीट एक्शन प्लान बनाया है। तो हीट एक्शन प्लान के कारण भी थोड़ी जन जागरूकता बढ़ी है, लोगों का थोड़ा इस पर ध्यान गया है, प्रशासन का स्थानीय स्तर पर ध्यान गया है, और इसके कारण जो हीट वेव के कारण जो होने वाली जो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम है उसमें थोड़ी कमी आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि है ना हम बिल्कुल हमें, लेकिन सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा हमारा इस पर हमें सफलता मिली है और हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। और इसका मुख्य कारण इन सब चीजों का ये है कि एक थोड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक मिटिगेशन फंड हमने बनाया, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर मिटिगेशन फंड बनाया, तो हम सिर्फ अब जो है रिस्पांस की ओर नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम जो दीर्घकालिक उपाय हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं। और ये सब बहुत हाल के वर्षों में हुआ है, ये पिछले 5-6 वर्षों में 7 वर्षों में ये सब कुछ हुआ है, और इसके कारण जो है हम सारे आपदाओं से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्यान है और इसमें है ना माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया है कि उन्होंने इस मिटिगेशन फंड के लिए जो आवश्यक निधि है वो उसकी ओर उनका हमेशा समर्थन रहा है, और हम सारे डिजास्टर्स के लिए एक हम लॉन्ग टर्म हमने अप्रोच लिया है, और उसी अप्रोच के तहत CDRI की भी स्थापना हुई है जिसके माध्यम से हम जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनको किस तरह से हम ज्यादा रेजिलिएंट कर सकें, ज्यादा मजबूत कर सकें, सक्षम कर सकें, इसकी ओर हमारा ध्यान है। तो जो भी है जो भी प्रकल्प बन रहे हैं उस प्रकल्प में हम किस तरह से जो रिस्क हैं उन रिस्क को फैक्टर करें, उन रिस्क को असेस करें और उन रिस्क के लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो किए जाएं। अभी देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके कारण जो है सो ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, तो ग्लॉफ जैसी घटनाएं जो अभी नेपाल में हुई है, तो ग्लॉफ के लिए भी हमने एक प्रोग्राम लिया है अभी, तो हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं जो हिमालयन राज्यों में सबका हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, सबकी हम मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ वर्षों में हम सारे जो ग्लेशियल लेक्स हैं सब में हम अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकें, सब में हम मिटिगेशन का कार्यक्रम कर सकें, सबको एक सारे लेक्स को इकट्ठा करके एक हम ऐसा नेटवर्क स्थापित कर सकें जिसके माध्यम से हम सारे लेक्स की अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है कि हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच रखें ताकि हम आपदाओं पर हमारा एक बेहतर नियंत्रण रह सके।
1: जितना मैं आपकी बात से समझ पाई हूँ कि अब साइलोज में काम नहीं होता, लोग सारे डिपार्टमेंट साथ आके काम करते हैं। बात हमने 2001 गुजरात अर्थक्वेक से शुरू की थी और चलते चलते बहुत ही ब्रीफ पार्टिंग कमेंट्स में आप दोनों से लेना चाहूंगी। कोई भी आपदा होती है जैसे मैंने शुरू में भी कहा था आम इंसान इम्पैक्ट होता है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, उस पर भी क्या कोई काम हो रहा है?
0: हमारे यहाँ एक हम अभी 12 राज्यों में इस पर कर रहे हैं काम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की मदद से साइकोसोशल काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। हमने अभी सिक्किम में जब ग्लॉफ हुआ था तो भी उस समय भी हम वहां हम गए थे और वहां लोगों को जो जिस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए उसके लिए हमने प्रयत्न किया था, और लोकल लेवल पर किस तरह से हम काउंसलर्स और हम ज्यादा कर सकें ताकि ये सब चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने काउंसलिंग दे दी तो हो गया, हर स्टेट में काउंसलिंग के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए। तो हमारा ये प्रयत्न है कि हम हर राज्य में इस तरह का एक सिस्टम बनाएं और सब जगह आपदाओं के बाद होने वाले जो इस तरह के ना मानसिक स्वास्थ्य पर जो परिणाम होते हैं उसके लिए अभी हम प्रयत्न कर सकें।
1: डॉक्टर,
2: हम एक्चुअली स्कूल्स को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी जैसे गर्मी की वजह से, और ये हमने गाइडलाइंस बनाई हैं ताकि जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर देशों में भी, कि जैसे स्कूल जैसे जगह को आप किस तरीके से, एक तो उस पर गर्मी कम आए, तो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई जाए।

0: है कि उसमें अगर बाहर का तापमान बहुत गर्म है, अंदर उसको कैसे गर्मी से बचाया जाए? आप कैसे बच्चों को सिखाएं कि पानी ज़्यादा पीजिए या बाहर मत खेलिए या थोड़ा उसमें शेडिंग के साथ काम करिए? तो हमने ये गाइडलाइंस निकाली है ताकि स्कूल जैसी संस्था को गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिन पे किस तरीके से वो उसका तापमान या उसका एटमॉस्फेयर अंदर ऐसा रह जाए और बिहेवियर जो बच्चों का है ऐसा रहे कि वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि जाके बाहर खेल रहे हैं गर्मी में या पानी नहीं पी रहे हैं, या अगर आपका बॉडी में थोड़ा गर्मी आ रही है तो किसी को बता रहे हैं कि थोड़ा कुछ ध्यान दे दीजिए। उस पर अटेंशन हमने फोकस ज़्यादा किया है स्कूल्स पे। सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स पे भी करेंगे क्योंकि हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। हम ये सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इसमें जो यूसेज है दोनों को किस तरीके से देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम तंगी आए और जो यूज़ उसको कर रहा है उसको भी इन चीज़ों के बारे में ऐसी समझ है कि वो अपने बिहेवियर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में ना जाए। सो इस तरीके से कोलिशन देख रहे हैं कि जैसे गर्मी के चक्कर में स्कूल्स हो गए, मेट्रो हो गए, ऐसे ही हम अटेंशन दे रहे हैं जिसमें बच्चों पे एक बहुत एंड ऑफ द डे बच्चे हमारे यूज़ करते हैं ये सिस्टम्स, तो उनको भी सिखाया जाए कि ऐसे बिहेवियर कैसे आप ध्यान दें, कैसे इस पे आप कंट्रीब्यूट करें कि अगर गर्मी का दिन है कि बाकियों को देख लीजिए। सो इस पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं।
1: डॉक्टर कृष्णा एस वत्सा एंड मिस्टर अमित रोथी, आप दोनों आकाशवाणी के स्टूडियो में आए। बात हमने डिजास्टर से शुरू की थी लेकिन अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और वही आज के हमारे प्रोग्राम की थीम भी थी, समस्या से समाधान तक। आप दोनों से बातचीत करके हमें काफी कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस स्पेशल एपिसोड ऑन आकाशवाणी।
2: थैंक यू सो मच।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 11वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा संकट से समाधान तक। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर KS वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के महानिदेशक अमित प्रोथी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
0: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है
3: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
0: आई नो ना
3: आरबीआई कहता है
4: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: नमस्कार आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते भारत के 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित कुल 37 पदक अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं

0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देशभर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है।
1: प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बार लाल किले से खेलों के लिए प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि आने वाले त्योहारों को लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ मनाएंगे। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज गिराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट सहित कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों की लागत लगभग 214 करोड़ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से सड़क, सीवेज और ड्रेनेज से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।
2: बादली विधानसभा में भी लगभग 160 करोड़ के काम चल रहे हैं। रिठाला में हमारे 328 करोड़ के काम संसदीय क्षेत्र में चल रहे हैं। 609 करोड़ के काम मात्र मुंडका में चल रहे हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के चुनाव आयोग और देश की चुनावी प्रक्रिया पर आरोपों का खंडन किया है। राजधानी में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की मंशा जनता को गुमराह करना और देश में ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे लोगों का ध्यान देश और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों और विपक्ष की अपनी नाकामियों से हटकर अनावश्यक विवादों की ओर चला जाए।
4: देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। आज वो लोग बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और चुनाव आयोग के काम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, आज जिस ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, क्या उनकी सरकारों के समय में ऐसा हो पाता था?
0: मुख्यमंत्री ने फॉर्म 6 पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट BLA को चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ समन्वय कर पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने के निर्देश दिए। श्री मल्होत्रा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर विपक्ष के सवालों के बारे में कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की जगह तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने आज 501 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है। महापौर प्रवेश वाही ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महापौर ने बताया कि इससे पहले निगम ने 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया था। गृह मंत्री अमित

0: ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं के लिए जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी सनातन संस्कृति के प्रखर संवाहक, हिंदू समाज के संगठन और जागरण के लिए जीवन समर्पित करने वाले अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें नमन किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे।
2: कृषि और किसान कल्याण विभाग रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर विमर्श करेंगे। पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं सरफिरोजी।
0: पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग कल नई दिल्ली में पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा कि ये पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। इससे पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमित पशुओं के मामले में नीति जारी करने, दावों का निपटारा, निगरानी की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो सकेगी। पोर्टल पर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी के साथ 11 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। इससे पशुपालकों को उनकी अपनी भाषाओं में जानकारी और सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 560 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके असली मालिकों को लौटाया। मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस थानों में विशेष टीमें गठित की गई थी। इन टीमों ने द्वारका जिला मॉनिटरिंग सेल के साथ मिलकर लगातार काम किया। पुलिस ने मोबाइल फोन को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच, फील्ड वेरिफिकेशन और अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय किया। वहीं द्वारका जिला पुलिस के अनुसार इस वर्ष अब तक 2000 से अधिक खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी जिला पुलिस ने आज कम्युनिटी पुलिसिंग पहल के अंतर्गत जिला स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा उन्हें नशा और अपराध जैसी असामाजिक गतिविधियों से दूर रखना था। इस प्रतियोगिता में महिला कबड्डी टीम ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मंजीत छिल्लर ने खिलाड़ियों को अपने अनुभव साझा कर प्रेरित किया। साथ ही प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वॉश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी शंकर ने डिकैथलॉन में 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता बद्रा ने महिलाओं 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पदक तालिका में चीन 118 स्वर्ण समेत 204 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अवसर पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विविधता में एकता का प्रतीक भारत और पधारो हमारे देश की भावना से परिपूर्ण राजस्थान आज विश्वभर के पर्यटकों की पहली पसंद है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि अब पर्यटन अलग अलग स्थानों की यात्रा करना मात्र नहीं है, बल्कि ये रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में बच्चे और युवा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं की इस पहल को जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कई क्षेत्रों में 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू। और एशियाई खेलों में आज भारत ने 7 पदक जीते। भारत के 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
8: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
7: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत

वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और

0: यादव ने आज उज्जैन में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दशहरा मैदान में पंख मैराथन को झंडी दिखाई और वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों के अंतर्गत शहर में सड़कों को चौड़ा करने के अभियान की शुरुआत की। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा और उज्जैन दर्शन बस सेवा की भी शुरुआत की। उन्होंने 172,87,00,000 रूपये की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामले में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि तकनीक या एआई किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही प्रगति के बीच मानवीय करुणा का कोई विकल्प नहीं है। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में एसयूटी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। जापान के आईजी नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कोशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य पदक समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 23 ओवर में 1 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control to take action against terrorism.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: The Prime Minister also mentioned Mahatma Gandhi's birth anniversary, which will be celebrated on the 2nd of October. He said cleanliness is one of many guiding principles for life given by Bapu. Vice President C.P. Radhakrishnan has said technology cannot replace the human touch of a medical doctor. He emphasized the importance of compassion among doctors in an era of rapid progress in AI and digital health. Mr. Radhakrishnan was addressing the graduation ceremony of SUT Academy of Medical Sciences in Thiruvananthapuram today. He urged young doctors to be clear and precise in their communication. The Vice President pointed out that Vikasit Bharat can only be achieved when every village is developed. Defence Minister Rajnath Singh today stated that India does not seek to occupy any country's territory but will safeguard its security and strategic autonomy when threatened. Addressing a defence conclave organised by a media house in New Delhi, the minister emphasised that India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister underlined that there can be no scope for dialogue with any country that promotes terrorism against India. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah inaugurated and laid the foundation stone for a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees in Sabarmati in Gujarat today. Mr. Shah, along with Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, also flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati station. Addressing a public gathering, Mr. Shah said, annual diesel consumption by the railways has declined from 293 crore litres to 108 crore litres, while efforts are continuing to eliminate diesel use completely. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जी

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. We now bring you program Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani. Ye Akashvani hai. Prastut hai Akashvani Archives ke sahyog se nirmit saptahik karyakram Swar Dharohar. नमस्कार श्रोताओं, स्वर धरोहर कार्यक्रम में मैं आशुतोष
1: और मैं श्वेता आपका स्वागत करते हैं।
0: श्रोताओं, भारत के संगीत इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो समय बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में गूंजती रहती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी गायिका बेगम अख्तर की।
2: सुनने वालों को बेगम अख्तर का सलाम। आज तक मैं आपके सामने सिर्फ एक गायिका के रूप में ही हाजिर हुई हूँ। आपसे बातें करने का मौका तो मुझे पहली बार ही मिला है, इसलिए ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फजाएं संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फन और फनकार से मोहब्बत करते हैं।
1: उनकी गायकी में दर्द था, मोहब्बत थी और थी सच्चाई। हर गजल, हर ठुमरी में उनकी जिंदगी की कहानी झलकती थी। फैजाबाद की गलियों से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें ले गया देश और दुनिया के मंचों तक। आज हम जानेंगे बेगम अख्तर की कहानी, जिन्होंने अपने सुरों से गजल गायकी को एक नई पहचान दी और बन गई गजल की मल्लिका।

0: बेगम अख्तर का असली नाम अख्तरी बाई फैजाबादी था। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मां का नाम मुश्तरी बाई था। बेगम अख्तर के पिता असगर हुसैन एक वकील थे।
1: अख्तरी बाई का बचपन संघर्षों से भरा था। जब वो छोटी थी उनके पिता घर छोड़कर चले गए। उनकी मां ने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें पाला। उनके घर में आग लग जाने के कारण उन्हें अपना घर भी छोड़कर जाना पड़ा था।
2: ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ का जमाना था। इसी जमाने में न जाने किसने हमारे घर में आग लगवा दी। घर का रहा सहा जो कुछ भी था जलकर राख हो गया। हमें आज भी याद है कि जब घर में आग लगी थी तो हम दूसरे चबूतरे पे बैठे रो

0: रहे थे और ये सोच रहे थे कि हमें फैजाबाद छोड़ देना है। इसने हमें फैजाबाद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गया में हमारे माँ के मुंह बोले भाई यूसुफ हुसैन साहब रहते थे, हम उनके पास गया चले गए, हम उन्हें मामू जान कहा करते थे।
1: बचपन से ही अख्तरी बाई को संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद इमदाद खान से ली। इनके बारे में अख्तरी बाई ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: हमारे सबसे पहले उस्ताद पटने के इमदाद खान साहब थे। उस्ताद तालीम यूं दिया करते थे, सारंगी छेड़ी और कहा शुरू हो जाओ। मुझे याद है कि उन्होंने कामों से शुरू कराया था। बोलते हूँ तो जनमन छांडो, उस्ताद चाहते थे कि हम भी उसी तरह कहें। हमसे बनता नहीं था, वो उलझते थे और मुझे खामखा उलझन हुआ करती थी। 6 महीने में हमने उनका और उन्होंने हमारा नाक में दम कर दिया।
2: अख्तरी बाई ने आगे चलकर उस्ताद अता मोहम्मद खान और उस्ताद वाहिद खान से भी संगीत सीखा। इन उस्तादों ने उन्हें दिन रात सख्त रियाज कराया। इसी लगातार अभ्यास और मेहनत के कारण बेगम अख्तर ने मुश्किल से मुश्किल रागों और गायन शैलियों में भी महारत हासिल कर ली। उनकी आवाज में वो गहराई आ गई जो उन्हें बाकी गायिकाओं से अलग बनाती थी।
0: मैं 10-11 बरस के सिन में वहाँ कलकत्ते में थी तो खान साहब अता मोहम्मद खान पटियाले वाले, उनसे सीखने के लिए कोशिश की गई, मेहरबान हो गए और उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे सिखाया। जाड़े के जमाने उसमें 3 बजे रात को वो उठाते थे और 10-11 बरस के सिन ही क्या होता है, उसमें वो उठा के बिठा देते थे और तानपुरा मिला करके सामने रख देते, तो आंख बंद रहती थी, आंख खुलने भी नहीं पाती थी। हालत आखिर में ये हो गई थी, सो रही हूँ और उन्होंने आवाज दिया, मेरा नाम लेके पुकारा, उठो। बस तकिए के ऊपर से सर उठा के आंख बंद और करते हुए उठते थे। उसके बाद एक राग, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो शुरू कराया उन्होंने, उसकी अस्थाई याद कराई, तो वो मुझे पसंद नहीं था वो राग, मजबूरन उनके वो उनकी जिक नहीं, तुमको ये सीखना हुक्म था। मैंने कहा खान साहब मुझसे नहीं होगा, अब वो किसी सूरत से याद ही ना हो, वरना पूरी पूरी अस्थाइयाँ 15-20 मिनट में वो ठीक करा देते। अन्य माशाल्लाह बताने का ये ढंग उनको मालूम था, खैर हमने इनकार कर दिया। उसके ऊपर वो खफा हो गया कि अब मैं बताऊंगा नहीं, गाने ही नहीं बताऊंगा जो तेरा जीता का। खैर अब क्या करें, अब हम तानपुरा लिए बैठे आवाज लगा रहे हैं, ताने ठीक कर रहे हैं जो बताई हूँ, जो पलटे बताए हैं। बड़ी खुशामद की, कहने कहनी जब तक तू अस्थाई नहीं याद करेगी उस वक्त तक मैं गाना नहीं बताऊंगा। मजबूरन मुझको अस्थाई याद करना पड़ी, माफी मांगना पड़ी, खुशामद करना पड़ी, याद करके फिर वो खुश हुए।
1: रियाज के प्रति उनकी लगन और समर्पण ने उन्हें कम उम्र में ही मंच पर पहुंचा दिया। सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में अख्तरी बाई ने पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति दी। उन्होंने स्टेज पर दी गई अपनी पहली प्रस्तुति के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं।
0: सबसे पहली दफा मैं जो स्टेज पे आई, बिहार में जलजला जब आया था, अच्छा खासा जलजला आया था। उस जमाने में मैंने ये बिहार रिलीफ फंड के लिए प्रोग्राम किया था और जितने कलकत्ते में सब आर्टिस्ट थे सबको इनवाइट किया, मगर मौके के ऊपर कोई नहीं आया। सबने क्योंकि वो चैरिटी के लिए था लिहाजा उनका तो कोई फायदा था नहीं, लिहाजा उन्हीं शरीक हुए। आई गई सब हमारे सर पे गई, टिकट वगैरह फरोख्त हो चुके। हम इस कदर परेशान, इतने परेशान कि हम आपको बता नहीं सकते। आखिर में हम रोने लगे, हमने कहा कि हम कैसे, हमने आज तक स्टेज पे गाया नहीं, हम कैसे गाएंगे। तो जो मुंतजिम थे उन्होंने कहा आप खड़े होकर अनाउंस कर दीजिए कि मैंने जिन जिन लोगों को बुलाया था वो लोग नहीं आए, लिहाजा मैं उनके एवज या उनके बदले में आपको 2 गजलें सुनाई देती हूँ। पहुंचे साहब स्टेज पे, बड़ी पब्लिक वहाँ जमा और हम स्टेज के ऊपर थर थर थर थर, हाथ पैर हमारे कप रहे थे, या अल्लाह कैसे गाएंगे हम। हमारे उस्ताद अता खान साहब मौजूद थे, उस्ताद ने हमारे कहा था ठुमरी गाना पहले उसके बाद गजल गाना, हमने मारे घबराहट के पहले गजल शुरू कर दी। अब गजल जो शुरू की तो गजल चूंकि अच्छी थी और लोग समझदार थे बहुत से, उन्होंने दाद देना शुरू की और उसमें जी लगने लगा। अब वो थरथराहट और वो ठंडे हो चुके थे, उसमें जरा इत्मीनान हुआ दिल को भी। हम गाते रहे, एक गजल गाई उसके बाद फिर तालियां बजने लगी, फिर दूसरी गजल गाई, उसके बाद फरमाइश हुई दादरा गाओ, दादरा गाया, उसके बाद फिर फरमाइश हुई ठुमरी गाओ, फिर ठुमरी गाओ। तो आप यकीन जानिए कि 2.5 घंटे मुसलसल पहली दफा स्टेज के ऊपर हम अकेले और कोई नहीं, बस इसी तरह चिल्ला चीख के वहां से उठ के चले आए, अल्लाह ने कामयाब कर दिया।
2: अख्तरी बाई ने कई नाटकों में भी काम किया जिसमें वो गाने के साथ अभिनय करती थी। उन्हें बाद में कोलकाता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी में काम करने का मौका मिला और जल्द ही वो फिल्मी दुनिया में भी पहुंच गईं।
1: उन्होंने एक दिन का बादशाह, मुमताज बेगम, अमीना, नसीब का चक्कर, रोटी जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। रोटी फिल्म काफी मशहूर हुई जिससे बेगम अख्तर को काफी शोहरत मिली, लेकिन फिल्मों की दुनिया उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई और वे लखनऊ वापस लौट आईं।
2: बेगम अख्तर को सुकून तब मिलता था जब वो मंच पर राग ठुमरी या गजल गाती।

0: थी। अपनी गजलों की संगीत रचना वो स्वयं किया करती थी। 1945 में अख्तरी बाई ने बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से विवाह किया। शादी के बाद वो बेगम अख्तर के नाम से जानी जाने लगी। शादी के बाद उन्हें गाने से रोक दिया गया था। कई सालों तक उन्होंने संगीत से दूरी बनाए रखी, लेकिन गाने से दूरी ने उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला।
1: हमारी तो यह हालत थी कि गाना तो दरकिनार हम गुनगुनाना भी भूल गए थे। ऐसा लगता था कि कुछ खो गया है।
0: डॉक्टर ने उन्हें दोबारा गाना गाने की सलाह दी।
2: बेगम अख्तर ने ये सलाह मानी और घर पर ही उन्होंने संगीत सिखाना शुरू किया।

0: 1949 में उन्होंने लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो से फिर से अपने गाने की शुरुआत की। उन्होंने फिर मंचीय कार्यक्रमों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी गजलें ठुमरी दादरा देश भर में लोकप्रिय हो गए। ठुमरी के बारे में बेगम अख्तर ने कहा था,
1: हम समझते हैं ठुमरी ख्याल और राग दोनों से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि ठुमरी गाने में सिर्फ सुर और लय का ही ख्याल नहीं रखना पड़ता, बोलों का भी रखना पड़ता है, बोलों की अलग अलग कैफियत का भी रखना पड़ता है। यही नहीं, पूरी बंदिश जो मजमूई कैफियत जो उस मखसूस ठुमरी का मिजाज है, यहाँ तक कि जिस राग में उसे गाया जा रहा है या जिन जिन रागों का उसमें पुट दिया जाता है, उनका भी रखना पड़ता है। हम तो यही समझते हैं कि इंसान की तरह ठुमरी के भी एक धड़कता हुआ दिल होता है, जो इन धड़कनों को जान समझ लेगा वही उन्हें सुर और लय के नपे तुले बोलों में ढाल सकेगा और वही हर सुनने वाले को तड़पा देगा।
2: बेगम अख्तर की कुछ प्रसिद्ध गजलें हैं, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पर रोना आया, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, और हमारी अटरिया पे आओ सावरिया। उनकी गायकी में सादगी और गहराई दोनों थी, हर शब्द को वो महसूस करके गाती थी।
0: उन्होंने उर्दू शायरी को आम जनता तक पहुंचाया। मिर्जा गालिब, फैज और मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी को उन्होंने अपनी आवाज से अमर बना दिया। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में मिर्जा गालिब की एक गजल।

0: बेगम अख्तर को लोग प्यार से मलिकाए गजल कहा करते थे। उन्हें उनके अद्भुत गायन के लिए कई सम्मान भी मिले। वर्ष 1968 में पद्मश्री, 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1975 में मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया।
1: जीवन के आखिरी दिनों में भी वे गाती रहीं। 30 अक्टूबर 1974 अहमदाबाद में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष थी। उनके निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। श्रोताओं, भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर कई संगीत पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
0: बेगम अख्तर की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि

0: संघर्ष, हिम्मत और आत्मा की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि एक औरत भी समाज की सीमाओं को तोड़कर दुनिया को अपनी आवाज से जीत सकती है।
1: इतनी गुजारिश जरूर करूंगी, अच्छी हिंदुस्तानी मूसीकी को सुनने, समझने और पेश करने की सलाहियत पैदा कीजिए। अपनी खिदमात के बदले यही मैं आपसे चाहूंगी। आदाब।
2: स्वर धरोहर में आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। You were listening to the weekly program Swar Dharohar, based on the archival inputs of Akashvani. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
3: आप सुन रहे थे Akashvani Archives के सहयोग से निर्मित साप्ताहिक कार्यक्रम Swar Dharohar। ये कार्यक्रम Akashvani के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट धर्मेंद्र मणि राजेश। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।
1: सिद्धार्थ, एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
0: जी हाँ, नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के आठवें दिन आज भारत ने 4 रजत सहित 7 पदक जीते।
1: एथलेटिक्स में एनसी सोजेन ने महिला लॉन्ग जंप और सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक जीते। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज, पुरुष डेकाथलान में तेजस्वी शंकर और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, दक्षिण कोरिया से होगा मुकाबला।
1: बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल जीतकर पदक पक्के किए।
0: समरकंद में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम को रजत और महिला टीम को कांस्य पदक मिला।
1: और क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य।
0: और श्रोताओं, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां आज का दिन भारत के नाम रहा। एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीता।
2: एशियाई खेलों में आज एनसी सोजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। उन्होंने कहा कि मुकाबला बेहद कठिन था, लेकिन देश के लिए रजत पदक जीत कर भी खुश हूँ। वे महज 2 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक से चूक गई। सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उन्होंने 2.25 मीटर की जंप के साथ ये मेडल हासिल किया। वहीं महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में पारुल चौधरी को कांस्य पदक मिला। उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 9:08.67 में रेस पूरी की। पुरुष डिकैथलन स्पर्धा में तेजस्वी शंकर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता की अंतिम स्पर्धा में 1500 मीटर दौड़ में जीत दर्ज करके ये पदक हासिल किया। उधर हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हरिता ने 23.20 का समय निकालकर कांस्य पदक अपने नाम किया। हरिता ने अपने इस पदक के लिए कोच और परिवार का धन्यवाद दिया। भारत ने इस स्पर्धा में पिछली बार 2018 एशियन गेम्स में दूती चंद के कांस्य पदक के रूप में पदक जीता था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: धर्मेंद्र, आप पूरे इवेंट पर नजर बनाए हुए थे एथलेटिक्स में, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉन्ग जंप स्पर्धा से, जहां पर जिस तरीके से आज एनसी सोजन ने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे?
1: कमाल का प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन की जितनी भी तारीफ की जाए सिद्धार्थ बेहद कम है। 5
0: जी,
1: जब वो जंप वो लगा चुकी थी तब वो लगातार आगे बनी हुई थी और लग रहा था कि गोल्ड मेडल हमारा पक्का हो चुका है, लेकिन वो छठा जंप जहां पर चीनी खिलाड़ी ने अपना सब कुछ झोंक दिया और सिर्फ 2 सेंटीमीटर के अंतर से वो स्वर्ण पदक हमारे हाथ से छीन लिया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल पर भी हमारी तगड़ी दावेदारी थी, वहां पर भी चीनी खिलाड़ी अंतिम छलांग में हमारी खिलाड़ी से आगे निकल गई।
0: जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो हम एकदम क्लोज थे गोल्ड की, और वो मायूसी, हालांकि रजत पदक मिला हमें, हमें खुशी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर इतना कम था, वो मायूसी हमने आपके चेहरे पर देखी। और जिस समय लाइव मैच चल रहा था, हम सभी का ध्यान उस पर लगा हुआ था, और ये लग रहा था कि आज कम से कम भारत एक गोल्ड तो जीतेगा ही।
1: जी बिल्कुल, उस समय तो ना उम्मीदी की कोई बात थी ही नहीं। 6 जंप में से 5 जंप में आप लगातार आगे बने हुए हैं और इतना लाजवाब प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का फासला 5वें जंप तक था भारतीय खिलाड़ी के पक्ष में, लेकिन वो अंतिम जंप बहुत कमाल का चीन की खिलाड़ी ने भी लगाया। लेकिन जो भी हो, प्रदर्शन जो एनसी सोजेन ने किया है वो कमाल का प्रदर्शन किया है, और बहुत सारी उम्मीदें इस जंप के बाद हमें जगती हैं। और अब तो ओलंपिक की भी उम्मीद हमें मेडल की दिखने
0: लगी
1: है।
0: बिल्कुल, और जैसा कि उन्होंने अपने जीतने के बाद भी एनसी सोजन ने कहा था कि मुकाबला बेहद कठिन था लेकिन देश के लिए रजत पदक जीतकर मैं बहुत खुश हूं। और इसके बाद धर्मेंद्र नजर डालते हैं सर्वेश कुशारे के प्रदर्शन पर, जिन्होंने 2.25 मीटर की जंप के साथ जो मेडल हासिल किया, इनका भी प्रदर्शन काफी बेहतरीन था।
1: अरे ये तो गोल्ड मेडल के ही दावेदार थे, ये सिर्फ कह सकते हैं कि लक की वजह से गोल्ड मेडल नहीं जीत सके। जो वो जंप था 2.25 मीटर का, इनके जो कंपटीटर थे उन्होंने भी उतना ही जंप लगाया और गोल्ड मेडल जीता। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पहली बार में ही वो डिस्टेंस क्लियर कर लिया था
0: और काफी क्लीन
1: जी का, और सर्वेश कुशारे जो है वो दूसरी बार में वो हाइट क्लियर कर सके, इसकी वजह से गोल्ड मेडल से चूक गए।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही यहां पर बात करनी होगी पारुल चौधरी की, जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चीज स्पर्धा में उन्होंने आज कांस्य पदक देश को दिलाया।
1: जी पारुल चौधरी ने भी कमाल की दौड़ लगाई, लगातार वो जो तीन खिलाड़ी थी एक लय में बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी वो रेस जीत सकता है। हालांकि अंत में पारुल चौधरी थोड़ा सा सुस्त हुई और वो गोल्ड से चूक गई, कांस्य पदक पर जरूर उन्होंने कब्जा किया।
0: जी, और डेकोथलॉन में भी जिस तरह का तेजस्विन शंकर ने आज प्रदर्शन किया है वो भी काबिले तारीफ है।
1: तेजस्विन शंकर की अगर हम बात करें तो कल तक का उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन था, नंबर वन चल रहे थे। आज जो इवेंट्स उन्होंने किए उनमें वो उस तरह का प्रदर्शन कंटिन्यू नहीं कर सके जिसकी वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल पर फिसल गया, अन्यथा कल तक ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ण पदक एक और भारत को दिलाएंगे।
0: बिल्कुल, और हरिता भद्रा ने भी काफी सुर्खियां बटोरी जिस तरह से 200 मीटर दौड़ में जो उन्होंने 23.20 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक देश के नाम किया, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा
1: जी, बहुत तारीफ के काबिल है। आपने बताया भी कि दुती चंद के बाद उन्होंने एक मेडल दिलाया है भारत को। 200 मीटर की दौड़ इतनी आसान होती नहीं और ये हमारा पारंपरिक इवेंट रहा भी नहीं है, तो हरिता भद्रा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है बहुत सारी उम्मीदें वो भी जगा कर गई हैं।
0: एशियाई खेल में आज पुरुष और महिला सिंगल्स स्क्वैश के फाइनल में अनहस सिंह और अभय सिंह ने रजत पदक हासिल किया, ये सुनते हैं की रिपोर्ट।
2: अठारह वर्षीय अनाहत सिंह स्क्वाश में भारत की पहली वुमन सिंगल सिल्वर मेडलिस्ट बन गई हैं।
3: I'm quite happy with the silver medal. It's my second time playing the individuals and yeah, just getting to learn from this and be at this stage is something that's very exciting for every athlete and also getting a medal on top of that is something I'm quite happy about.
2: हालांकि अनाहत को फाइनल में मलेशिया की मौजूदा चैंपियन शिव संगरी सुब्रमण्यम के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अनाहत ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने का पहला मौका भी चूक गई, क्योंकि सिंगल्स इवेंट के विजेता को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए कोटा मिलना तय था जहां स्क्वाश पहली बार शामिल हो रहा है। इससे पहले अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स का रजत पदक देश के नाम किया।
4: Quite disappointed. I wanted to go all the way, but sport doesn't work that way. So I think I played pretty well in the first. I think we were quite toe to toe, but I think he started playing better squash in the second. He found the ball. He put the ball in very good areas. Very clean squash. Moved well. Like I said, all credit to him. I think he was the better athlete today.
2: फाइनल मुकाबले में अभय सिंह को मलेशिया के मौजूदा चैंपियन एनियो एनजी ने मात दी। ये स्क्वाश में भारत का दूसरा पदक रहा। अभय सौरव घोषाल के बाद इस इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। अनाहत सिंह और अभय सिंह की ऐतिहासिक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।

0: एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुड्डा ने क्वार्टर फाइनल जीतकर भारत के लिए दो और पदक पक्के कर दिए हैं। अंकुश ने पुरुष 80 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव और परवीन ने महिला 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की नवाबहोर खामिदोवा को 5-0 से हराया, लेकिन सचिन सिवाच पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर हो गए।
1: और सिद्धार्थ, आपको तो पता है कि तीरंदाजी हमारा पारंपरिक खेल रहा है, हमारे धनुर्धर महाभारत काल से ही कमाल करते रहे हैं और आज भी तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने और पूरी टीम की अगर बात करें तो कमाल का प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में पुरुष टीम ने चीन को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। महिला टीम ने चीनी ताइपे को 6-0 से हराया। इसके साथ ही भारत की पुरुष, महिला और मिक्स रिकर्व टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये मुकाबले 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे। कल से कंपाउंड के व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे और वहां भी हमें बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है।
0: आगे बढ़ते हैं। भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। यशस पाराक्षा दूसरी हीट में चोटिल हो गए और वे रेस पूरी नहीं कर सके।
1: और भारत के संतोष कुमार तमिलारासन ने पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स की हीट में 49.61 सेकंड का समय लेकर जो आपने बताया कि दूसरा स्थान हासिल किया। उधर महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत की मंजूरानी 3:40:07 के समय के साथ छठे और आखिरी स्थान पर रही। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 किलोमीटर के बाद डिस्क्वालीफाई हो गई थी।
0: बिल्कुल, अब सबकी नजर हॉकी पर रहती है तो बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सुनीलिता टोपो के 2 गोल की मदद से अपने अंतिम पूल बी मैच में सिंगापुर को 7-0 से हराया। भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है जहां 30 सितंबर को उसका मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा।
1: पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी मुकाबले में भारत ने वियतनाम को 3-0 से हराया। भारत ने यह मैच 25-23, 25-21, 25-20 से जीता। भारत अब कल हांगकांग के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगा।
0: वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग में 9वें नंबर पर रही। उन्होंने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया।
1: बैडमिंटन में भारत का सफर समाप्त हो गया। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यूफेई से हार गई। उन्नति हुडा क्वार्टर फाइनल में चीन की अकाने यामागुची से पराजित हो गई। मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला को चीन की जोड़ी ने पराजित किया। महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में गायत्री गोपीचंद त्रिशा जोली को मलेशिया की जोड़ी ने हराया। बैडमिंटन में इस बार भारत को सिर्फ पुरुष टीम इवेंट में कांस्य पदक मिला।
0: शूटिंग की बात करें तो महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन के प्रिसिजन स्टेज में भारत की ईशा सिंह ने 290 अंक हासिल किए। मनु भाकर और राही सरोनबत ने भी 287 अंक लिए। इस इवेंट में अभी किसी की स्थिति फिलहाल तय नहीं हुई है और इवेंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल समय कुछ कम है।
1: लेकिन हम तो बात करेंगे, रैपिड स्टेज कल से खेला जाएगा। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय निशानेबाजों को रैपिड स्टेज में बेहतर स्कोर करना होगा। और पुरुष वर्ग में काइनन चेनाई 47 अंक के साथ 11वें स्थान पर हैं। शपथ भारद्वाज 45 अंक के साथ 22वें और अहवर रिजवी 41 अंक के साथ 35वें स्थान पर हैं। घोड़सवारी के डेसाज इंडिविजुअल फाइनल में हृदय छेड़ा 8वें और जयसूद 9वें स्थान पर रहे।
0: समरकंद में भारतीय पुरुष टीम ने 46वें शतरंज ओलंपियाड के अंतिम दौर में रविवार को हंगरी के साथ ड्रॉ खेलकर यानी आज ट्राई ब्रेकर में रजत पदक हासिल किया। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ बाजी बराबर रहने के बाद कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: ओपन सेक्शन में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है और भारत को रजत पदक और जर्मनी को कांस्य पदक मिला।

0: महिलाओं के सेक्शन में चाइना को स्वर्ण पदक और रजत पदक कजाकिस्तान का होगा, जिनकी टीम काफी अच्छी है, बीबी सारा उनके खिलाड़ी है। और भारत की महिलाओं को कांस्य पदक मिलेगा। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं तो सविता श्री को स्वर्ण पदक मिलेगा। आज का जो गेम था वो काफी मुश्किल पोजीशन में थी, अगर वो हार जाती तो भारत को तृतीय स्थान नहीं मिलता, फिर वो यूएसए को मिल जाता और भारत चौथे स्थान पे आ जाता। लेकिन सविता श्री ने बहुत ही अच्छी एक टक्कर दी तो सविता श्री को इंडिविजुअल गोल्ड मिलेगा, तो वर्ल्ड चैंपियन गुकेश जो आज अनफॉर्चुनेटली हार गए तो उन्हें सिल्वर मिलेगा। दिव्या देशमुख वो भी आज पराजित हो गई, उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। ऑल टाइम ग्रेट कोनेरू होम्पी को ब्रॉन्ज मिल रहा है, वंतिका अग्रवाल को ब्रॉन्ज मिल रहा है और प्रज्ञानंद को ब्रॉन्ज मिल रहा है। तो हमें 6 इंडिविजुअल मेडल्स मिल रहे हैं और कहीं इसका रिफ्लेक्शन हमें अपने टीम के सक्सेस में दिखाई दे रहा है।
1: जी हाँ, भारतीय टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बता रहे थे शतरंज ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त करने वाले और राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी प्रवीण थिपसे।
2: और क्रिकेट में तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं।
1: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आपसे विदा लिया जाए। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। खेल के मैदान की हर खबर के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे

0: covid.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढ़ोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया।

0: श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में NC सोजन ने 6.5 5'3" की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्वी शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैम्पेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
7: good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far, also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
8: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
7: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह

0: ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट पर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 139 रन बनाकर नाबाद रहे। ये उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 295 रन बनाए थे। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने रजत पदक जीता। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रेपी डाविशली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow. Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
2: Desh ke sabhi rajyon aur kendra shasit pradeshon mein iska pehla charan lagbhag pura ho chuka hai. 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. Raksha Mantri Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighbouring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
3: India wants peace, but it will not compromise on its security under any circumstances. India believes in dialogue, but if any country promotes terrorism against India, there is no scope for dialogue with that country. Countries that use terrorism as a tool of state policy and provide shelter and support to terrorists must be sent a strong message that terrorism can never be a strategic asset for anyone under any circumstances.
1: Union, Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual-fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen

0: as a step towards greener rail transport and India's net zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees. Vice President C.P. Radhakrishnan has stressed that technology cannot replace the human touch of a doctor, particularly amid rapid advances in artificial intelligence and digital healthcare. The Vice President was addressing the graduation ceremony of the SUT Academy of Medical Sciences at Thiruvananthapuram in Kerala today. In men's cricket, India beat West Indies with ease by 8 wickets in the first one-day international at Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram to take a 1-0 lead in the three-match ODI series tonight. Chasing a target of 296 runs set by the West Indies, hosts India made 300 for 2 in 41.4 overs with unbeaten 139 runs in 88 balls made by Virat Kohli, while skipper Shubman Gill scored 110 runs. Earlier put into bat first, West Indies posted 295 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 50 overs. And at the Asian Games in Japan, India's Ansi Sojan Edapilli has won the silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Sarvesh Kusharev won silver medal in the men's high jump. In squash, the country clinched 2 silver medals with Abbas Singh winning silver in the men's singles and Anahat Singh bagging silver medal in the women's singles event. Currently, India is at the 12th position in the medals tally. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath, main Ashutosh. मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत और दर्जनों लापता। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नूना गैप्रेंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में समझौतों के माध्यम से बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष दिसंबर के आसपास कनाडा की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता में प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई न बर्दाश्त करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में किवू झील में एक नाव के पलट जाने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार 50 से अधिक लोगों को ले जा रही यह नाव कल रात दक्षिण किवू प्रांत के इद्ज़वी द्वीप के पास पलट गई। अब तक 15 लोगों को बचाया जा चुका है और राहत तथा बचाव अभियान जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में अमरीकी संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में आए अमरीकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में भारत अमरीका

0: संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने हाल ही में पारित सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट और द्विपक्षीय संबंधों की आगे की दिशा पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में साझा हितों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और नौवहन की स्वतंत्रता पर भी चर्चा हुई। भारत ने मानवीय सहायता के अंतर्गत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की मानवीय सहायता में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यटन दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और समाजों के बारे में जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यात्रा के शौकीनों के लिए एक सुरक्षित और विकसित गंतव्य के तौर पर उभरा है। फिलीपींस के सुबिक बे में समुद्री सुरक्षा में सहयोग की गतिविधियों पर आसियान रक्षा मंत्रियों की 23वीं बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सदस्य देशों के मंत्रियों के अलावा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। बैठक में भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री और INS कुलिश के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे।
2: आसियान देशों के बीच नौसैनिक सहयोग की 5 दिन की गतिविधियों की मेजबानी फिलीपींस की नौसेना ने की और जापान ने इसकी सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसमें शांति और सुरक्षा, आसियान नौसेना प्रमुखों की बैठक, समुद्री गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश, वरिष्ठ नौसैनिक नेतृत्व और समुद्री पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श हुआ। भारतीय नौसैनिकों ने संचालन समन्वय, टेबल टॉप अभ्यास और प्रस्थान से पहले आयोजित सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। मंत्रालय ने कहा है कि इस गतिविधि में भाग लेने वाले देशों के बीच पेशेवर संवाद और व्यावहारिक सहयोग मजबूत हुआ। भारत की भागीदारी ने एक्ट ईस्ट नीति और महासागर के अंतर्गत क्षेत्रीय साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान सरकार और विदेश मंत्री राशिद मेरेदोफ को स्वाधीनता की 36वीं वर्षगांठ पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और तुर्कमेनिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने के प्रति आशान्वित हैं। पश्चिमी नेपाल में तिब्बत सीमा के पास हिमलुंग हिमाल में आधार शिविर पर आज सुबह हिमस्खलन के बाद 10 लोग लापता हैं। खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों को फिलहाल आगे न बढ़ने की सलाह दी गई है। जापान के आईजी नगोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने टेकथलॉन 7934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में नाव पलटने से 12 लोगों की मौत और दर्जनों लापता। एशियाई खेलों में भारत ने महिला लंबी कूद, पुरुष ऊंची कूद और दोनों स्क्वाश एकल स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, महिला स्टीपल चेज और 200 मीटर स्पर्धाओं में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:31 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार का। सदाबहार गीतों की इस बेहद खूबसूरत महफिल जिसको लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और रविवार की यह शाम बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। और ऐसे शाम में अगर कुछ चुलबुला नगमा ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता। और दोस्तों कहते हैं कि इश्क की भी अपनी एक अदा होती है, कभी एक खामोशी में दिल की बात कह जाता है और कभी महफिल में ऐसा रंग भर देता है कि कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। और आज का यह नगमा भी कुछ ऐसा ही है, मोहब्बत की शरारत, जवानी की मस्ती और एक बेफिक्र दिल का अंदाज, सब कुछ एक साथ। साल था 1975 का और एक फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, और सुरों की दुनिया में मौजूद थे वो नाम जिनकी धुनें आज भी दिलों पर राज करती हैं, और वो नाम थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के। इस गीत के अल्फाज को लिखे मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने और इन शब्दों में जान डाली हिंदुस्तान की दो बेहद मकबूल आवाजों ने जिनका नाम लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी था। पर ये जो नगमा है वो सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में है, लेकिन जब बात आती है उस मस्त मौला अंदाज की तो रफ़ी साहब की आवाज़ में गूंजता है ये वो यादगार तराना जो हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा गीत जिसकी मस्ती आज भी वैसी ही ताजा है जैसे पहली मुलाकात की वो प्यारी सी धड़कन। तो आवाज को जरा और ऊंची कर ले आप अपने रेडियो की और इस नगमे पर आप भी गुनगुनाए, मुस्कुराए और ये बेहद खूबसूरत गीत जरूर सुने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रतिज्ञा फिल्म का वही बेहद खूबसूरत नगमा, मैं जटिया मुल्ला पगला दीवाना।

मोहम्मद रफ़ी साहब की ये दिलकश आवाज़ और ये थिरकता हुआ नगमा यकीनन आपको थिरकने पे भी मजबूर ज़रूर कर दिया होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की, और हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस सफ़र को यूं ही

0: आगे बढ़ाएंगे।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हर सिंगार में। हर सिंगार यानी वो महफिल, वो सदाबहार नगमों की महफिल जो आपके दिल के बेहद करीब है। इनमें वो नगमे होते हैं जिन्हें आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और फिर जब प्यार और मोहब्बत की बात हो तो फिर क्या कहने। कभी कभी आपने भी जरूर ऐसा महसूस किया ही होगा, या हो सकता है अभी भी कर रहे हो, कि कोई एक ऐसा चेहरा है जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि यही वो चेहरा था जिसकी तलाश हमें बरसों से थी और हमारी निगाहें बस इसी को तलाश रही थी। मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है दोस्तों, कोई लफ्जों से दिल में उतर जाता है तो कोई सिर्फ एक नजर से पूरी दास्तान कह जाता है। और ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत नगमा है जो चेहरे से होते हुए सीधे दिल में उतर जाता है। हम आपको लेकर चलते हैं 1975 के उस दौर में जब फिल्म धर्मात्मा ने अपने संगीत से महफिल में एक अलग ही रंग जमा दिया था। सुरों की इस खूबसूरत दुनिया को सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने, गीतों को अल्फाज दिए थे इंदिवर साहब ने, और संगीत था अफगानी रंगों की दिलकश खुशबू और वेस्टर्न म्यूजिक का आधुनिक अंदाज। एक ऐसा संगम जिसने इस गीत को बना दिया हमेशा के लिए अमर। और अब बारी है एक ऐसी आवाज की जिसने प्यार की शरारत भी है उस आवाज में और उस नगमे में और दिल की गहराई भी, और वो आवाज है किशोर कुमार साहब की। और ये नगमा है फिल्म धर्मात्मा का, ये बेहद खूबसूरत नगमा जो सीधे दिल में उतर जाता है।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा

0: ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई TND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। ये वो महफिल जिसमें सदाबहार नगमों की धूम होती है। तो दोस्तों, इश्क में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, आपने कभी महसूस किया है या जानने की कोशिश की है? शायद वो एहसास जब दिल बिना किसी शर्त के किसी को अपना मान ले, और जब ये एहसास लफ्जों में ढलता है तो एक ऐसा नगमा बनता है जिसे सुनकर लगता है जैसे कोई दिल से अपना इकरार कर रहा हो। तो चलिए आपको लिए चलते हैं यादों की गलियों में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल था 1967 का और एक फिल्म आई थी फर्ज। जितेंद्र और बबीता की खूबसूरत जोड़ी थी इस फिल्म में। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। फिर इन गीतों को अपनी आवाज बख्शी थी बेहद खूबसूरत और बेहद प्यारी आवाज के धनी मुकेश साहब और लता जी ने। एक तरफ मुकेश जी की दर्द में डूबी मिठास, दूसरी तरफ लता जी की नाजुक आवाज और बीच में मोहब्बत का वो इकरार जिसे सुनकर दिल जरा सा बेकरार हो जाए इस नगमे की तरह।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 10:58 और 36 सेकंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की, और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। लेकिन वक्त का तकाजा है कि अब हम आपसे यहीं पर इजाजत लें, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का पुनः

प्रसारण। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ठीक 11:40 पर एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुनहरे दौर के वो खूबसूरत नगमे जिसमें आपके दिल बिल्कुल बेकरार होते हैं, उन नगमों को सुनकर उन यादों के जरिए। और वो प्रोग्राम होगा गीत मेरे मनमीत। फिलहाल वक्त हो चुका है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं ठीक 11:40 पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जोस सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन

में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. हेलो सुबोध.
1: धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ वैभव.
0: First, the headlines. Ahead of festive season, Prime Minister Narendra Modi urges everyone to promote local products. External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdraw over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far.
1: त्योहारी मौसम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धरत देशों से तनाव कम करने और वर्तमान संघर्ष के बीच ऊर्जा और व्यापार मार्ग खुले रखने का आह्वान किया. और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से 17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकाली.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Starting with our first headline, the Prime Minister Narendra Modi today said every region of India has a unique specialty, ranging from agricultural products and traditional art forms to local skills. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the One District, One Product ODUP campaign seeks to promote these distinctive products and help them move beyond local markets to reach consumers across the country and abroad. He also linked the initiative with the Vocal for Local campaign, saying that promoting local products can contribute to the country's drive towards self-reliance. With the festive season approaching, the Prime Minister urged people to keep the spirit of local, vocal for local in mind and support products made by local farmers, artisans, entrepreneurs and self-help groups.
1: पहले कॉलर से संपर्क हुआ है हमारा मुंबई. अमित हमारे साथ है. स्वागत है आपका. सवाल पूछे.
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर.
1: धन्यवाद
3: सर. मेरा सवाल था कि

0: हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड में डिफरेंस क्या है, और इसमें हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट में एक एक नाम आप बता सकते हैं प्लीज, और ये क्या डेट फंड में अवेलेबल होते हैं? डेट फंड, सॉरी, थैंक यू
1: जी। देखिए, हाइब्रिड और मल्टी एसेट में आपने अंतर पूछा है, तो मल्टी एसेट एक तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड्स एक ओवरऑल एक बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, और मोस्टली उनमें डिपेंड करता है कि वो कितने एसेट क्लास में कितने प्रतिशत अपना पैसा निवेश करते हैं। जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वो करीब 70-75% आपका पैसा इक्विटी और बचा हुआ डेट में निवेश करते हैं। बैलेंस्ड हाइब्रिड्स 50-50% आपका पैसा एलोकेट करते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड वहीं 25% इक्विटी और 75% डेट करते हैं। अब इसी बीच में मल्टी एसेट एक थोड़ी नई कैटेगरी है जिनका मैंडेट होता है कि वो कम से कम 3 एसेट क्लास में आपका पैसा डिवाइड करेंगे, और अधिकतर देखा गया कि वो 3 कैटेगरीज होती हैं, तीन एसेट क्लास होती है, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड। अब अलग अलग मल्टी एसेट फंड जो प्रोपोर्शन इन तीनों एसेट क्लास का रखते हैं वो अलग अलग होता है, वो कोई फिक्स्ड कोई एक बहुत प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट नहीं है। अलग अलग फंड में देखा गया कि कुछ इक्विटी हैवी रहेंगे, कुछ तीनों में बराबर बराबर आपका पैसा निवेश करेंगे, तो वो निवेश से पहले आपको देखना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अब डेट और इक्विटी, देखिए टैक्स के नजरिए से देखें तो हाइब्रिड फंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जो फंड 65% से ज्यादा आपका पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए उनको इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है, और वहीं वो थोड़ा रिस्क रिटर्न उनका ज्यादा ऊंचे पैमाने पर रहता है। वहीं जो डेट हैवी हाइब्रिड्स होते हैं उनमें आपको डेट वाला टैक्स ट्रीटमेंट लगता है, गेन आपकी स्लैब पे टैक्स होते हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट पर, और रिस्क और रिटर्न का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस पर डाउन द ऑर्डर आते हैं। तो ये काफी वेरी कर सकते हैं एक से दूसरा फंड, आपको इसको ध्यान से देखना होगा
2: जी। आशुतोष, हम कई बार देखते हैं कई निवेशक जो अच्छी जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड बाजार की और कैसे निवेश करें, कौन सी कैटेगरीज हैं, और कई हमारे हमेशा हम नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं क्योंकि एसआईपी के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी पता लगता है, नए निवेशकों की अद्भुत दुविधा देखने को मिलती है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे एजेंट्स और एडवाइजर्स से सलाह लेते हैं और कौन सी सलाह अच्छी है कौन सी नहीं है। चले अगले कॉलर के पास, वैभव।
3: एब्सोल्युटली, आवर नेक्स्ट कॉलर इज जीतेंद्र फ्रॉम जयपुर। जीतेंद्र जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। जीतेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए।
2: लगता है कुछ
3: जीतेंद्र जी से कुछ संपर्क तो हुआ लेकिन आवाज और शोर कुछ ज्यादा है
2: जी। तो हम अपनी बातचीत जारी रखें आशुतोष की, जैसे कई लोग एजेंट से एडवाइजर्स के जरिए निवेश कर रहे हैं और उनसे और वही उनके सलाहकार भी बन जाते हैं। जब आप जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये ले लो आप, इसमें पैसे लगा दो आप, और कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो एसआईपी शुरू कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है या कहां है। अगर कोई एजेंट या एडवाइजर किसी नए निवेशक को सलाह देता है कि आप किसी एक तरह के फंड में, मान लीजिए आप अपना 70% पैसा लगा दीजिए स्मॉल कैप फंड्स में, तो क्या आप बोलेंगे कि क्योंकि अभी उसके रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये अच्छी सलाह है? क्योंकि खास करके ऐसे निवेशक के लिए जिसको पता ही नहीं है कि वो स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है।
1: तो देखिए, आपके सवाल पर मुझे एक चीज याद आती है कि एनएससी का जो टैगलाइन है, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो निवेशकों को सबसे पहले वही करना है कि आपको कोई भी कुछ भी रिटर्न्स का प्रलोभन दे, आपको अपने आप से, क्योंकि आपका पैसा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा आपको सोच समझ कर निवेश करना है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न अच्छे देते हैं, हिस्टोरिक रिटर्न उनके काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ऐसे फेस भी आते हैं कि जब वो काफी धड़ाम से गिर जाते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देखा गया गिरते हैं, तो उसका टॉलरेंस होना जरूरी है। लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए, जब तक उनको फेमिलियरिटी नहीं है, इंडेक्स फंड एक बड़ा ही सरल और सुगम तरीका है जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से वो शुरुआत कर सकते हैं जिससे कि उनका रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और अगर जानकारी का अभाव भी है तो इन फंड्स में आप फिर भी थोड़े मॉडरेट रिस्क के साथ अपना पहला कदम मार्केट के निवेश की ओर रख सकते हैं।
3: And our next caller is Yogesh from Delhi. Yogesh, you welcome to Market Mantra. Please ask your question.
4: थैंक यू सो मच. नमस्कार आप सभी को. मेरा सवाल ये है कि जैसे वॉरेन बफेट के बोर्ड पर कहते हैं कि बाय एंड होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, सो डू म्यूचुअल फंड

0: हमारा मल्टी कैप फंड चल रहा है महिंद्रा मनु लाइफ में, एक और हम चाहते हैं मल्टी कैप फंड तो बता देते जैसे एक और खोलने के लिए। और इसमें एक फंड आया था नया अभी जस्ट 15 दिन पहले, एक्टिव मोमेंटम फंड। तो किसको ट्रैक करता है, कुछ आइडिया है क्या सर एक्टिव मोमेंटम फंड?
1: तो देखिए, नए फंड से मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा आप बचें। एक्टिव मोमेंटम फंड, उसकी स्ट्रेटेजी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की रहेगी, एक्टिवली मैनेज रहेगा। तो एक्टिव मोमेंटम का मतलब है एक्टिवली मैनेज्ड फंड, जो कि मोमेंटम एक उसकी स्ट्रेटेजी का मेन फैक्टर रहेगा जिसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा। और अगर मोमेंटम एज अ थीम, एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चलता है बाजार में, तो आप इस फंड से रिटर्न्स की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन नए फंड से मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए। कुछ भी ऐसा नोवेल्टी कोई भी नया फंड नहीं देता है कि आपको उसके एनएफओ के टाइम पे ही उसमें निवेश करना है। उसको समय दीजिए, अपने आप को प्रूव करने दीजिए मार्केट में। अच्छे रिटर्न अगर वो देता है, कंसिस्टेंसी के साथ देता है, तो उसमें निवेश करने की सोचें। और इसी तरह आप अपना मल्टी कैप फंड भी कोई ऐसा फंड का चुनाव करें जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न। मल्टी कैप फंड्स को आए हुए मार्केट में करीब 5-6 साल हो गए हैं, 5-6 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है जब ये कैटेगरी सेबी द्वारा नई बनाई गई थी। तो आप कोई भी ऐसा फंड जो, और इस बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव के दौर भी मार्केट ने देखे हैं, थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट, कोई ऐसा फंड का चुनाव करके निवेश करें जिसने कंसिस्टेंटली रीजनेबली अच्छे रिटर्न दिया। नेवर चेज द हॉटेस्ट परफॉर्मर, एकदम जो टॉप परफॉर्मर है कभी भी उस फंड के पीछे जरूरी नहीं है कि वही सबसे अच्छा फंड हो। ऐसा फंड का चुनाव करें जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिलती डुलती नहीं है, वो अबव एवरेज अगर हर टाइप के मार्केट के माहौल में आपको अनुभव दे पाता है, तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा फंड होगा
2: जी। और अगले कॉलर है दिल्ली से राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
3: मैंने कुछ म्यूचुअल फंड होल्डिंग डीमैट होल्डिंग में ले लिया था। डीमैट होल्डिंग में रिडम्पशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं उसे डीमैट से अलग निकाल के कर सकता हूँ क्या? यदि हाँ तो क्या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी?
1: जी, तो आप डीमैट होल्डिंग्स को आपने पहला बात, आपकी जो टिप्पणी है ये बिल्कुल सही है कि डीमैट होल्डिंग्स को बेचना आप उसी ब्रोकर के थ्रू वहीं पे बेच सकते हैं जहां से आपने खरीदा है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो एक साधारण जरिया होता है म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने का, जिसको एसओए फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट बोलते हैं, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पर उसको बेच सकते हैं। तो आपके पास उसमें ट्रांजैक्शन करने के सुविधाएं और साधन ज्यादा उपलब्ध हैं। तो एसओए फॉर्मेट एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए मेरी राय में बेहतर, ज्यादा सुगम तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। अब रही बात आपकी डीमैट होल्डिंग्स की, तो बिल्कुल आप उनको एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने इन्वेस्टर सर्विस से आप कॉन्टैक्ट करें जिस भी एएमसी में आपका निवेश है। कुछ आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और आपकी यूनिट्स डीमैट से एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उनको कहीं भी खरीद बेच पाएंगे और आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी। तो अगर आप शायद आपका इशारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबिलिटी की तरफ है, तो बिल्कुल आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी, वहीं से आपकी होल्डिंग पीरियड को काउंट किया जाएगा।
2: ये अगली खबर पे नजर डालते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 17,131 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार 25,682 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में हुई बिकवाली से निकाले गए, लेकिन प्राइमरी मार्केट में एफपीआई ने निवेश कायम रखा और सितंबर में अब तक उन्होंने इसमें 8,551 करोड़ रुपए डाले हैं। विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय ऋण बाजार से भी निकासी का रुख कायम रखा है। एफएआर के जरिए उन्होंने 7,385 करोड़ रुपए निकाले, वीआरआर के जरिए 3,021 करोड़ रुपए और जनरल लिमिट रूट से 1,889 करोड़ रुपए निकाले हैं। और अगले कॉलर है गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: नमस्ते सर।
2: नमस्ते
4: सर, मेरा सवाल रियल एस्टेट कंपनी पिछले कई सालों से बहुत अच्छा, मतलब पिछले साल दो साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो बेसिकली वो कवर करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और वो रेजिडेंशियल कवर नहीं करता है। ऐसी बात, ये बात सही है क्या? रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो उछाल आता है उसको वो कैप्चर नहीं कर पाते, दे आर मोर इन टू ये जो प्रॉपर्टीज होती है अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज मॉल प्रॉपर्टी उसी को कवर करते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसी से संबंधित इससे सवाल है कि क्या कोई ऐसे फंड होते हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज को नहीं इन्वेस्ट करते हैं या उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, ऐसा कुछ फंड है क्या जो इस तक उस पर ध्यान दिया जाता है, या फ्लेक्सी कैप विल बी एबल टू कैप्चर द रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ? थैंक यू सर।
1: जी तो देखिए, रीट्स अपने आप में एक अपकमिंग एसेट क्लास है इंडिया में। अभी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रेवलेंट नहीं है, बट ये अपकमिंग सेगमेंट है। सेबी का भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में रीट्स को एक अपशॉट देने के लिए उनको इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जिससे कि वो जो इंडेक्स होते हैं, मार्केट इंडेक्स होते हैं, उनमें रीट्स की भी एंट्री हो पाए। तो रीट्स को प्रमोट करने के लिए सेबी अपना काम कर रहा है। आने वाले टाइम में होपफुली रीट्स एज एन एसेट क्लास आपको उस पर ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा वेरीड टाइप के रीट्स की अवेलेबिलिटी होगी। आपका सवाल म्यूचुअल फंड्स में, तो देखिए जो स्टैंडर्ड अभी तक जो वनीला म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनमें आपको रीट्स का एक्सपोजर काफी लिमिटेड ही मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक दो फंड आए हैं जो रीट्स पे ही फोकस करते हैं, रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं। उनका मैंडेट है कि वो आपका पैसा रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर रीट्स में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो रियल एस्टेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत नए फंड हैं, एक का तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनएफओ पीरियड ही चल रहा है, तो इनको आप आइडियली थोड़ा समय दीजिए ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर आप काफी इंक्लाइंड हैं तो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहता है इनमें, बट इनको थोड़ा समय दीजिए और आने वाले टाइम में मेरा ख्याल ये सेगमेंट में आपको ऑप्शंस काफी मिलेंगी।
5: And we're joined in by Dinesh from Delhi. Dinesh, welcome to Market Month. Please ask your question.
6: Namaskar, main Dinesh Kumar bol raha hu Delhi Ashok Vihar se.
5: Ji namaskar.
6: Main ye puchna chahta hu ki jo companies hoti hain mutual fund mein equity companies, wo jab dividend announce karti hain to wo dividend ka amount kahan jata hai aur kya wo NAV ko affect karta hai aur इस बारे में क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है टू इंश्योर दैट द डिविडेंड इज इंटेंडेड टू गो टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज टू बी? थैंक यू।
1: जी तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करते हैं, जो आप प्लान होल्ड करते हैं, वो आप डिविडेंड प्लान है कि ग्रोथ प्लान है। डिविडेंड प्लान्स को म्यूचुअल फंड्स में IDCW प्लान्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर कोई फंड डिविडेंड, कोई आप ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आपने सुना कि उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन अगर आप उसका ग्रोथ वेरियंट ओन करते हैं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि ये कुछ इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जाता है कि इसका भी मैंने सुना था डिविडेंड आया लेकिन मेरे पास नहीं आया। वो काफी बार वो कारण यही होता है कि आप शायद ग्रोथ प्लान में उस फंड के इन्वेस्टेड होंगे, डिविडेंड प्लान में नहीं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखिए, डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जब मानिए एक फंड है जो कि 20 रुपए की एनएवी पे ट्रेड कर रहा है और वो फंड 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस करता है, तो वो 1 रुपया जो भी डिविडेंड प्लान के निवेशक हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितनी भी वो यूनिट्स होल्ड करते हैं उसके हिसाब से, और उनके फंड की एनएवी 20 रुपए से 19 रुपए हो जाएगी। तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, वो आप ही का पैसा थोड़ा सा रिडीम कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये बिल्कुल ये सटीक तरीके से किया जाता है। आरटीएस जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेशकों का रजिस्टर ओन करते हैं, जहां पे बड़ी सटीकता के साथ सारे फंड निवेशक, उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं, सब कुछ दर्ज होता है। तो बड़े प्रिसिशन के साथ ये डिविडेंड का काम किया जाता है। इट इज सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट ऑडिट। म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, एएमसी का जो स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है वो एक अलग होता है, और म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स होते हैं वो एएमसी से अलग अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली अगर देखें तो एक ट्रस्ट ओन करता है, और जो म्यूचुअल फंड्स के खाते होते हैं वो एक अलग इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ऑडिट करके सर्टिफाई करने होते हैं। तो काफी वेल रेगुलेटेड वो है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत पुराने निवेशक जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग उनके अकाउंट में दर्ज नहीं है, तो ऐसा है कि डिविडेंड का पैसा अनक्लेम्ड रह गया है, तो लेकिन ये एज अ निवेशक आपको एंश्योर करना होगा कि आपकी प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके फोलियोज में मैप्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के जरिए वो सक्षम है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपके डिविडेंड की रकम को वो ट्रांसफर कर दें। तो अगर आपने ये एंश्योर किया है तो डिविडेंड का पैसा जरूर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप एएमसी के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ शायद धोखाधड़ी हो रही है, तो आप बिल्कुल सेबी पे उनके स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और

0: जरूर कार्रवाई होगी
1: जी। और नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर व्यवस्था अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगी। इसके तहत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि स्थानीय बाजारों में क्यूआर कोड स्कैन करने पर क्या ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा है कि स्थानीय बाजारों, रेहड़ी पटरी वालों या छोटी खुदरा दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने यह भी साफ किया कि क्यूआर कोड से भुगतान करने वाले ग्राहक से किसी भी राशि की खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2: Our next caller is Shankar from Chennai. Welcome to Market Month. Please ask your question.
3: Sir, good evening.
2: Good evening, sir.
3: I have a query related to mutual fund investments for NRIs. Please listen to this query carefully because it's a very unique query. Okay?
2: Sure.
3: And answer me. If in case of advice, please let me know. For a NRI relative who is staying in Germany, he is already investing through a mutual fund distributor through DMAT account. Okay, sir? Now, his mother passed away and he wants to have the mother's things which he will acquire in his NRO account, okay, to be invested in mutual fund. But the mutual fund distributor says one more DMAT account need to be opened because the current DMAT account is only for NRE account investment. Is this correct, what the regulation says, and what is the advice? Because having two DMAT accounts is cumbersome, am I right? Are there any exceptions? Who can guide me correctly on?
0: Well, I'm afraid I also may not be 100% sure because of the very specificity of this query, but I'm inclined to believe that what your distributor is saying is right, because in the DMAT account, if an NRE account is already linked, you may not be able to link an NRO account with the same DMAT account, and that could be the reason. So it is not about the DMAT account per se, but likely related to the NRE and the NRO status, two different accounts which may not be feasible here, but something which needs to be ensured. And this is my opinion, this is my gut feel, but I'm afraid I won't be able to answer with 100% surety right now.
1: जी, और अगली खबर पर नजर डालें, देखें सोने और चांदी का हाल। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ट्रेजरी यील्ड में बढ़त और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 2.3% की गिरावट के साथ 1,50,881 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 2.8% की कमी आई और ये 2,34,696 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 2.3% गिरकर 4,287.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 3.5% लुढ़ककर $64.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर आ गई।
2: Domestic investors are expected to closely monitor key market triggers including macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor FII flows, commodity prices, bond yield movements and currency fluctuations during the holiday shortened week ahead. Indian equity markets will remain closed on Friday on account of Mahatma Gandhi's Jayanti. Market participants will focus on industrial production data IIP, monthly auto sales figures, GST collection data and the HSBC manufacturing PMI reading. The primary market is also set for another busy week with four main board IPOs scheduled to open for subscription. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict. In the United States, personal consumption expenditure PCE and jobs data will remain on investors' radar. Meanwhile, inflation and trade data from South Korea will also be closely watched by market participants.
1: आशुतोष, 10 सेकंड में बता दें हमें कि अगर हमारा कुल निवेश कुछ 30,000 रुपए का एसआईपी चल रही हो तो उसका हम कितना प्रतिशत स्मॉल कैप में रखें अगर हमें बहुत लालच आ ही रहा हो तो।
0: देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता, आप रख सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल अपना 20-25% तक पैसा आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं।
1: जी आशुतोष कार्यक्रम में आने और

0: सवालों के और हमारे भी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी.
2: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस एवरीवन टू प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्स अपॉन ऑल वॉरिंग नेशंस टू डी एस्केलेट टेंशंस एंड कीप एनर्जी एंड ट्रेड रूट्स ओपन ड्यूरिंग ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विदड्रू ओवर 17,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडियन इक्विटीज इन सितंबर सो फार. दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र. नमस्कार.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 9 सेकेंड। और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदा। संगीत की दुनिया में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो वक्त की सरहदें पार कर सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और आज की शाम भी कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और ये फिल्म आई थी 1961 में, उसका नाम था जंगली, और संगीत था उस दौर के मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन की। फिल्म के ज्यादातर गीतों को अपनी धुनों से सजाने वाली इस जोड़ी ने इस गीत में भी एक बेहद दिलकश एहसास पैदा किया। गीतकार हसरत जयपुरी के अल्फाज और आवाजें मुकेश साहब और आशा जी की, यानी एक तरफ मुकेश साहब की सादगी भरी आवाज और दूसरी तरफ आशा जी की चुलबुली अदा, और नतीजा एक ऐसा नगमा जिसमें मोहब्बत भी है, शरारत भी, और नजरों की वो खामोश गुफ्तगु जिसे सिर्फ दिल समझ सकता है। तो आइए गोल्डन एरा के उसी महफिल में कुछ पल ठहरते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां आंखों में भी बात करने की सलाहियत हुआ करती थी और गीत दिल की जबान बन जाया करते थे। तो आइए इसी सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

जंगली फिल्म का है बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, जिंदगी भी अजीब दास्तान है ना। कभी ये हमें हरे भरे रास्तों पर ले जाती है तो कभी किसी पुराने गीतों की याद में हमें रोक लेती है। और जब बात हो फिल्म हरियाली और रास्ता की तो आंखों के सामने खुद ब खुद पहाड़, हरियाली और धुंध से ढकी वादियां उतर आती हैं। साल था 1962 का और ये फिल्म आई थी हरियाली और रास्ता, जिसकी ज्यादातर शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी, खासतौर पर गिंग टी स्टेट और रंगी टी स्टेट की दिलकश वादियों में। फिल्म के नायक मनोज कुमार साहब के लिए ये फिल्म बेहद खास रही। इसी फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों का रास्ता दिखाया जो पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखे। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की बेहद खूबसूरत धुन से सजा, लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां इस नगमे में एक राजा और रानी की कहानी की बात हो रही है।

एक था राजा एक थी रानी, आओ सुनाऊं एक कहानी। लता जी की आवाज में ये नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के गीतों की, गीत मेरे मन में। दोस्तों, इश्क की भी अपनी अजीब रिवायत होती है। कभी ये चांदनी बनकर दिल को सुकून देता है और कभी एक जलते हुए चराग की तरह दिल में ऐसी हलचल पैदा कर देता है कि इंसान कह उठता है, ओ शमा मुझे फूंक दे। आज ये हमारी महफिल अब चलती है 1962 की तरफ, और 1962 में एक फिल्म आई थी आशिक। फिल्म के निर्देशक थे संवेदनशील फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी साहब, और पर्दे पर नजर आए राज कपूर, नंदा और पद्मिनी। मगर दोस्तों, इस नगमे की असली खूबसूरती, इस फिल्म के इस नगमे की असली खूबसूरती है इसके अल्फाज और आवाजों का वो संगम। शैलेंद्र की शायरी, शंकर जयकिशन की दिलनशी धुन, और मुकेश और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजें। मुकेश जी की सादगी और लता जी की नफासत जैसे एक ही एहसास के दो रंग। तो आइए उस दौर की एक बेहद खूबसूरत मोहब्बत भरे नगमे की तरफ चलते हैं और सुनते हैं फिल्म आशिक का ये बेहद प्यारा खूबसूरत नगमा। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

आशिक फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत

हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, जैसे दो रेखाएं मिलती हैं कभी ना कभी। और अगर हम समांतर निकले तो मिलेंगे अनंत में, जहां ये झूठ हर रोज दोहराना नहीं होगा कि मुझे तुमसे प्यार है। एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 10 सेकंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब की आवाज़ के साथ।

रिश्तों में कह लीजिए या फिर प्यार में कह लीजिए, नाराजगी बहुत ही दिलचस्प होती है, है ना? क्योंकि नाराजगी से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। और अगर आप प्यार में हैं और आपके रिश्ते में छोटी छोटी नोक झोंक हैं, शिकायतें हैं, तो समझ जाइए कि आपका प्यार गहरा है। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जब दिल किसी को अपना मान लेता है, किसी को अपना स्वीकार कर लेता है, तो फिर बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है प्यार की भाषा बहुत आसान होती है, बस दिल वफादार होना चाहिए। अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में।

वैसे जब दिल चुरा लिया हो तो फिर नजरें चुराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत में दिल हारना तो बहुत आसान है, पर किसी की आंखों में आंखें डालकर अपनी चाहत को बयां करना सचमुच बहुत हिम्मत का काम है। और जो ये कर लेता है वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत जीत जाता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, आप ही के लिए।

तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों। तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों। तुम मेरा आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों। तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 55 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

ये तो सच बात है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान आ जाता है जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है और ये दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। सुबह की धूप में ताज़गी और हवा ज़्यादा खुशबूदार लगती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ख़ास इंसान है जिसकी मौजूदगी से आपकी दुनिया हसीन बनती है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपकी माँ हो, तो आपको हर पल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास वो पल नहीं होता। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नहीं नहीं मुझे आपका इंतजार है। फिलहाल वक्त है समाचारों का और ऋषिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 1 बजे होंगे समाचार और फिर आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है।

0: ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच आज हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना केंद्र पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के परिचालन चरण की शुरुआत कर दी है। मित्र देशों की साझेदारी में शक्ति विषय पर आधारित यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं महेंद्र कपूर की आवाज के साथ।

महेंद्र कपूर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, और संगीत था ओपिन अय्यर साहब का और गीतकार थे एसएच बिहारी। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म में अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर, विश्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और शैलेश कुमार ने। मुमताज ने और शैलेश कुमार ने इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई थी। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है गीता दत्त और रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55 और आवाज़ ही थी गीता दत्त और रफ़ी साहब की, संगीत ओपी नैयर साहब का। और अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण दोनों ही गुरुदत्त साहब ने किया था। इस फिल्म की पटकथा लिखी थी अबरार अलवी ने और ये एक फिल्म सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी

जाती है। और इस फिल्म में मधुबाला ने अनीता वर्मा के किरदार का अभिनय किया था और ये फिल्म कमर्शियली भी काफ़ी हिट रही थी और दर्शकों ने इसे काफ़ी सराहा भी था। और अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

फिल्म हावड़ा ब्रिज से सुन रहे थे आप ये बेहद खूबसूरत गीत। और इस गीत के गीतकार थे कमर जलालाबादी। इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था शक्ति सामंत ने। फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था ओपी नैयर साहब ने और ये फिल्म रंगून के एक बिजनेसमैन पर आधारित थी। और

जो अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए कलकत्ता जाता है। ये फिल्म रिलीज के समय क्रिटिक्स और कमर्शियली बहुत सफल रही थी। अगला गीत गीता दत्त और रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म CID से।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 32 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम तीन देवियाँ और ये फिल्म आई थी 1965 में और इस फिल्म में संगीत दिया था एस जी बर्मन ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद दंदा, कल्पना मोहन और सिमी गरेवाल। ये फिल्म एक ऐसे कवि की कहानी पर आधारित थी जिसे तीन अलग अलग महिलाओं से प्यार हो जाता है और ये इस फिल्म की कहानी अंग्रेज़ी के बहुत बड़े लेखक डीएच लॉरेंस की रचनाओं से प्रेरित थी। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वक्त हुआ है 1:55 और 6 सेकंड। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है।

0: आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी तथा साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को दिए जाने वाले 2000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए कल भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर के कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 years ago, 28-29 September 2016, ko, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikanon par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड, डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility. Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drive ahead of the birth anniversary of Father of the Nation, Mahatma Gandhi, on the 2nd of October. He said, millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. Defence Minister Rajnath Singh has said, India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi yesterday. He said, India does not seek to occupy the territory of any country, but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said, as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a 2-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the 2-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability, and farmers' incomes. The Supreme Court will hear a plea today challenging the center's decision to impose a merchant discount rate, that is MDR, on specified UPI person-to-merchant transactions of over 2,000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2,000 rupees made to merchants through the UPI platform from October the 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. The MDR will be capped at 300 rupees for payments of 75,000 rupees and above. The Department of Animal Husbandry and Dairying will launch the Livestock Insurance Portal in New Delhi today. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said that the portal will provide a single integrated digital platform for livestock insurance. It will enable streamlined policy issuance, claim processing, monitoring and reporting in case of animals insured under the Livestock Insurance Scheme. In men's cricket, India defeated West Indies by 8 wickets in the first ODI at Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram, taking a 1-0 lead in the 3-match series. Chasing 296, India scored 300 for 2 in 41.4 overs. Earlier, West Indies posted 295 for 7 in their allotted 50 overs. And that is the end of this news bulletin.

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही करीब आएगा, और जब तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी हर कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 13 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार की आवाज़ के साथ

मैं तो आ गई हूँ, अब बस इंतजार है तो आपका इंतजार है, तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

जब इश्क परवान चढ़ता है तो दिल कुछ ऐसा ही महसूस करता है ना। दिल जब किसी के प्यार में बहुत डूब जाता है तो फिर पुराने गिले, शिकवे, शिकायतें सब पीछे रह जाते हैं। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि खुलकर इस समा को, इस मोहब्बत को जी लिया जाए। और ऐसे वक्त में बादल भी दीवाने हो जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो फिर ये अगला गीत सुनकर समझ लीजिए। अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

आपने एक बात नोटिस की, जब हमें मोहब्बत होती है तो दिल का मौसम बिना वजह बदल जाता है, है ना? सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ शायराना शायराना लगने लगता है। इसी को कहते हैं शायद मोहब्बत का खुमार, जब दो निगाहें एक दूसरे में खो जाना चाहती है, और अगर ये निगाहें फिर एक साथ साथ देने में बदल जाए तो जीवन में फिर कोई और गुंजाइश नहीं रहती। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में, आप ही के लिए।

वैसे ये बात तो मुझे आपसे कहनी थी कि अगर आप साथ रहेंगे तो हम मस्त नगमे और प्यार भरी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं रात सुरमई में प्यार की, एहसास की, और जब बात होती है जज्बात की तो हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:45 और 47 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये तो सच बात है कि ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी ही मिलती है, तो इसलिए जब भी मिले मोहब्बत आपको तो उसे संभाल के रख लेनी चाहिए। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र। मंजू को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर

0: आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। नेपाल में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। भूस्खलन से 14 लोगों की जान गई और 5 लोग लापता हो गए। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत लगातार बारिश के कारण हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
3: 10 years pehle, 28-29 September 2016 ko, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikano par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी। मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव्स

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बात खूब कहा है किसी ने कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला।

मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और फिर मुझे कभी न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। तो हमराही आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आगाज करते हैं सबसे पहले मेला फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझे चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

3:45 और 28 सेकेंड हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया, पोशाक बहारों ने बदली, फूलों ने महकना छोड़ दिया। जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया।

0: हमराही में चलिए अब चलते चलते सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गीत किशोरदा और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे।
2: नहीं ते
1: नहीं ते

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की साजिश रचने के शक में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद लंदन स्थित अमरीकी दूतावास ने ब्रिटेन में अमरीकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमरीकी दूतावास ने बताया कि ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार अभी हमले के खतरे का स्तर गंभीर है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हितों को निशाना बनाया जा सकता है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच नेशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंड प्रिस्ली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 years ago, 28-29 September 2016, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikano par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी। मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लिनलीनेस ड्राइव्स अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर। He said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announce health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed three-day nationwide bank strike, which was scheduled to begin today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं एक बार फिर आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आगाज करते हैं अरुणिमा का एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

भी मेरी तरह जाग रही है, चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है। ये बात की सूरत के भले दिल के बुरे हों, अल्लाह करे झूठे हों बहुतों से सुनी है। आ चांदनी भी मेरी तरह जाग रही है, पलकों पे सितारों को लिए रात खड़ी है।

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूं सुरभि आपके साथ। आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते। रखने को तो रखते हैं खबर सारे जहां की, रखने को तो रखते हैं खबर सारे जहां की, एक मेरे ही दिल की वो खबर हाँ नहीं रखते। आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते।

अरुणिमा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है यारब वो उधर पैदा कर। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से यारब, और दिल दे हमें एक और जिगर पैदा कर। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर।

कभी यूं मिले कोई, कोई खौफ दिल में जरा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो। कभी धूप दे कभी बदलियां, दिलो जहां से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहां जिंदगी की हवा ना हो। मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो।

दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम है अरुणिमा। और अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वे AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपए से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त

0: करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने व्यक्ति से व्यक्ति आम लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility. Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was scheduled to begin today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between the IBA and the United Forum of Bank Unions UFBU on the issues related to the strike. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Canada are preparing to take their bilateral relationship to a higher level. He met Canadian Foreign Minister Anita Anand on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York. In a social media post on X, Dr. Jaishankar described the discussion as very productive adding that both the countries are working to strengthen ties. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a two-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the two-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability, and farmers' incomes. The Department of Animal Husbandry and Dairying will launch the Livestock Insurance Portal in New Delhi today. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said that the portal will provide a single integrated digital platform for livestock insurance. It will enable streamlined policy issuance, claim processing, monitoring and reporting in case of animals insured under the Livestock Insurance Scheme. The Election Commission of India has revised the schedule of ongoing Special Intensive Revision 2026 in Delhi. According to the Chief Electoral Officer of Delhi, the last day to file claims and objections will be the 30th of next month. Notice phase or disposal of claims and objections will be till 30th of November. The final electoral roll will now be published on the 4th of December. The Supreme Court will hear a plea today challenging the centre's decision to impose a merchant discount rate MDR on specified UPI person-to-merchant transactions of over 2,000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2,000 rupees made to merchants through the UPI platform from October 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. In men's cricket, Virat Kohli's majestic century and Shubman Gill's fluent 100 powered India to a commanding 8-wicket victory over West Indies in the first ODI in Thiruvananthapuram last night. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेखुदी फिल्म के इस गीत के साथ, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज़ में।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमें खुद पर भरोसा है और हम मेहनत करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। और जीवन में आत्मविश्वास हमें निराशा से बचाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वयं पर विश्वास रखना सफलता की आधी मंजिल पार करने के समान है।

भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी, अब अगर अश्क उमड़ते हैं तो पी जाता हूँ, हौसला आपके दामन ने बढ़ाया था कभी, मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी। और ज़िंदगी में ऐसे कठिन लम्हे कई दफ़ा आते हैं जब लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद और आत्मविश्वास को थाम कर इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर जाता है।